मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन EIR और वेव्स OTT एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। आज रविवार है, शक संबत 1948, आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो चुके हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी देर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए सामान्य नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड

0: कल रात साउथैम्पटन में पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

आशाओं अपेक्षाओं की ये तरंगे यूं ही सतत प्रवाहमान रहें, जीवन का ये स्पंदन बना रहे, अपने संकल्पों की दृढ़ता और सद्भाव की आत्मीय ऊष्मा लिए।

सागर की लहरें भी अपने तट से टकराकर वापस लौट आती हैं। मन में उठने वाली भावनाओं, आवेगों की लहरें भी बुद्धि प्रज्ञा रूपी तट से टकराकर वापस पलट सके। ये तट प्रबल हों, मजबूत हों, दृढ़ हों।

प्रार्थना में एकाग्रता हो, आस्था के भाव प्रबल और मजबूत बने, समस्त चेतना जब हरिनाम में समाहित हो जाए, तभी वाणी से, मन से, आत्मा से निकले ये प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है।

जीवन का अंतिम और अटल सत्य है मृत्यु। जबकि जीवन के पूरे विस्तार में हम जीवन के सुखों की अभिलाषा भी रखते हैं और उस ओर प्रयासरत भी रहते हैं। हमारे प्रयास, जीवन सत्य, ईश्वरीय मंशा, सबकी अपनी चाल और गति है। शायद इसकी एक रूपता ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य।

आज की वंदना में आपने हरिहरन, जगजीत सिंह, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान और समूह स्वर में देशगान सुना।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन। बहुत

बहुत दिनों से एक बात मन को कचोट रही थी, बल्कि कहना चाहिए कि याद रहते हुए भी भूल जाया करती थी, और जब याद आती तो कांटा लगने की तरह दर्द होता। मनुष्य कई मामलों में बड़ा बेखबर रहता है, विशेषकर अपने मामलों में। काम की बातों को भी भूल जाने की आदत अच्छी नहीं है। इस आदत को ठीक करने की बात कई बार सोची, फिर भूल गई। इससे बड़ा अहित का काम कौन सा हो सकता है। जब ये बात आज फिर याद आई तो एक तरह से तिल मिला गई और अपने को कोसने लगी। लेकिन कोसने से न तो आदत ठीक होती है और न भूल सुधार, बल्कि कोसना एक तरह से उस कहानी जैसा है कि एक व्यक्ति ने तोता पाला, उसे कई बातें सिखाई, बताया कि पहेलिया किस तरह से आता है, अनाज के दाने फैलाता है, फिर जाल बिछाता है, इस जाल से बचकर रहना। और तोता समझदार, बार बार उसने इसे याद करने की प्रैक्टिस की और फिर खूब याद कर लिया। मालिक ने तोते के मुंह से कई बार इन वाक्यों को सुना, बहेलिया आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका डर था। बहेलिया आया, उसने दाने डाले, जाल बिछाया और तोता उसमें फंस गया। तो केवल तोते की तरह अच्छी बातों को रट लेने से कोई फायदा नहीं होता, दूसरों को अच्छी बातों के उपदेश पिला देने से भी कुछ नहीं होता। असल बात तो है उस पर अमल की। जो

0: भले ही बातें कम सुनते हैं लेकिन उन्हें गुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, व्यावहारिक रूप देते हैं, उन पर अमल करते हैं, वे ही सफल होते हैं। बड़े बड़े उपदेश देने या सुनने से, बड़ी किताबें पढ़ने या पढ़ाने से, महापुरुषों की संगत करने से कुछ होने का नहीं, जब तक व्यक्ति का मूल चिंतन नहीं सुधरता, यानी जब तक व्यक्ति अमल करना नहीं सीखता। तोते की तरह बने रहने से अंत में सिवाय दूसरों के बिछाए जाल में फंसने के कुछ हाथ नहीं लगता। ये बात मन में कचोट रही थी कि हम कितनी बातें सुनते हैं, उन पर अमल करने की योजना बनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जब कभी किसी प्रसंग में उनका उल्लेख हो जाता है तो फिर सोचने लगते हैं, अरे भूल हो गई, चलो आज से इसे अपनाना शुरू करते हैं, इससे काम नहीं चलता। बाद में अगर सचमुच आप पर असर किया है, आपको उद्वेलित किया है, आपको झकझोरा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसे भूल जाएं, उसे ना अपनाएं। ऐसे में होता यही है कि हम बात से प्रभावित तो हो जाते हैं लेकिन उसकी गहराई को समझ नहीं पाते, इसी से उसे भूल जाते हैं। मनोविज्ञान के जानकारों का कहना है कि हम उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं, उन बातों को हम भूल जाते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण नहीं मानते। हमें वे ही बातें बार बार याद आती हैं जो हमें पसंद हैं, और हम उन्हीं पर अमल करते हैं जो हमारी रुचि के अनुरूप होती हैं। हमारा चरित्र ठीक वैसा ही बन जाता है जैसा हम सोचते हैं। जिस तरह कांटा लगने से दर्द उठता है और हम सब काम छोड़कर कांटा निकालने के उपाय करते हैं, ठीक वैसे ही वे बातें हैं जो हमें पसंद आती हैं, उन पर अमल करना है। देरी करने का मतलब उन्हें अहमियत नहीं देना है। हम तोते की तरह बातों को केवल रटे नहीं, उनके मर्म को समझें और चेतावनी को पहचानकर उस पर अमल करें, तभी हम आने वाले खतरों से सावधान होकर मुकाबला कर सकते हैं और जीवन को सफलता के रास्ते पर ले चल सकते हैं। अन्यथा तोते की तरह रटते रटते हमें दूसरों के जाल में फंसने से कोई रोक नहीं सकता।
1: अभी आप चिंतन का प्रसारण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे धान की श्री एवं डीएसआर पद्धति और समसामयिक कृषि कार्य। किसान भाइयों इस समय हमारे जो किसान भाई हैं, खास करके धान उत्पादक कृषक जो हमारे हैं, वो दो पद्धतियों से बुआई का कार्य कर रहे हैं धान की। जिन्होंने रोपा लगाया हुआ था अपनी परंपरागत पद्धति से बुआई करते हैं, वो लगभग एक माह की रोपे को रूपांतरण करते हैं। दूसरी पद्धति हमारी जो श्री पद्धति है, और तीसरी पद्धति है डीएसआर पद्धति। तो मैं यहाँ पर किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो भी तीनों पद्धतियाँ हैं, इनमें हमारे किसान भाई परंपरागत पद्धति से जिनने रोपे लगाए थे और बारिश कई जगह पर हो गई है, कुछ जगहों पर बारिश की कमी है कुछ ज़िलों में, तो वहाँ अभी वो बुआई कार्य कर रहे हैं। और परंपरागत पद्धति में कई बार क्या होता है, जब बारिश देर हो जाती है तो हमारे किसान भाइयों की जो रोपणी है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, एक माह से ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि यदि रोपणी आपकी बड़ी हो गई है, आपके पास बीज उपलब्ध है, तो डीएसआर पद्धति का उपयोग करके आप बुआई कार्य, जैसे ही बारिश अभी जैसे होती है तो बुआई कार्य आप कर सकते हैं सीड ड्रिल से। इसमें आपको खेत की तैयारी जो है गेहूँ की तरह हमें करना है, एक पटेला चला करके खेत को समतल हों। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिन खेतों में समतल हों, जहाँ जो खेत वहाँ पर इस पद्धति को अपनाएं तो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसमें सबसे प्रमुख बात इसकी यही है कि हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो लेबर कॉस्ट यानी कि उत्पादन लागत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। गेहूँ की तरह इसकी बुवाई हो जाती है, लगभग 22.5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में कतारों की दूरी रखते हैं हमारे किसान भाई, और जो बीज की मात्रा है लगभग 14 किलो प्रति एकड़ इसमें बीज की मात्रा लगेगी। जो उन्नत किस्में हैं डीएसआर पद्धति में, वो हमारी पूसा 1121 है, पूसा सुगंधा 5 है और पूसा 1509 9 ये संस्तुत किस्में हैं, हमारे किसान भाई इनका उपयोग बुवाई कार्य में कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने श्री पद्धति की तैयारी कर रखी थी तो उनको यहाँ जो रोपणी लगानी है वो 8 से 14 दिन या 8 से

0: 12 दिन की रोपणी का हम रोपण करते हैं अपने खेतों में। उसके पहले खेतों की जो तैयारी हमारी जो परंपरागत पद्धति की तरह ही खेतों की तैयारी करते हैं। उसके उपरांत हम रोपणी अपनी, जहाँ तक हो किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपकी यदि रोपणी खेतों में ही हो, जिस खेत में आप रोपण करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ से आपको, चूँकि ये कम अवधि की रोपणी होती है, जिस प्रकार से बच्चा छोटा होता है तो उसकी देखभाल ज़्यादा करना पड़ती है, उसी प्रकार से हमारी एक छोटे अवधि की रोपणी है, तो इसको यदि उसी खेत में रखेंगे, और चूँकि 2 घंटे के अंदर हमें रोपण इसका करना है, 2 से 3 घंटे के अंदर, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जब नर्सरी से रोपे को निकालेंगे तो वहाँ इस बात का ध्यान रखें कि इसका बीज तंतु इसमें लगा होना चाहिए। जब श्री पद्धति आपकी कहलाएगी, बीज तंतु लगा होने की पर्पज़ यहाँ पर ये है हमारे किसान भाइयों, कि जो बीज तंतु होता है हमारा पौधा, चूँकि छोटा है, 8 से 12 दिन या 8 से 14 दिन के बीच का रोपा है हमारा, तो बीज तंतु लगा होने से जब हम नई जगह पे उसको रोपण करेंगे तो बीज हमारा जो तंतु लगा है उसमें भोजन व्यवस्था हमारे पौधे को रहती है। और रोपण के उपरांत हमें हल्की सिंचाई इसमें करना है, जिसमें स्प्रिंकलर या अन्य जो पद्धति हमारी फवारा पद्धतियों से उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। इससे एक हल्की सिंचाई हमें देना है। श्री पद्धति में जो पानी की बहुत बचत होती है हमारे किसान भाइयों, इसी प्रकार से DSR पद्धति में भी पानी की हमें खेतों में भर के नहीं रखना होता है, परंतु परंपरागत पद्धति में हमारे किसान भाइयों पानी अधिक लगता है। तो ये दोनों पद्धतियां से हमारी धान की रोपाई का कार्य पूर्ण करें हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। आने वाले समय में धान की शूट फ्लाई आएगी तो उसका विशेष ध्यान रखें, तना छेदक कीट का प्रकोप होने की संभावना रहता है। और 2 प्रमुख रोग इसके हैं, ब्लाइट एवं ब्लास्ट, इन बीमारियों से बचाव किया जाना अति आवश्यक है। और कुछ यहाँ कृषि में सामायिक चीज़ें मैं और बता दूँ, इस समय हमारे जिन किसान भाइयों जो बगीचे जिन्होंने लगा रखे हैं तो वो उनमें जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। इसी प्रकार से सब्जी उत्पादक जो कृषक हैं हमारे, उनको भी अपने खेतों में जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जल भराव ना हो। इस समय सब्जियों के भाव भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ सबसे प्रमुख बात आती है जहाँ अधिक वर्षा हो जाती है तो वहाँ जल भराव की स्थिति बनती है, तो उनको मेड़ नाली पद्धति या कूण नाली पद्धति पे इनको लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमारी जो आज की कृषि चर्चा है वो संपन्न हुई। किसान भाइयों धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है एक अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीययात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशद्वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्डयात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा पर्यटन क्रीडा पद प्रबंधन दुग्ध व्यवसाय पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर

0: निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान

0: मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेगा बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने, उनके मानसिक एवं शारीरिक प्रभावों तथा स्वस्थ डिजिटल आदतों के निर्माण के विषय पर भोपाल की वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा आर्या से बातचीत। पेपर बैग दिवस के अवसर पर पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग के बेहतर एवं टिकाऊ विकल्पों, विशेष रूप से कॉम्पोस्टेबल बैग्स से संबंधित महत्व, पूर्ण जानकारी भोपाल स्थित अग्रणी और प्रतिष्ठित बायो पैकेजिंग उद्योग के संस्थापक श्री मुकुल द्विवेदी द्वारा साझा की जाएगी इसी कार्यक्रम में। इसके अलावा आप सुनिएगा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उनकी सामाजिक एवं भावनात्मक सहयोग तथा समाज और परिवार के प्रति उनकी भूमिका एवं अपेक्षाओं के विषय पर स्थानीय सामाजिक संस्था के संस्थापक श्री अवध बैस से बातचीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुनेगा 8:30। 9:15 पर लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे देवेंद्र सिंह व साथियों के गाए बुंदेली।

9:30 पर सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान का प्रसारण किया जाएगा। 10:00 जिले की चिट्ठी, 10:05 पर आप सुनिएगा सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में उड़िया गीत, रचना होगी KC पनीग्रह की। 10:30 फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 11:00 भी आप फिल्म संगीत सुनिएगा। 12:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 12:30 कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिएगा धारावाहिक हंसना मनाए की 11वीं कड़ी। 1:00 महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी आकाशवाणी शिवपुरी की। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुति होगी आकाशवाणी शिवपुरी की। 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी इंदौर की। 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की रहेगी। 6:00 फिल्म संगीत और 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम, इसी के अंतर्गत आज आप 7:30 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में विषय होगा धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा।

रात 8 बजे ही कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। इस कार्यक्रम में विषय है आज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। योगदान होगा आकाशवाणी गुना का। रात्रि 9:30 आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश किया जाएगा। रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा में आज आप सुनेगा कुमार मर्दूर का गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, कुछ कार्यक्रम हम आपको पुनः बता देते हैं। आज शाम सात बजकर इक्कीस मिनट पर आप सुनिएगा ग्राम सभा कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विषय होगा धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामिक कार्य। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा। रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आज आप सुनिएगा कुमार मर्दूर का गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम और प्रदेश में 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। कल ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय

0: इस समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और वे 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं वहां के भारतीय समुदाय तक लेके पहुंचे हैं।
1: इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को एक साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर में कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसमें अनेक गतिविधियां इस दिशा में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद करेगी।
2: देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा।
0: इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ युवा विकसित भारत एट 2047 के निर्माण में सहभागी बनते हुए प्रदेश की समृद्धि के भी सूत्रधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश यूथ कॉन्क्लेव 2026 में इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद किया। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवंबर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपये की पूरी हो चुकी 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपये से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का आह्वान करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में ग्राम बुड़ानिया में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। हैदराबाद में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय आईटी उद्योग से पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवा मॉडल से आगे बढ़कर एआई मॉडल अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से एआई को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक एआई पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है ताकि भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सकें। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडला जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन

प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान का शुभारंभ किया गया। परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नीमच में जागरूकता रैली निकाली गई और बैतूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। इटली के लोनाटो शहर में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अकादमी की दूसरी खिलाड़ी मनीषा ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10वां स्थान हासिल किया गया। हरियाणा के रोहतक में आयोजित U23 राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की पूर्व खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापत ने महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वहीं क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, चंबल शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। रामपुर में 63 मिलीमीटर और अटेर में 54 तथा रीवा शहर में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ कल किया गया, जिसमें मंत्री संपति आविके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल रहे। खंडवा जिले में और इसके हरसूद तथा पुनासा तहसील न्यायालयों में आगामी 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। आगरमालवा जिले के ग्राम निपनिया बैजनाथ आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोटला में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल 125 छात्र छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। और डिंडौरी जिले के प्रत्येक विकासखंड की 7-7 शालाओं में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सोशल ऑडिट आगामी 13 और 14 जुलाई को किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। और प्रदेश में 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

सुबह की ताजगी, संगीत की मधुरता और आपके अपने शहर की धड़कनों के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं एक नई मुलाकात। खबरों की विश्वसनीयता, गीतों की मिठास और रोचक जानकारियों के संग अगले कुछ पल रहेंगे आपके नाम। आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मेघा तिवारी और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। दोस्तों, कभी कभी घर की सफाई करते हुए किसी दराज के कोने में या किसी पुरानी किताब के बीच एक तस्वीर निकल आती है और फिर अचानक हम वहाँ नहीं रहते जहाँ खड़े या बैठे होते हैं।

हम कहीं और पहुंच जाते हैं। एक तस्वीर में शायद स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हम खड़े हैं, किसी में कोई दोस्त का एक समूह है जिनसे हम पिछले कुछ सालों से नहीं मिले या बात नहीं हुई, किसी में परिवार के वो चेहरे हैं जो आज सिर्फ यादों में बसते हैं। अजीब बात है, तस्वीरें सिर्फ चेहरे नहीं संभाल कर रखती, वो उस समय की हंसी, उस दिन की धूप, उस पल की खुशबू और उस उम्र की बेफिक्री का भी कहीं अपने भीतर सहेज लेने का काम करती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। शायद इसीलिए पुरानी तस्वीरें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि समय सचमुच आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ पल उसके साथ नहीं जाते, वो हमारे पास रह जाते हैं कागज़ पर छिपी एक मुस्कान बनकर। और फिर हम तस्वीर को देखकर अक्सर मुस्कुरा देते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ पहले बेहतर था, बल्कि इसलिए कि वो सब कुछ कभी हमारा था। आज मोबाइल फ़ोन में हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन फिर भी कुछ पुरानी तस्वीरों का जादू अलग होता है। शायद इसलिए क्योंकि उनमें सिर्फ लोग नहीं होते थे, हमारी कहानी होती थी। जो आज अगर मौका मिले तो किसी पुराने एल्बम को निकालिए, किसी तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिए, हो सकता है उसमें आपको कोई पुराना दोस्त मिल जाए, कोई भूली हुई बात मिल जाए, या फिर अपना ही कोई ऐसा रूप मिल जाए जिसे आपने बहुत दिनों से याद नहीं किया। और यकीन मानिए, कुछ यादें उम्र नहीं पूछती, बस मुस्कुरा कर कहती हैं हम यही हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: न्यूज़ ऑन AIR और DTH के ऑडियो चैनल्स के माध्यम से आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है नमस्कार भोपाल। वक्त मिलाइए, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:28 होने को हैं। अब हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियां बताते हैं।

पहली खबर है, उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर स्वयं पोर्टल को जुलाई 2026 सेमेस्टर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में पंजीकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी 19 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और शासकीय अशासकीय कॉलेजेस को स्वयं पाठ्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान किसी भी पाठ्यक्रम में एक सेमेस्टर के कुल कोर्स का अधिकतम 40% तक स्वयं पोर्टल के ऑनलाइन क्रेडिट कोर्स के माध्यम से पढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। अगली खबर है, ई प्रवेश अभियान, मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक दाखिले। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 11 जुलाई 2026 तक प्रदेश भर में कुल 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। इनमें से लगभग 5,65,000 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया के तहत द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग संचालित की जा रही है। और एक संदेश, सोलर लगाएं और बिजली बिल पर राहत पाएं। बढ़ते बिजली बिल आज हर घर हर दुकान उद्योग के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। ऐसे में सोलर ऊर्जा एक ऐसा समाधान है जिसने न केवल बिजली का खर्च कम किया बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि सभी जिम्मेदार नागरिक के नाते सोलार को लगवाने के प्रति जरूर अपने कदम बढ़ाएंगे। ये थी कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप और वक्त हो चला है गीत सुनने का, तो ये गीत क्यों ना सुना जाए बरसात के बारे में।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। आज पूरी दुनिया में पेपर बैग्स डे मनाया जा रहा है और ये एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेपर बनाना, पेपर का उपयोग करना और इसकी गहराई से इसका

0: दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन चुका है। आज पूरी दुनिया में पेपर बैग्स डे मनाया जा रहा है, और ये एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर बनाना, पेपर का उपयोग करना और इसकी गहराई से इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानना, इसमें कितना ज़्यादा हमारे नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमारे पास ऐसे कौन से विकल्प उपलब्ध हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और साथ में प्रकृति का भी ध्यान रख सकते हैं, इसी विषय पर अब हम विस्तार से बात करेंगे। कार्यक्रम में अब हमारे साथ हैं कंपोस्टेबल बैग्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए भोपाल के अग्रणी और प्रतिष्ठित बायो पैकेजिंग उद्योग के संस्थापक श्री मुकुल द्विवेदी।
1: जी धन्यवाद। मैं बायो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का फाउंडर हूँ। हम लोग एक यूनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंपोस्टेबल कैरी बैग्स, नॉन प्लास्टिक बैग्स में हम लोग डील करते हैं। और ये प्लास्टिक का सबसे बढ़िया विकल्प है इस समय। पेपर बैग तो है ही इको फ्रेंडली, लेकिन पेपर बैग मैं उसको पार्शियली इको फ्रेंडली मानता हूँ, क्योंकि पेपर बैग बनने के बाद, यूज होने के बाद, क्योंकि सिंगल यूज रहता है, सिंगल यूज होने के बाद में पेपर बैग जो है वो कोई भी रेसिड्यू या कोई भी कार्बन छोड़े बगैर, कार्बन फुटप्रिंट छोड़े बगैर और अपने इस पर्यावरण में घुल मिल जाता है और उसको नुकसान नहीं देता। लेकिन फिर अपन दूसरी बात यही करेंगे कि पेपर बैग बनाने में जो पेड़ों की कटाई होती है, और मतलब जो रिपोर्ट्स में है उसमें तकरीबन 40 मिलियन पेड़ साल भर में काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए। पेपर बैग भी अगर देखा जाए तो वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं हार्म करके ही पेपर बनाया जा रहा है। तो इसका सबसे बेहतर विकल्प आज की डेट में जो मुझे समझ में आया और मैंने इसका बिजनेस भी चालू किया, तो कंपोस्टेबल बैग, जो कि कॉर्न स्टार्च बेस्ड पॉलीमर से बनता है और इसमें सारे जितनी भी चीजें हैं वो पूरे प्लांट रेजिन्स और प्लांट ऑर्गेनिक्स पॉलीमर से पूरा बनाया जाता है। ये उसी के ग्रेनुअल्स रहते हैं और इसको बनाने में ना पानी की लागत लगती है बहुत ज्यादा, बस इलेक्ट्रिसिटी लगती है। सेम प्लास्टिक जैसे फॉर्मुलेशन होता था उसी तरीके से ये बनता है। इट लुक लाइक प्लास्टिक, वर्क लाइक प्लास्टिक, बट नॉट अ प्लास्टिक।
2: क्या हमारे शहर भोपाल में भी ये अवेलेबल है? इसकी क्या पहचान है और ये कैसे बनता है, और किस आधार पर आप ये कहते हैं कि ये प्लास्टिक के कंपैरिजन में ज्यादा इको फ्रेंडली है, और इसको क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज इट कॉल्ड?
1: इसको इसको इसको कंपोस्टेबल बैग बोला जाता है, 100% कंपोस्टेबल बैग। इसकी खासियत यह है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ये मिट्टी में, जैसे भी ये पानी, हवा, धूप और मिट्टी के संपर्क में आता है तो ये स्वतः सड़ने और गलने लगता है और बिना कोई भी कार्बन अवशेष छोड़े मिट्टी में मिल जाता है। और कंपोस्टेबल बैग मिट्टी में मिलकर खाद का कार्य करता है, इसीलिए इसको कंपोस्टेबल बैग बोला गया, क्योंकि ये प्लांट ऑर्गेनिक से बना हुआ है और प्लांट ऑर्गेनिक जो है वो वापस जब मिट्टी में मिलते हैं तो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ते पीछे, और इसमें मतलब कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं आता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, इसको, इसके ग्रेनुअल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक ग्रेनुअल्स आते थे, उसी तरीके से इसको भी पॉलीमराइज किया जाता है और उससे फिर हम लोग अलग अलग शेप में इसको थ्रू ब्लोन ब्लोन फिल्म, ब्लोन फिल्म बना करके और अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में इसका हम बैक की कटिंग करते हैं।
2: तो ये कैसे पहचाने जा सकते हैं? क्या ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है और गवर्नमेंट ने एक आईएसओ इसके लिए शेड्यूल किया गया है। आईएसओ 17088 बोला जाता है उसको, 17088 इसका नाम दिया गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप इस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद उसको सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में, और अब तो सभी जगह पे हो गया मेरे ख्याल से, हर स्टेट में सीपेट का एक सेंटर होता है जो कि पॉलीमर और ये सारी चीजों की टेस्टिंग करते हैं। वहां पे हम लोग इस प्रोडक्ट को बना करके, अपने कैरी बैग को और फिल्म को बना करके, और वहां पे हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। वहां पे 6 महीने के लिए इसकी टेस्टिंग होती है और 6 महीने में वो टेस्ट करके ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने परसेंट तक की गल रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, और मिट्टी में मिलने के बाद में कोई भी टॉक्सिक या कोई भी चीज उसमें छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है, ये उनका प्रणाली रहती है टेस्टिंग करने की पूरी। तो वो टेस्टिंग होने के बाद में हमको 6 महीने के बाद में सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि हमने आपकी फिल्म को 100% डिजोल्व किया था, मिट्टी के अंदर डाला था और उसको हमने धूप में

0: और पानी में और सब जगह पे रखा था, और उसके बाद आपका 90-92% एंड 93% वो प्रोडक्ट जो था वो डिजोल्व हो गया। बाकी का जो था वो नॉट हैवी एलिमेंट, लेकिन लोअर हैवी एलिमेंट मतलब लोअर डेंसिटी के एलिमेंट्स उसमें पाए गए जो कि हानिकारक नहीं है पर्यावरण के लिए।
1: जी।
0: ऐसे करके वो हमको टेस्टिंग सर्टिफिकेट देते हैं। जब हमारा टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है और हमारा प्रोडक्ट ओके हो जाता है, उसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, और वो पूरा सर्वेलेंस रखते हैं पॉल्यूशन वाला चीजें हो रही हैं या मतलब पॉल्यूशन कम किया जा रहा है, वो हमको उसके बाद ये सब टेस्टिंग होने के बाद में वो हमको लाइसेंस देते हैं। और लाइसेंस देने के बाद में हमारा ये काम होता है, हम जब मैन्युफैक्चर करेंगे उस फिल्म को या उस बैग कैरी बैग को, तो उसमें हमें मैंडेटरी लिखना पड़ता है कंफर्मिंग ISO 17088। हर बैग के ऊपर हमारा प्रिंटिंग करना जरूरी है। एक हमें यूनिक बारकोड दिया जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, वो प्रिंट करना जरूरी है ताकि प्रशासन जो भी रहता है नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी अधिकारी जाता है या कोई भी अगर टेस्टिंग करता है वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके कि दिस इज 100% कंपोस्टेबल बैग। जी
1: क्या ये पॉकेट फ्रेंडली भी है?
0: पेपर बैग में डेंसिटी ज्यादा रहती है, पेपर बैग की थिकनेस ज्यादा रहती है, और वेइंग कैपेसिटी जो अपन सामान रखते हैं पेपर बैग के अंदर वो भी उठाने की उसकी वेइंग कैपेसिटी जो रहती है वो भी कम रहती है। और पेपर बैग्स महंगे भी पड़ते हैं क्योंकि हैवी मटेरियल रहता है थोड़ा सा, तो वो उसमें नंबर ऑफ पीसेस कम निकलते हैं, तो हमारे में पीसेस जो हैं वो लगभग प्लास्टिक के इक्विवेलेंट निकलते हैं। चूंकि नंबर ऑफ पीसेस हमारे ज्यादा हैं इसलिए हमारा बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जहां नंबर ऑफ पीसेस कम लगेंगे कम निकलेंगे वहां पे कॉस्ट जो है वो पर पीस ज्यादा जाएगी, और जहां पे नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा मिलेंगे वहां पे कॉस्ट कम आएगी,
1: कीमत
0: लगभग सिमिलर पे। आप पेपर बैग थोड़ा सा हायर कॉस्ट करता है, प्लास्टिक और हमारे बैग जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है।
1: पेपर से बेहतर विकल्प तो है ही, पेपर्स के कंपैरिजन में सस्ता विकल्प भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि प्लास्टिक की तरह अपनी सर्विस देता है। खरीदारी करते समय किन चीजों का ध्यान रखें और कहाँ ये मिल सकते हैं कंपोस्टेबल बैग्स?
0: देखने वाली चीज ये रहती है कि कंपोस्टेबल बैग लेते टाइम पे आप हमेशा ये चीज चेक करिए कि जो मैन्युफैक्चरर है क्या वो बिल दे रहा है या नहीं दे रहा है। पहली बात तो जो आप मटेरियल लें वो बिल पे लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हमको लाइसेंस दिया है, और ये प्रणाली में तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय लगा है हम लोगों को पूरे लाइसेंसेज लेने में। तो बस जस्ट आपको ये ऑथेंटिकेट करना है कि ISO 17088 उसके ऊपर प्रिंट है, मैन्युफैक्चरर का नाम बिल्कुल क्लियर प्रिंट है, उसके ऊपर क्या उसका टेलीफोन नंबर या कोई भी ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। सो सिर्फ ये ऑथेंटिकेट करके और आप 100% ये प्रोडक्ट मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं।
1: बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए
0: थैंक यू
1: और
0: वेरी
1: इतना
0: मच।
1: अच्छा विकल्प आपने हमारे श्रोताओं को बताया।
0: नमस्कार जी।
2: नमस्कार। भोपाल में अभी हमारे साथ थे भोपाल की एक प्रतिष्ठित बायो पैकेजिंग उद्योग के संस्थापक श्री मुकुल द्विवेदी। हम आशा करते हैं श्रोताओं से कि पेपर बैग दिवस पर वो ना सिर्फ पेपर बैग्स को प्रेफर करें बल्कि इसके साथ ही जो हमारे पास और बेहतर और टिकाऊ विकल्प अवेलेबल हैं, जो कि विशेष रूप से कंपोस्टेबल बैग है जो कि पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली माना जा रहा है, इसका उपयोग भी आप ज़रूर करेंगे। क्यों ना नमस्कार भोपाल में अगला गीत सुना जाए जो हमने चुना है फिल्म लगान से।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, इन दिनों मोबाइल्स, टैबलेट्स और डिजिटल उपकरण बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम उचित है, कब ये नुकसानदायक हो सकता है और कब माता पिता किस तरह से स्वस्थ डिजिटल आदतें विकसित कर सकते हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी देने के लिए हमने बात की वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा आर्य से। आइए सुनते हैं उनसे हमारी ये वार्ता।
1: नमस्कार आकाशवाणी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने आज उठाया है और इस पर बिल्कुल चर्चा की जानी चाहिए। मेघा, आजकल के जमाने में जो हम रह रहे हैं, ये एक डिजिटल युग है। इससे हम बिना स्क्रीन का इस्तेमाल किए, बिना गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर का इस्तेमाल किए हम गुजर ही नहीं सकते हैं। वो बच्चों के लिए सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना लिखना, पढ़ना या बाकी एक्टिविटी। उससे हम बच्चे को वंचित भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, सत्य है कि इन पर बच्चों के विकास पर, एकाग्रता पर, नींद पर दुष्परिणाम तो हैं ही। यहाँ डिजिटल स्क्रीन के टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है
2: जी।
1: क्या बच्चा बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है, क्या बच्चा ऐसी शॉर्ट वीडियोस देख रहा है जो उनको डोपामिन रश देती हैं, जैसे बहुत ज्यादा कलरफुल रीलें देखना, स्क्रॉल करना लगातार, ये बच्चों पे दुष्प्रभाव डालते हैं। लेकिन वहीं अगर इसका उपयोग बच्चा कोई एजुकेशनल कंटेंट के लिए कर रहा है या कोई क्रिएटिव चीज के लिए कर रहा है या अपने साथ के लोगों से कोई क्लास अटेंड करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव परिणाम ज्यादा होंगे या पॉजिटिव।
3: तो कैसे पहचाने कि बच्चा जो है वो स्क्रीन का उपयोग कर रहा है या धीरे धीरे उस पर निर्भर होता चला जा रहा है? क्योंकि ये बात भी उतनी ही सही है कि

0: आने वाले टाइम में बच्चों की हैंडराइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कम होती जाएगी. कई ऐसे स्टडीज और रिसर्च में ये साबित हुआ है कि इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, क्या इससे बच्चों की मेमोरी पे भी असर पड़ता है? और अगर इसके कुछ ऐसे संकेत हैं जो आप मेडिकली ऑब्जर्व करते हो.
1: पहले जो इसके संकेत हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि क्या बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी छोटी बातों पर जिसपे इतना रिएक्शन नहीं होना चाहिए बहुत अग्रेसिव हो रहा है, फोन लिए जाने पर या टीवी बंद किए जाने पर खाना नहीं खा रहा, या अपने बाहरी खेल जो होते हैं हमारे, जो क्रिकेट या बच्चे पकड़म पकड़ाई जैसे छोटे खेल खेलते हैं, उनके साथ खेलने से ज्यादा स्क्रीन की तरफ प्रेफर कर रहा है, बिना स्क्रीन के बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहा, होमवर्क नहीं कर रहा,
0: जी.
1: स्कूल में परफॉर्मेंस गिर रही है, ये इसके पहले शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा उम्र पर भी काफी निर्भर करता है मेकअप, जैसे शुरुआती जैसे छोटे बच्चे हैं 5 साल से लेके 10 साल तक की उम्र के, इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि बच्चों की जो बोर होने की क्षमता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बोर होने की जो एक बोर होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बोर होने पर ही हम अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाते हैं, हम सोचते हैं कि
0: बात,
1: वही
0: सही
1: समय
0: बात.
1: कैसे व्यतीत किया जाए। बच्चे छोटे छोटे मिट्टी से खेलना या दीवारों पे कलाकृति करना, उससे उनकी खुद की क्रिएटिविटी बनती है। लेकिन अगर बच्चा बोर ही नहीं हो रहा, जैसे ही थोड़ा सा खाली समय हुआ वो मोबाइल चालू कर ले, टीवी चालू कर ले, तो उसकी अपनी डेवलपमेंट नहीं होती। जी, यही वो समय है जब उसका लैंग्वेज पे पकड़ बनना, दूसरों के चेहरों के हाव भाव पे पकड़ बनना, भाषा बोल पाना, शब्दों का उच्चारण, ये सब डेवलप होता है। ऐसी अवस्था में अगर आप पैसिव कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एक्टिव रहने की जगह, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट में बाधा आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे ADHD या ऑटिज्म स्क्रीन देखने से होता नहीं है, पर अगर है तो वो मास्क हो सकता है या फिर बढ़ सकता है बच्चे में। और दूसरा, ये अडोलेसेंट मतलब 10 साल की उम्र के बाद जो बच्चों में शारीरिक बदलाव आने के बाद सामाजिक बदलाव आते हैं, उसमें सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट है। बच्चों में बॉडी इमेज इश्यूज हो सकते हैं, वो गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत तरह के वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट की एक्सेस जो है उस पे थोड़ा नजर रखा जाना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया पे लाइक्स कमेंट्स के लिए बच्चे काफी कंपैरिजन भी कर सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की जीवन शैली को कंपेयर कर सकते हैं, जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में वहां बाधक बनता है।
0: हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में, इन्हीं बातों का कोई सम अप संक्षेप में?
1: जी बिल्कुल मेघा, बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातें सभी अभिभावकों से शेयर कर सकूं। मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें हताश या निराश नहीं हो कि अरे हमारा बच्चा तो आदी हो गया है स्क्रीन के और अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस पे बदलाव लाइए, अपने आपका भी स्क्रीन टाइम कम कीजिए, परिवार में जुड़ना, कम्युनिकेशन करना सभी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। तो जैसे जैसे आप अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल या फोन का इस्तेमाल बदलेंगे, वैसे वैसे आपका बच्चा भी उसी तरह से फॉलो करेगा। इसमें बहुत निराशा की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प को अप्रोच करें, मदद लें।
0: ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हेल्प सीक करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इस अहम विषय पर हमारे साथ चर्चा की.
1: थैंक यू।
2: नमस्कार, भोपाल में अभी हमारे साथ थी भोपाल की वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा आर्या।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिक अनुभव, संस्कार और जीवन मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में उनकी देखभाल, सम्मान, सामाजिक और भावनात्मक सहयोग और परिवार और समाज के प्रति उनकी भूमिका और अपेक्षाओं पर गंभीरता से सभी को विचार करना चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्थानीय सामाजिक संस्था के संस्थापक और वरिष्ठ समाज सेवी श्री अवध बैंस।
1: नमस्ते, मैं हूं अवध। देखिए, जैसे हम जिस सोसाइटी में भी रहते हैं या कि आसपास एरियाज में जहां भी हम रहते हैं, वहां भी काफ़ी सारे बुजुर्ग हैं। वो ओल्ड एज में हो जाते हैं और उनके जो बच्चे हैं या उनको निकाल देते हैं, या तो उनके पास जो भी प्रॉपर्टी होती है बच्चे अपने पास रख लेते हैं और उनको वृद्धाश्रम डाल देते हैं, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं बट उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो या तो आगे जाके हेल्थ इशूज़ वगैरह भी होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक इनिशिएटिव भी चलाते हैं चीज़ें कि हम लोग इंडिविजुअली जाते हैं, उनका मोरल ऑफ द सपोर्ट, उनका सपोर्ट भी करते हैं। यदि उनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी छीन गई है, ऐसा कुछ है, तो वो ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट का सपोर्ट लें, पुलिस का सपोर्ट लें और उनसे जो भी है मदद मिले तो उनका काम हो जाएगा। अब आगे बात आती है हेल्थ का, तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम भी हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, सारी चीज़ें। यदि नहीं है तो आसपास के एनजीओज़ वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सोसाइटी को भी देखना चाहिए आसपास के जो बुजुर्ग हैं तो उनकी मदद करें, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो वो हमारी मदद हमें ही आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी हम सहायता करें और सेवा करें। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैं इंडिविजुअली वर्क करता हूँ और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, और इसमें ऐसा है कि हमारे पास कई सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि लाइक दिस, एक मानते हैं कि अभी हमारा जो हम लोग अभी वृद्धाश्रम गए हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जो अपने फैमिली से अलग होकर आज वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो हम जब उनसे उनसी बातें करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं। तो हम लोग ने जो भी हमारे पास फाइनेंशियली कंडीशन थी, हमने उनकी पूरी हेल्प करी, ठीक है। हेल्प करने के बाद वो उनका जो आशीर्वाद मिलता है हमें, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम यूथ हैं, ठीक है, तो सबको मिल के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उन बुजुर्गों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, जिससे उनको मदद भी मिले और उनको भी यही लगता है कि यदि कोई यूथ हमारे पास आता है, हमारी मदद करता है, उनको बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से, है ना।
2: ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि बुजुर्गों को पता होना चाहिए सिक्योर रहने के लिए? कई लोग अकेले रहते हैं, उन्हें अपने रूटीन के कामों के लिए बाहर निकलना होता है, डोमेस्टिक हेल्प की भी जरूरत होती है। ऐसा क्या सुझाएंगे आप जिससे कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उनके आप में अपने अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ वो सॉल्व कर सके?
1: बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे बुजुर्ग हैं, ठीक है, अब यदि वो अपने घर पे रह रहे हैं, यदि उनको बाहर निकलना है, तो उनके आसपास या तो कोई यदि नहीं है, पड़ोसी लोग हैं, तो उनसे उनका

0: अच्छा होना चाहिए, पड़ोसियों को भी ध्यान रख का उनका फर्ज है कि अपने बाजू में जो है उनको ध्यान रखें। यदि वो बाहर जाते भी हैं तो उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आसपास के जो बच्चे रहते हैं, यूथ रहते हैं, तो एक सामाजिक जो सोसाइटी है तो उस पर लोग यदि योगदान देते हैं तो उनका भी अच्छा भला होगा। और ये जो बुजुर्ग हैं और जो यूथ है, इनका एक कॉम्बिनेशन तभी बनता है जब बुजुर्ग उनसे या तो इंटरेक्ट हो या तो यूथ उनसे इंटरेक्ट हो।
1: तो आपके कहने का मकसद ये है कि इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जितने भी बुजुर्ग हैं वो आसपास के लोगों से मिले जुले बात करें, और लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पूछते देखते और बातचीत करते रहें।
0: बिल्कुल, जितना मैं समझता हूँ और जितना मैंने लोगों को जाना है, देखा है, मैंने सेवा किया है कि जो भी बुजुर्ग आसपास के अपने अड़ोसी पड़ोसी मिलते जुलते रहते हैं तो उनको ज्यादा तकलीफ आती नहीं है। तकलीफ उनको आती है जो ज्यादा रिजर्व रहते हैं, वो इंटरेक्ट नहीं होते हैं, घर के अंदर पैक रहते हैं, तो उनको एक्चुअली क्या है कि जो बाजू वाला है ना वो भी उनको जानता नहीं है। यदि वो प्रॉब्लम में आते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि इनके लिए मुझे हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये जो सोशल चीजें हैं आजू बाजू, मेरा मानना है कि सबको एक आपस की जो कम्युनिटी है उससे मेलजोल तो रहना ही चाहिए। और सेकंड थिंग, जो यूथ है उनको हेल्प तो करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो हमारा एक कर्तव्य भी है, जितना भी मन पड़ता है उतनी हेल्प तो उनकी करनी चाहिए।
1: जी जी जी, बहुत शुक्रिया आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने ये विचार साझा किए।
0: धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार, भोपाल में अभी हमारे साथ थे बदलते सामाजिक परिवेश और बुजुर्गों की देखभाल, सम्मान और सामाजिक और भावनात्मक सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए श्री अवध बैस। और इसी बातचीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल सुबह 7:20 पर ज़रूर सुनिए कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी भोपाल है, समाचार प्रभात आकाशवाणी की।
2: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, और लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की।

0: श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर

0: आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग-अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7 हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड

0: पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: on the occasion

मुस्कुराइए कि एक नया सबेरा नई उम्मीदें लेकर आपकी चौखट पर आ खड़ा हुआ है। सुप्रभात दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरमई सबेरा आकाशवाणी भोपाल पर। मैं हूं आपकी दोस्त सरिता।

0: दोनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

दोस्तों कहते हैं कि हवा की अपनी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जब वो चंपे और चमेली के बाग से गुजरती है तो खुद भी महक उठती है। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे हमनवाज जैसे होंगे, हमारी ज़िंदगी की महक भी वैसी होगी। अगर आपके पास कोई

ऐसा दोस्त है जो आपकी खामोशी को पढ़ लेता है, जो मुश्किल घड़ी में कहता है कि तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। चलिए इस खूबसूरत और सच्ची दोस्ती के नाम सुनते हैं ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा आकाशवाणी भोपाल से। आज श्रोताओं, बात हो रही है अच्छे दोस्तों की, सत संगति की, यानी अच्छी कंपनी की। दोस्तों की अच्छी संगति का मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं होता। जो किताब आप मेज पर रखकर पढ़ते हैं, जो पॉडकास्ट आप कान में लीड लगाकर सुनते हैं, और सुबह सुबह सोशल मीडिया पर जो आप थॉट्स स्क्रॉल करते हैं, वो सब आपकी संगति है। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी चीज़ों के साथ होती है तो पूरा दिन कमाल का गुजरेगा। तो आज क्यों ना अपने उन दोस्तों को थैंक यू मैसेज भेजा जाए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की धूप लेकर आते हैं। सोचिए मत, उठाइए फ़ोन और कह दीजिए अपनी दिल की बात इस प्यारे से गीत के साथ।

ये आकाशवाणी भोपाल है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12/7/2026 यानी आज शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते वे आज यानी 12/7/2026 आज शाम को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 12/7/2026 यानी आज शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी भोपाल है।

श्रोताओं, हम वापस आते हैं अपने कार्यक्रम पर और अब बात करते हैं आपसे। जोश और उमंग से भरी इस सुबह में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार मत करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। सच्चे और अच्छे लोगों का साथ थामे रखिए। इस कार्यक्रम के साथ और अब सुनते हैं ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुरमई सवेरा को कुछ समय के लिए यहाँ पर विराम देते हैं। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भिंड जिले के लहार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर के ग्राम बुड़ानिया में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अब तक 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। और राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबेरा। श्रोताओं, एक बात मन में आई है तो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आधा गिलास पानी खाली भी होता है और आधा भरा हुआ भी होता है। आज सुबह तय कीजिए कि आपको भरे हुए हिस्से को देखना है या खाली हिस्से को। शिकायतें तो हर मोड़ पर मिलेंगी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी ढूंढिए। चलिए आज शुक्रिया अदा करने की आदत डालते हैं और हम आपको सुनाते हैं ये बहुत प्यारा सा गीत।

ये आकाशवाणी भोपाल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि सवेरा। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 यानी आज शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 12 जुलाई 2026 यानी आज शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 12 जुलाई 2026 यानी आज शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य हमारे फ़ोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी भोपाल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा।

श्रोताओं, हमेशा बड़ी खुशी का इंतजार क्यों करना। आज सुबह की इस खिली धूप में, चाय की पहली चुस्की में जो सुकून है, चलिए उसी को सेलिब्रेट करते हैं। छोटी छोटी खुशियों को जोड़कर ही तो एक बड़ी सी खूबसूरत जिंदगी बनती है ना।

इस मोटिवेशनल गीत के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा को समेटने की इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाते हैं देवेंद्र सिंह और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं स्वच्छता गीत।

देवेंद्र सिंह और साथियों की गाए इस गारे के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सरहाण में हाजिर आयां तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। कार्यक्रम जी शुरुआत अॼु नारायण श्याम जी हिननि सिटियुनि सां था कयूं। कारन ककरनि जी छिम छिम, सोनियूं बिजलियुनि जी रिम छिम, पाणी पाणी हर कंहिं हंधि, अचे हवा मां मिठी सुगंध। मथां इंडलठ रंग कढिया, हेठि अछा राबेल टिड़िया, टांडाणा ईअं लाट कढनि, उभ में झिरमिर झुमिर विझनि। रंग अजब सारंग रचे, मोर नचे ॾिण रंग नचे। साथियो, मींहं जी हिन मुंद में तव्हां हिकु मुहिम बाबति ज़रूरु ॿुधो हूंदो। हिकु वणु माउ जे नाले। 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस जे मौक़े ते भारत जे प्रधानमंत्री जी नई दिल्लीअ जे बुद्ध जयंती पार्क में पिपल जो बूटो लॻाए इन मुहिम जी शुरूआत कई हुई। इन मुहिम जो बिटो मक़सदु आहे पर्यावरण जी संभाल ऐं माउ लाइ आदर ऐं शुक्रगुज़ारी। जहिड़ी तरह माउ ॿार जो पालन पोषण कंदी आहे, साॻे

तरह वण बि असांखे ऑक्सीजन ऐं खाधे जे रूप में जीवन दान ॾींदा आहिनि। साथियों, ही मुहिम रुगो ॿूटो लॻाइण ताईं महदूद कोन्हे, माउ जे नाले ते लॻायल ॿूटे जी तंहिं वक़्त ताईं संभाल करण जो संकल्प आहे जेसीं ताईं हू हिकु मज़बूत वण न बणिजी वञे। पंहिंजी माउ खे सत्कार ॾियणु ऐं पंहिंजी धरती माउ खे बचाइण लाइ असां सभिनी खे बि इन मुहिम सां जुड़ी घटि में घटि हिकु ॿूटो ज़रूरु लॻाइणु घुरिजे। इन सां गॾु ई कार्यक्रम में वक़्तु थो थिए तव्हांजे मनपसंद गीत संगीत जो, त अचो गॾिजी मज़ो माणियूं हिन सुहिणे कलाम जो।

दोस्तों जेठ जी उमास माना सेसन जो त्योहार भी अचण वारो आहे। अगे जड़ी घर जा मर्द वापार लाए घर खां बाहर वेंदा हुआ त ज़ाइफाऊं उन्हनि जी सलामती लाए प्रार्थना कंदी हुयूं जीअं हू सुख शांति सां मोटी अचनि। अॼु बि सभिनी सिंधी कुटुंबनि में घर जे मर्दनि पुटनि ऐं पोटनि लाइ मन्नत कई वेंदी आहे ऐं उन्हनि जी पसंदि जी शइ बि ठाहिबी आहे। कुझु घरनि में उमास बदिरां चंड बि पूजबो आहे। सेसन में छोला, मिठी सयूं ऐं पीली दाल वारा चांवर ज़रूरु ठाहिबा आहिनि। अंब ऐं ॼमूं रखबा आहिनि। हथ में सेसा ऐं ड्रब रखी आमड़ो लीमड़ो खाई भरियो पेटड़ो जिन रखायो जेठड़ो जीअनि मुंहिंजा पुटड़ा पोटड़ा आमड़ो लीमड़ो इहो चइबो आहे ऐं सेसा दरिया साईं माना साईं झूलेलाल खे अर्पण कबा आहिनि। त दोस्तों आसीसूं पुॼाइण वारे हिन सेसन जे त्योहार जी तव्हां सभिनी खे वाधायूं। अचो त ॿुधूं था साईं झूलेलाल जी शान में ही भॼन।

0: साथियों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अज असां नींढ ॾिनी आहे ध्यातल सुन्यातल कवि वरिष्ठ साहित्यकार ऐं गायक श्री नारी लछवानी जी के। अचो त ॿुधो नारी लछवानी जी अॼु जी पेशकश।
1: मां अॼु तव्हांखे कुझु रचनाऊं तरन्नुम में पढ़ी थो ॿुधायां, माना तरन्नुम में ॻाए करे, जीअं लय ऐं संगीत उन में उनजो बि तव्हां आनंद वठी सघो। त इहे पहिरीं रचना आहे, दिलि कंहिंजी धड़काइण लाइ गीत लिखां थो ॻाइण लाइ, दिलि कंहिंजी धड़काइण लाइ। हाणे हिनखे तरन्नुम में कीअं चवंदासीं ॿुधो। गीत लिखां थो ॻाइण लाइ, गीत लिखां थो ॻाइण लाइ, दिलि कंहिंजी धड़काइण लाइ।

जो भन के जर कायण ले दिल के हैं जी धड़कायण ले।

सिके शर्माण ले दिल के हैं जी धड़काण

दिल कहे जी धड़कन ले, गीत बनन का लात पखी पखीअ जे लात वांगुरु मुंहिंजा गीत बणिजी पवनि। गीत बणन का लात पखी समझे शल

ریشل جذبات سکی جیون آ سر چائن لے دل

दिल कहे जी धड़कन ले, दिल कहे जी हिर खाएण ले। एक ॿियो बि गीत कुझु अहिड़े ई नमूने जो आहे, उहो मां तरनम में पेश करण थो चाहियां। दिल दिल जी धड़कन मुंहिंजा गीत बणनि, मुंहिंजा गीत हर कंहिंजे दिलि जी धड़कन बणिजी पवनि, इहा ई कामना आहे। दिलि

दिल दिल जी धड़कन, जिए जिए साहु खड़ा

सिक जा साज वजन जीअ जीअ साहुखणा सिक जा साज वजन अंगण त केरा हूं तके माना ॾिसे इंतज़ार में वाझाए पियो

शुभ शुभ पे र पवन दिल दिल जी धड़कन मुहे जागी तबणन।

चपरुखसार चुमन। आखिर में एकड़ी कामना आई अब आए तू बेकने है

0: मुंहिंजा गीत बणनि दिलि दिलि जी धड़कनि। हिकिड़ी नंढड़ी रचना आहे, तमामु नंढड़ी। मूं हुन खे ॿुधायो मूंखे चांहि ठाहिण न ईंदी आहे। मूं हुन खे ॿुधायो मूंखे चांहि ठाहिण न ईंदी आहे। अड़े कमाल आहे, चांहि ठाहिण में छा आहे? मां चुप हुन ॾे निहारणु लॻुसि। वरी चयईं, चङो भला, तेसीं गैस ॿारे वठि। मूं चयोमांसि, गैस ॿारण लाइ मूं कॾहिं माचिस या लाइटर हथ में न खयों आहे। कावड़ जी वई। वरी चयईं, कमाल आहे, कहिड़ो माण्हू आहीं, इन में छा आहे? मां चुपचाप हुन ॾे वरी निहारणु लॻुसि। हुन कावड़ जी चयो त चांहि काढ़ण कोन थी अचई, गैस ॿारण कोन थो अचई, त बाक़ी छा ईंदो अथई? बिना माचिस, बिना लाइटर, कंहिंखे बि किथे बि कॾहिं बि बाहि लॻाए सघंदो आहियां। हूअ शूके मूं ॾे निहारणु लॻी।
1: महिरबानी नारी लछवानी जी, हिन तमामु सुहिणी पेशकश लाइ सचपच तव्हांजा गीत दिलि दिलि खे धड़काइनि था। कार्यक्रम में हाणे वक़्तु आहे ज़रूरी ॼाण ॾियण जो। त अॼु जी पहिरीं जानकारी आहे विश्व युवा कौशल दिवस बाबति। संयुक्त राष्ट्र महासभा पारां दिसंबर 2014 में 15 जुलाई खे विश्व युवा कौशल दिवस करे मल्हाइण जी पधिराई कई वई, जंहिंजो मक़सदु हो नौजवाननि खे रोज़गार ऐं वापार लाइ ज़रूरी हुनर प्रदान करणु ऐं इन जे महत्व बाबति सुजाॻी आणणु। बदिलजंदड़ दुनिया में रुगो पारंपरिक तइलीम काफ़ी न आहे। तकनीकी विकास, डिजिटल क्रांति ऐं बदिलजंदड़ वैश्विक बाज़ार जे करे व्यवहारिक हुनर जी घुर्ज तेज़ीअ सां वधी आहे। नौजवाननि खे हुनरमंद बणाइण सां बेरोज़गारीअ खे घटि करणु सवलो थो थिए ऐं देश जी आर्थिक तरक़ीअ जो बि दर खुले थो। हुनर नौजवाननि में आत्मविश्वास पैदा कंदो आहे ऐं उन्हनि खे पाण भरोसो

ठाहींदो आहे। भारत जहिड़े देश में जिते नौजवाननि जी विशाल आबादी आहे, ही ॾींहुं तमामु महत्व वारो आहे। हिते स्किल इंडिया ऐं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जे तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास जहिड़ियूं योजनाऊं पयूं थियूं हलनि। नौजवाननि खे उद्योगनि सां जुड़ियल ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी आहे, जंहिं सां हू बहितर रोज़ी रोटी कमाए सघनि। विश्व युवा कौशल दिवस असांखे यादि ॾियारे थो त जवाननि जे हुनर में निवेश करणु असल में असांजे महफ़ूज़ ऐं खु़शहाल आईंदे में निवेश करणु आहे। हाणे अॼु जी ॿी ज़रूरी ॼाण आहे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बाबति, जेको साल 1998 खां वठी 17 जुलाई जे ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। हीउ ॾींहुं अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते न्याय प्रणालीअ खे मज़बूत करण ऐं पीड़ितनि जे हक़नि जी रक्षा करण लाइ समर्पित आहे। सॼी दुनिया में जेके गंभीर अपराध थियनि था, जीअं नरसंहार, जंग सां लाॻापियल अपराध, इंसानियत जे ख़िलाफ़ अपराध, इन्हनि जी रोकथाम ऐं दोषियुनि खे सज़ा ॾियारण ही हीउ ॾींहुं मल्हाइण जो मक़सदु आहे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस रुगो हिकु तारीख़ न आहे, बल्कि हिकु निष्पक्ष ऐं पुरअमन दुनिया ठाहिण जो सामूहिक संकल्प आहे, जिते हर नागरिक खे कंहिं बि भेदभाव बिना न्याय मिली सघे। हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त मज़ो था माणियूं हिन सुहिणे गीत जो।

0: दोस्तों, हिन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि समाप्त थो थिए। उमेद आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजबो, सभ जो भलो।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए। डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख है लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। डिंडोरी जिले में इस बार मानसून की बारिश देर से शुरू हुई और अभी तक अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, जिससे फसलों की बुआई भी प्रभावित हुई है। हालांकि कृषि विभाग ने पहले ही किसानों को कम बारिश की संभावना के चलते फसलों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह जारी की थी। पिछले सप्ताह हुई बारिश में कई नदी नालों में बाढ़ की स्थिति भी बनी। जलभराव एवं आपदा जैसी स्थिति की रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने नगर के नर्मदा डैम घाट, शंकर घाट तथा इमलीकुटी नाले का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने संबंधित एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नालों की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गंदे पानी को नर्मदा नदी में जाने से रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नगर परिषद डिंडोरी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली पवित्र एवं स्वच्छ निर्मल नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया एवं नगर परिषद आयुक्त की पहल पर मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से संचालित सीवर योजना के अंतर्गत शहर के 8 प्रमुख नालों का दूषित जल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है, जहां उसका उपचार कर पुनः उपयोग किया जा रहा है। सीवर योजना के प्रारंभ होने से पहले नगर परिषद क्षेत्र के 8 प्रमुख नालों से प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर दूषित पानी सीधे नर्मदा नदी में मिलकर नदी को प्रदूषित कर रहा था। कृषि विभाग द्वारा एफआरए के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा प्राप्त कृषकों से अपील की गई है कि वे खरीफ मौसम में उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई टोकन प्रणाली का उपयोग करें। ई टोकन व्यवस्था के माध्यम से कृषक निर्धारित तिथि एवं समय पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिले में किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उर्वरक भंडारण और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। राज्य नीति आयोग की प्रभारी एवं शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने आकांक्षी विकास खंड करंजिया में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र डिंडोरी द्वारा डीपीआई आईटी एवं एमपी स्टार्टअप सेंटर के सहयोग से 8 जुलाई को जिला स्तरीय तेजस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले के युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं एवं उद्यमियों को स्टार्टअप, उद्यमिता, वित्तीय सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। कार्यशाला में एमपी स्टार्टअप सेंटर के विशेषज्ञों द्वारा स्टार्टअप इंडिया, उद्यम पंजीयन, नवाचार, इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम की विस्तृत जानकारी दी गई। डिंडोरी जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए संचालित एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिले को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए जिले की टीम को बीते 28 जून को आरसीपीवी नरोना प्रशासन तथा प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में बीते दिनों जल संचय एवं जनभागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया। जिले में इस अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप डिंडोरी ने देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। अभियान के तहत जिले की 364 ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी से हुए जल संरक्षण के कार्य संपन्न हुए, जिससे कुल 31,21,200

सौ घन मीटर जल संग्रहण क्षमता का विकास हुआ। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, जिसमें डिंडौरी जिले के विकासखंड शहपुरा स्थित शासकीय आश्रमशाला अंग्रेजी माध्यम को स्थान मिला है। ये जिले एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। विद्यालय ने स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और हरित परिसर निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। जिला परियोजना समन्वयक दिवाकर तिवारी ने बताया कि चयनित विद्यालय को प्रशस्ति प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जुलाई माह में जिले में डेंगू निरोधक माह चल रहा है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पांडे के निर्देशन में डेंगू से बचाव एवं जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर बीते दिनों रवाना किया गया। ये डेंगू रथ जिले के सभी विकासखंडों, शहरी क्षेत्रों, पंचायतों एवं हाट बाजारों में भ्रमण कर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सहित अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव संबंधी जानकारी दे रहा है। जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख था लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार के। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए, प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आप सुनेंगे उड़िया गीत, रचना है केसी पनिग्रह की।
1: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा, सीखोगे ना? ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
2: श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही।
1: श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
3: क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको तुम्हें जे सर्वनाम
4: क्यों नाम धरी
3: डाकी भी तुमको
4: तुम्हें जे सर्वनाम।
1: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
3: आलोक तुमको नपारे देखाई तुम्हें जे देखाओ ताहरे आलोक तुमको
4: नपारे देखाई
3: तुम्हें जे देखाओ ताहरे तुम्हें जे बेढ़ी चो कोटी विश्वर सबूरी भीतरे बाहरे
4: तुम्हें जे बेढ़ी चो
3: कोटी विश्वर सबूरी भीतरे बाहरे।
1: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
3: लुहा होई तुम्हें झरी पड़ा परा
4: केते नयनर कोणरू
3: लुहा होई तुम्हें झरी पड़ा परा
4: केते नयनर कोणरू
3: हस होई पुणी फूल परी फुट केते जे नरम अधरू हस होई पुणी
4: फूल परी फुट
3: केते जे नरम अधरू क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको
4: तुम्हें जे सर्वनाम।
1: अब हम गाना सीखेंगे।

ये गाना खेमटा ताल में है, इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो, इसमें एक ताली और एक खाली है।

0: अब हम गाना सीखेंगे।
1: इनम धरी डाकिबी तुमको, 1 2 3 4।

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आपने सुना उड़िया गीत, रचना थी केसी पनिग्रही की। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।

0: इसमें थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत, फिल्म सिलसिला से हमने लिया है। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शिवहरी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, शब्द रचना है साहिर की और संगीत निर्देशन है रवि का। फिल्म है हमराज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुर्बानी से, स्वर हैं कंचन, मनहर और आनंद के। शब्दों को गीतों में पिरोया है इंदिवर ने और संगीत बनाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जुदाई से, स्वर है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के, गीत लिखा है नंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
2: दिल करे हाए,
3: हाए।
2: कोई ये बताए क्या होगा।
4: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भिंड जिले के लहार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण लाडली बहना योजना के तहत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर में कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और इसमें अनेक गतिविधियां इस दिशा में की जाएंगी। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है, जिसमें भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन 30 जुलाई तक किया जा रहा है। और फीफा

फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड ने कल फ्लोरिडा में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे को 2-1 से हराया। वहीं वर्तमान विजेता अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म आशिकी 2 से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत और संगीत है मिथुन का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म आई मिलन की रात का ये गीत। स्वर हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण के, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म शेषनाग से, स्वर थे अनुराधा पुडवाल और सुरेश वाटकर के। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म सौगंध का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसे गाया है अनुराधा पुटवाल और मोहम्मद अजीज ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का।

लीजिए अब सुनिए जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में फिल्म सावन को आने दो का ये गीत, जिसे लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया है राजकमल ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म मोहरासी, स्वर अलका याग्निक और उदित नारायण की। ये गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है बिजू शाह का।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मोहब्बती से। स्वर है लता मंगेशकर और उदित नारायण के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लाहार से आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर कल से मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। एनीमिया, बाल और किशोर स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित पहले वेबिनार में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के 500 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र खोज एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक गुम इंसान के प्रकरण में अनिवार्य रूप से FIR पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने

वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत है कर्ज फिल्म का मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से, और मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

गीत आप सुन रहे हैं जुदाई फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत की फरमाइश की है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने।

शिवाजी चौक राजस्थान से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, देवास से रानू गुप्ता और सागर से नंदिनी तिवारी। आप सब ने पसंद किया है हरजाई फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, निदा फाजली का गीत और संगीत राहुल देव वर्मन का।

अगला गीत कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवार नारायणपुर बाबा पट्टी बलियासी ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, कंवर कॉलोनी बड़भाप से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य श्रीमाली, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये नगमा।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा अपने पराए फिल्म से, आवाज़ यशुदास और साथियों की, योगेश का गीत और बप्पी लहरी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:25 होने को हैं। सुनते हैं ये संदेश।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
0: सच?
5: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
0: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
5: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
0: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
5: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
8: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 आकाशवाणी भोपाल पर।
9: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
10: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
11: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
9: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
10: आकाशवाणी है ना,
12: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
10: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
9: शाम सुहानी हो,
10: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
9: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
10: सफर में
9: आपके साथ
10: आकाशवाणी।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ।

जू का मुंह दरवाजा जैसा हो गया। श्रीमती जी समझ जाती हैं कि मामला गंभीर है, डॉक्टर साहब को लेके फिर उनके पास पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब के पास बोले साहब मामला बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, अंगूर को गुब्बारा समझ रहे हैं थोड़ा सा मामला, प्लीज़ डॉक्टर साहब समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं चिंता मत करो। उस समय डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं, बोलते हैं अरे ये तो कंपाउंडर था, ये तो मेरा असिस्टेंट है, तुमने इससे चेकअप करवाया? मैं दिखाता हूँ आपको, ग्लास दिखाया जाता है, बोले साहब बिल्कुल ख़राब है, अच्छा नहीं दिखता है। अरे भाई बोले दिखने के ऊपर थोड़ी, तुमको शूट करना चाहिए। बोले नहीं साहब दूसरा लिखाओ। तो बोले कंपाउंडर इनको वो वाला कांच निकालो, ऊपर से एक बहुत बड़ा डब्बा झाड़ पहुँच के जूते के डिब्बे के समान उसको निकाला जाता है, उसमें एक ऐसा ग्लास रहता है जिसको लगा दो तो एक चीज़ दो दिखाई देने लगती है। जैसे ही साहब को दिखाते हैं आप उस ग्लास को लगाकर बड़े खुश होते हैं, बोले साहब ये बढ़िया है, बोले साहब यही लगा दो, इनको दफ़ा करो, फीस अंदर करो। उसके बाद साहब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दरवाज़ा खटखटाया गया, श्रीमती जी जैसे ही निकली पहला सवाल श्रीमती जी से करते हैं, अरे तुम्हारी बहन कब आई? अचानक बच्चे को दौड़ता हुआ आते देखते हैं, अपने बच्चे को देखकर फौरन बच्चे को देखकर अपनी श्रीमती से बोलते हैं, बड़ी तुम्हारी बहन का लड़का बिल्कुल हमारे लड़के जैसा है। मामला गंभीर है, श्रीमती समझ जाती हैं, बोले इनको कोई बड़े डॉक्टर को दिखाओ भैया, बहुत तबीयत ख़राब है इनकी। डीन साहब के पास लाया जाता है, बिल्कुल हॉस्पिटल के सबसे चीफ ऑफिसर डीन साहब चेयर में अपनी बैठे रहते हैं, चैम्बर के बाहर तीन चार लोगों के बाद इनका नंबर था। जैसे ही इनका नंबर आया ये प्रवेश करते हैं, डीन साहब कुछ लिखते रहते हैं नीचे, और जैसे ही ये अंदर आते हैं ये अपना सवाल करते हैं, बड़ी डॉक्टर साहब कितना गड़बड़ हो गया, पहले ऐसा हमको चश्मा दिया कि साला देखो हमको ऐसा बिल्कुल ये छोटा छोटा बड़ा बड़ा दिखता था, अरे अरे अंगूर का हमको गुब्बारा दिखने लगा नहीं, और उसके बाद देखो साहब ये हमको ऐसा ग्लास लगा है कि उसको एक चीज़ का दो दो दिखता, हमारी बहन कब आया, हमारी बहन का लड़का कब आया हमको नहीं मालूम। अभी डॉक्टर साहब ऐसा हमको काम करो कि हमको बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए। डॉक्टर साहब फौरन जवाब देते हैं ऊपर सिर उठाकर, सबका काम हो जाएगा, एक बार में एक आदमी आना, चार चार क्यों घुसे जा रहे हो? कई बार साहब हमने सोचा कि विदेश यात्रा करें और विदेश यात्रा का लुत्फ़ उठाएं, हमने हमेशा कोशिश की, जब जब हमने ऐसा महसूस किया कि हम विदेश यात्रा पर जाएं तो लगातार हम सोचते रहे, और विश्व कप भी निकल गया और गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हो गया, और उसके बद कई मेले ठेले ऐसे अवसर आए जब हमने सोचा कि हम जाएं लेकिन हम जा नहीं पाए हैं, और एक बार हमने सोचा जाएं तो जब भी ऐसा सोचा तो कभी शहर के बाहर या देश के बाहर जाने की विदेश यात्रा के लिए बारे में, तो ऐसा समझ में आया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बाहर हैं, अब देश में एकाध कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को होना ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसी पोजीशन में जा नहीं पाए। और आगे फिर हमने एक बार ऐसा प्रयास आया कि फुटबॉल के दौरान हमको विदेश यात्रा का मौका लग गया और हम दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए। आपको बता दें कि हम जबलपुर आकाशवाणी से बोल रहे हैं, दक्षिण कोरिया मतलब विदेश में है, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि भेड़ाघाट के आसपास कहीं है। तो दक्षिण कोरिया हम जैसे ही पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें बाहर जैसे ही हम वहाँ पता लगा, घर से पहले लिस्ट बना के ले गए थे कि जिस सामान लेना है वो सामान लेना, श्रीमती जी ने भी लिस्ट, अपने सामान की भी लिस्ट, जैसे ही वहाँ पता किया तो बड़ा महंगा, 5,000 का जूता, अरे बाप रे 5,000 का जूता। हमने कहा बहुत, शाम को वहाँ डिनर पे लोगों से बातचीत हुई तो वहाँ लोगों ने बताया, बोले साहब ये बहुत तरक्की वाला देश है, अभी आपके हिंदुस्तान को तो 50 साल लगेंगे, हमारे यहाँ पहुँचते हमारे यहाँ तो 5,000 का जूता मिलता है, ये समझ लो। तो हमने कहा ठीक है साहब, ये बात सही है कि 5,000 का जूता मिलता है, मगर आपके देश की जनसंख्या कितनी है? बोले 17 करोड़। बोले बस 17 करोड़ ना, जिस दिन 100 करोड़ का लेना उसके बाद 100 रुपये का जूता बेच के दिखाना। फिर विदेशी ने चालू किया, बोले साहब हमारे देश में तो एक क्लर्क की तनख्वाह भी 25,000 रुपये हुआ करती है, उसके बाद भी इतनी सुविधाएं हमारे देश में हैं कि बिल्कुल चिकनी साफ़ सुथरी सड़कें, प्रकाश व्यवस्था, बिल्कुल साफ साफ मामला है। तो हमने कहा साहब हम बिल्कुल ठीक है, हमें मालूम है कि आपके देश में सड़कों पर थूकने का भी 500 रुपये जुर्माना लग जाता है, अब उस हिसाब से अगर हमारे इंडिया की आप तुलना करो तो लोग 1,50,000 का तो दिन भर में थूक देते हैं। और सड़कों के किनारे आजू बाजू और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसका हिसाब लगाओगे तो इंडिया तो बहुत आगे है अभी हम।
बस एक बात हम मानेंगे कि आपके देश ने तरक्की की, उसके जो मूल कारण है वो ये है कि वो

0: हमारे देश के लिए संदेश भी है और जो आपने सीखा भी हिंदुस्तान से, कि वो आप एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। जिस दिन भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग फिर से हाथ पकड़ कर एक साथ चलना सीख जाएंगे, उस दिन देश की तरक्की होगी। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश ऊंचाइयों पर होगा, बुलंदी पर होगा।
1: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
2: हुआ क्या कि हमारे एक बहुत पुराने मित्र, जिन्हें पता चला कि हम कुछ मिमिक्रीज करने लगे हैं, कॉमेडीज करने लगे हैं, बहुत दिनों बाद हमसे मिलने आए और आते ही बोले, अरे मकरंद भाई क्या बात है साहब, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात। हमने कहा हाँ भाई आइए आइए, क्या बात है, आपसे वाकई में बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अरे लेकिन यार मानना पड़ेगा साहब, आप आए दिन मैंने सुना आप आकाशवाणी में भी कॉमेडी करने लगे हैं, चुटकुले सुनाने लगे हैं, और मिमिक्री तो साहब आप कमाल की करते हैं साहब, बहुत ही बढ़िया साहब। नहीं वो तो आपकी साहब दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है साहब, जैसा आप। नहीं नहीं लेकिन हमने देखा साहब आप मतलब कलाकारों की आवाज़ भी निकाल लेते साहब, और सबसे बड़ी बात साहब आप अपने पूरे देश की भाषाएं बोल लेते साहब, मतलब आप। हाँ जी बोल तो लेता हूँ साहब, भाषाएं सभी तरह की बोलता हूँ साहब, मतलब आप साहब सिंधी बोल लेते साहब। अरे बाबा यार बोल लेता है यार, सिंधी भी बोल लेता है ना यार। लेकिन भाई अब जैसे मराठी भी बोल लेते, हो बोलते ना भाई मराठी बोलते हैं, हम ही मराठी बन बोलते हैं। लेकिन अब पंजाबी भी बोल लेते यार, ओ जी यार पंजाबी बोलते हैं, तुझे जानते नहीं यार पंजाबी भी बोल लेते जे, मद्रासी भी बोल लेते हैं, अये यार मद्रासी भी बोलता जे मद्रासी। लेकिन यार एक बात बता यार मकरंद भाई, तुम कोई इंटरनेशनल भाषा जानते हो कि नहीं, कोई बाहर की भाषा? अंग्रेजी भाषा आती ना यार? नहीं वो तो सबको आती है, अंग्रेजी भाषा तो अगर सबको आती नहीं, और कोई भाषा? और कोई, और कोई बहुत सी भाषा है, नहीं कोई तो भाषा आती होगी, आती है भाई, चीनी बोल लेते हैं। अरे चीनी बोल लेते बहुत सही यार, मतलब चीनी बोल लेते यार बहुत सही यार। अच्छा बोल के दिखाओ। नहीं हम बोल के तो दिखा लेकिन तुम्हें समझ में आएगी? नहीं यार अब यार समझ में तो नहीं आएगी यार, पर अब कुछ बोल के दिखाओ। अच्छा बताओ क्या बोलें, अब ऐसा करो जैसे मान लो तुम इधर खड़े हो और उधर कोई आदमी है और तुम्हें उस आदमी को बुलाना है, कैसे बुलाओगे? हमने कहा ठीक अभी बताते हैं। देखो हम इधर खड़े हैं, वो आदमी उधर खड़ा है, हमें उसको बुलाना है, कहना है भाई इधर आओ। हिंदी में कहेंगे इधर आओ, चीनी में क्या कहेंगे? पिंग पोंग। अरे गजब यार, गजब कर दिया यार, मतलब तुम्हें चीनी बोल लिया, बहुत अच्छी यार बहुत सही। अच्छा एक और बताओ, अब क्या बताएं यार? नहीं मान लो उसी आदमी को वापस भेजना हो तो क्या बोलोगे चीनी में? वापस क्यों भेजेंगे, हम उधर चले जाएंगे फिर बोलेंगे पिंग पोंग।
3: राजेश मिश्रा, लगता है आपके घर के पिछवाड़े छुपकर मियां बीबी की बातें खूब सुनते हैं, इसलिए ये प्राइवेट बातें सुनाते ज्यादा हैं। देखें जरा क्या सुना रहे हैं।
4: लीजिए अब हास्य के इस क्रम में आपको ले चल रहा हूं ऐसे व्यक्तियों की ओर जिस की लाइन में मैं खुद लग चुका हूं, यानी कि जब बाल झड़ने लगते हैं और बाल कम होने लगते हैं तो व्यक्ति के चेहरे में भी अंतर आ जाता है, उसके विचारों में भी अंतर आ जाता है और लोगों को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। कुछ लोग बाल झड़ने के बाद, चांद झड़ने के बाद उसको छुपाने के प्रयास में रहते हैं कि उनको लोग ये ना कह सकें कि भैया बाल नहीं है, इनकी चांद निकल आई है, इनकी ये गंजे हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए लोग अपने अपने प्रयोग करने लगते हैं आजकल। पहले तो महिलाएं शुरू से ही अपने लिए चिंतित होती थी, किंतु पुरुषों को भी आपने देखा होगा कि कई बार अपन संडे को किसी के घर चले जाओ तो अपन को लगता, अरे भैया क्या हो गया, गोबर में गिर गए क्या? गोबर में गिर गए? नहीं जी, सिर में क्या लगा? नहीं मेहंदी लगाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरे लिपटे हुए चिपके हुए अपने खड़े, क्या यार आजकल यार अचानक बाल गिरने लगे यार भैया। तो वो मिसेस क्या है कि मेहंदी लगाती है, तो बोली कि आप भी संडे के संडे मेहंदी लगा लिया करो। अच्छा तो उससे बाल नहीं गिरते क्या? नहीं कुछ कम तो हुए, आपके पास कोई तरीका क्या? हाँ है, क्या करना पड़ेगा? अंदर से गठान लगा दो। बाल झड़ने की ये समस्या बड़ी कठिन हो गई, लोग बड़े अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करने लगते हैं जब से, हालांकि कुछ हीरो जिनकी चांद है और बढ़िया टाप चल रहे हैं, जब से कुछ लोग कंगी करते वक्त अपने आप को उस हीरो से तुलना करने लगे तो कुछ लोगों के चेहरे में चमक दिख जाती है कि भैया उसके भी है चांद है, अपनी भी चांद है, कोई बात नहीं। किंतु बाकी लोग आपने देखा होगा कि पूरे सामने से साफ
5: पीछे

0: थोड़े से बाल और उनको बड़ी स्टाइल से ऐसा लाकर पीछे से सामने तक चिपका देते हैं, ऐसा चिपका देते हैं, और अगर उसमें डाई काले कर दिया हो तो ऐसा लगता है जैसे डामलीकरण किया गया, जैसे कहीं रोड पर अलग से थेगरा सा नहीं लगा देते हैं, थोड़ा सा गड्ढे को भरा गया डामलीकरण, वैसा करके चिपका देते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मांग अपने आप बीच से निकलने लगती है। अब आप उनसे पूछो क्यों भैया क्या हो गया, अरे यार अजीब बीमारी हो गई। क्या अजीब बीमारी? अरे यार जी मांग जो थी जी खिसक खिसक के बीच में आ गई। कई लोगों की चांद निकलती है और वो दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यहां जो साफ हुआ यहां दाढ़ी बढ़ गई। लोगों को भैया साफ तो पैसा कमा रहे हो यार, काय है बिल्कुल गजब यार, काय का पैसा भैया। अरे तो अब जी देखो चांद, अरे का चांद, वो दाढ़ी कहाँ बढ़ा ली यार आपने, दाढ़ी कहाँ बढ़ा ली, जो बीमारी अजीब सी हो गई। का बीमारी हो गई? अरे जी बाल पूरे तरह से निकल आए। एक चांद वाले भाई साहब से हमने पूछा कि भाई साहब आपकी चांद है आपको क्या परेशानी होती है, बोले कुछ नहीं भैया, जब मैं सुबह मौत होता हूँ तो ये समझ में नहीं आता चेहरा कहाँ तक है। चांद निकलने से चेहरे की क्रीम और इसके खर्चे अलग बढ़ जाते हैं, ऊपर तक की व्यवस्थाएं अलग बढ़ जाती हैं। महिलाओं के तो वैसे बहुत कम चांद निकलती है, अगर निकलती हो तो आप कल्पना करो कि कितना खराब लगेगा। और अगर चांद निकलने लगे तो ये जो हिंदुस्तान की परंपरा घूंघट वाली जो परंपरा महिलाएं भूल गई हैं वो फिर से अपने आप चालू हो जाएगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: जब लोग कहेंगे कि देखो रामलाल की बहू कितनी होशियार है, बिल्कुल हमेशा घूंघट डाली रहती, फालतू बात नहीं करो कि बाल झर गए चांद निकल आई ये सब घूंघट डाल। नकली बाल लगाने की भी अब व्यवस्थाएं खूब बढ़ती जा रही हैं, आए दिन आप लोग देखते हैं कि नकली बाल लगा के। अब कई बार क्या होता है कि अपन मान लो हमेशा किसी को बिग में देखते हैं, बिग लगाए हुए देखते हैं, और उसके घर पहुंच जाए और वो मान लो बिग नहीं लगाए हुए, तो अपन अब उसी से पूछ रहे हैं कहीं भैया भैया कहाँ गए, आओ ना राजेश भाई आओ ना, नहीं नहीं भैया कहाँ, बड़े भैया, अरे आओ यार पहचान नहीं रहे, नहीं पहचान गए ना आप तो, मतलब श्यामू भैया के पिताजी कहलाए ना, अरे नहीं यार हम ही, अरे आप बाल, अरे देखता ना, अरे यार भैया आज तक समझे भी नहीं आया। अब ऐसे लोगों की अगर शादी हो जाए तो जब लड़की देखने गए तो बढ़िया बिग लगा के गए, बिग लगा के गए, बड़ी बहुत बढ़िया भैया यार गजब के बाल हैं, अरे आज के समय में ऐसे बाल यानी देखो लड़का जरूर अच्छा खाते पीते उसका है जब ही तो उसके इतने बाल हैं। शादी हुई, पगड़ी लगाई, पगड़ी में भी वो अपना संभाले लड़का कमल अपने कल में दबाएगी जिसमें बिग ना खिसक जाए, पगड़ी उतरती जाती रही। दूसरी विदा के टाइम पे अब ये बात कैसे पता चली कि जब एक जिसके बाल नहीं थे उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब आपके बाल नहीं थे आपकी शादी कैसे हुई, बोले नकली बिग बाल लगा के गया लड़की देखने गया। अच्छा फिर क्या हुआ, लड़की पसंद आ गई, अच्छा ठीक, फिर उसके बाद कह ले मैं दूसरी विदा कराने गया, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या जबलपुर गया भैया दूसरी विदा में, तो अब लोग बोले कि जिया जी ग्वारी घाट चलो नर्मदा किनारे नहाने के लिए। तो मैंने कहा भैया मैं नर्मदा जी चलूंगा जरूर किंतु नहाऊंगा नहीं। कनेक्टिव आंसर क्यों बोला आपने, नहाते तो यार क्या है कि अब बाल उतारना पड़ते तो समझ में आ जाते कि जीजा टकला है। चक्कर में अपन ने कहा कि मैं नहाऊंगा नहीं सिर्फ दूर से प्रणाम करूं, साले लोग कहने चलो जीजा नहाना नहीं नर्मदे हर करके चले आना। मैं गया भैया, अब जब मैं गया तो बढ़िया साली लोगों ने बोला अच्छा जिया जी नहाना नहीं किंतु तेल लगा लो मालिश बढ़िया नर्मदा किनारे माँ के दर्शन, और कह लें जबरन कह लें यार डुबकी लगवा दी। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब वो जीजा थोड़ी देर बाद लगे चिल्लाने जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो, कह लें हाँ अब हमारे बाल बहे जाए अभी लड़का हमारे साले पीछे पीछे तैरक जाए जीजा बहगो जीजा बहगो। फिर अब हमने कही हम तुम्हारे जीजा, तो कहने हमें इतनो मारो यार कहने टकला जीजा बंदा। फिर अरे फिर क्या, अब 20 दिन हो गया भाई साहब अभी तक परेशान है, मेरी बीवी भी मानने तैयार नहीं है, वो भी कहती नहीं वो उनके तो बहुत अच्छे

0: पागल थे, आप तो टकला हो। तो कहने भाई साहब ऐसा है, बिग लगाने से फायदा भी है तो नुकसान भी है। हमने हाँ भाई साहब ये तो आपने अच्छा बता दिए, मेरे भी बाल अब कम हो रहे हैं तो मैं कभी बिग नहीं लगाऊं। कहने बिल्कुल मत लगाओ, जो ईश्वर ने जैसा दिया वैसे ही रहो, उसी रूप को प्राप्त करते रहो, ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो। अच्छा अच्छा ये बहुत अच्छा आपने बता दिया। तो ये बात हुई जिनके बाल नहीं हैं या जिनके बाल झड़ने वाले हैं, उनके लिए मैंने आपके बीच में हास्य व्यंग प्रस्तुत किया। लीजिए, हंसना मना है इस आकाशवाणी के कार्यक्रम में। आपको एक और व्यंग की ओर ले चल रहा हूँ कि वही चीज़ आप लोग सुनते हैं, वही चीज़ हम सुनते हैं, वही चीज़ आप देखते हैं, वही चीज़ एक व्यंग्यकार हास्य कलाकार देखता है। तो उसके नज़रिए को हम प्रस्तुत करते हैं और फिर बात होती है कि हंसना मना है। तो कैसे अनाउंसमेंट हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 3 पर, रेलवे स्टेशन पर, वो आप कैसा सुनाई आपको दे रहा है ये मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो अनाउंसमेंट सुनाई देता है वो बड़ा साफ सुनाई देता है, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जो अनाउंसमेंट होता है वो इतनी दूरी हो जाती है कि हमको कुछ अजीब सुनाई देता है। 3 नंबर प्लेटफार्म पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है। 4th प्लेटफार्म नंबर पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है। 5वें का अनाउंसमेंट हमें कुछ समझ में नहीं आता। प्लेटफार्म नंबर 1,
1: अटेंशन प्लीज, बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाने वाली मेल गाड़ी अपने निर्धारित समय पे जिन यात्रियों को बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाना है अपना टिकट प्राप्त कर ले।
0: बड़ा साफ सुनाई देता है। अब याद करिए प्लेटफार्म नंबर 2,
2: अटेंशन प्लीज, बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाने वाली मेल गाड़ी अपने निर्धारित समय पे जिन यात्रियों को बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाना है अपना टिकट प्राप्त कर ले।
0: 3 नंबर में आवाज और अजीब हो जाती है। चौथे का अनाउंसमेंट और अजीब होती
2: है।
0: 5वें का अनाउंसमेंट कुछ समझ में नहीं आता। जिसको जहां जाना वहां चला जाए। अनाउंसमेंट खत्म होता है, लाइन लगना शुरू हो जाती। लाइन कहीं की भी हो, चाहे टाकीज की हो, चाहे बस स्टैंड की हो, चाहे रेलवे लाइन हो, लाइन एक सी होती है। इसमें अजीब अजीब आवाजें आपको सुनाई देने मिलती हैं। प्लेटफार्म में आवाज आई,
2: चाय चाय वाला, आलू बंडाई समोसा वाला,
0: ए आलू बंडा इधर उधर खिलाओ खिलाओ,
2: कितना कड़वा है यार।
0: अरे बाबू साहब बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसी बात कर रहे हैं, कड़वा कड़वा। अरे भैया कड़वा लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। अरे बाबू साहब बिल्कुल, आप कैसा करते हैं, आप 2 दिन पहले निकले थे, आपको खिलाया था ना। हाँ खिलाया था, उस दिन तो बड़ा अच्छा था, उसी दिन वाला तो आज है ये। लाइन लग जाती है, लाइन लगने, अरे भैया, अरे बाप रे, धक्का नहीं देना, कैसा कर रहे हो भाई साहब, ए धक्का मत देना, ओ भैया। एक भाई साहब खड़े थे, उनके दांत काफी बड़े थे, कहले भैया धक्का मत दो, सामने वाले की पीठ में दांत घुस जाएंगे। एक भाई साहब काफी मोटे थे, उन्होंने कहा ओ भैया ओ मोटे, धक्का मत दो भैया, ए मोटे जी धक्का मत दो जी, मैं धक्का कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सांस ले रहा हूँ। अरे मोटे यार, अरे बाप रे, कैसा कर रहे यार, अरे भैया। ये लाइन खत्म होती है, रेल ट्रेन आकर रुकती है, और हम और आप दौड़ पड़ते हैं अपनी सीट के लिए। है भाई साहब जी जी, पेपर मेरा रखा था, मैंने रखा था, देखिए गलत बात मत करिए आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये पहले से मैं इतने दिन से इसी सीट में बैठ के आता हूँ, मैं डेली अप डाउन करता हूँ, आप बात कैसी कर रहे हैं। वो ठीक है भैया, ये मैं यहाँ बैठा था। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं डिब्बे के अंदर। एकदम से अंधेरा हुआ, अंधेरे के साथ साथ अब आप डिब्बे के अंदर जब बैठे रहते हैं तो कई बार ये होता है कि लोग भोजन करते रहते हैं और आपकी नज़र उनके तरफ पड़ती रहती है कि भोजन कर रहा है आदमी और आपको नहीं पूछ रहा है, तो आप उसी के तरफ देखे रहते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कोई आपको पूछ लेता है कि भाई साहब एक आध पूड़ी चलेगी, तो आप मना भी कर देते हो। क्यों मना कर देते हैं, क्या ऐसा लगता है इसमें बेहोशी वाली पूड़ी ना हो। तो अब पूछे तो प्रॉब्लम है, नहीं पूछे तो प्रॉब्लम है। अब उसके बाद सफ़र धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी का चलता है। अब टीटी को बोला एक आदमी ने कि भाई साहब ऐसा करना, मेरे को आप कटनी में उतार देना और मैं बहुत

0: तेज सोता हूं, और जब आप मुझे नींद से उतारेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको गाली बकने लगूं, चिल्लाने लगूं, खींचने लगूं, क्योंकि मैं बचपन से मुझे कोई ने भी नींद से उठाया और मुझे इतनी जोर से चंडाली चढ़ती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर डालूं। तो कब जब भी अगर स्टेशन आए तो आप मुझे उतारना, अगर मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँ तो आप बुरा नहीं मानना, बस मेरा इतना निवेदन है। कहें ठीक है, मैं आपको कटनी में उतार दूंगा, आप आराम से सोइए, कोई बात नहीं। अगला आदमी कटनी स्टेशन के आगे जाकर सतना में लगा चिल्लाने टीटी को, आपको मैंने बोला था कि आप कटनी में मेरे को उतार देना, मैं सोता रह गया, आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, आप लोग समझते क्या हो। और टीटी जो खड़ा था, टिकट कलेक्टर बेचारा चुपचाप खड़ा सुन रहा था, सुनते सुनते इतनी गालियां उसने सुन ली। और जब वो आदमी दूसरी ट्रेन पकड़ के कटनी की ओर चला गया तो मैंने टीसी से पूछा कि भैया उस आदमी ने यार इतनी गाली आपको बकी, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आपने ये भी नहीं बोला कि साहब मैं धोखे से नहीं उठा पाया हूँ, मैं भूल गया था, कटनी की जगह आप सतना आ गए, कोई चिंता की बात नहीं, आप चुपचाप सोचते रहे, क्या बात थी। कहने भैया मैं ये सोच रहा था कि धोखे से जिसको ज़बरदस्ती कटनी में उतार दिया उसका क्या होगा।
1: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाज़त मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की 11वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड जिले के लाहार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपये की पूरी हो चुकी 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 83 करोड़ रुपये से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अब तक 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और 20 जुलाई को फाइनल होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक विषय, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहनों, यह विषय केवल एक कहावत नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस यानी इंटरनेशनल होप डे के संदर्भ में इस विषय पर विचार करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि आशा केवल एक भावना नहीं बल्कि वह शक्ति है जो व्यक्ति, समाज और पूरे विश्वास को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। बहनों, यदि जीवन में उम्मीद ना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है। जब कठिन परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब केवल उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन जो व्यक्ति आशा का साथ नहीं छोड़ता वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। एक किसान बीज बोते समय इस उम्मीद के साथ मेहनत करता है कि उसकी फसल अच्छी होगी। एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई इस आशा से करता है कि वह अपने जीवन में सफल बनेगा। एक खिलाड़ी कठिन अभ्यास इसलिए करता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेगा। यदि इन सबके जीवन से उम्मीद समाप्त हो जाए तो उनके प्रयास भी समाप्त हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आशा ही हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की शक्ति देती है। बहनों, यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की किरण बन सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सच्ची आशा का संदेश है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अनेक वैज्ञानिकों ने वर्षों के असफल प्रयास के बाद भी सफलता प्राप्त की। आज का युग अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, बेरोजगारी, मानसिक तनाव, सामाजिक असमानता और अनेक वैश्विक समस्याएं हमारे सामने हैं। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान निराशा से नहीं बल्कि आशा, सहयोग और सकारात्मक प्रयासों से ही संभव है। बहनों, हमें अपने जीवन में तीन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और अटूट उम्मीद। यदि ये तीनों हमारे साथ हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। उम्मीद हमें केवल सपने देखने की प्रेरणा नहीं देती बल्कि उन सपनों को साकार करने का साहस भी देती है। इसलिए बहनों, कभी निराश न हो और दूसरों को भी निराश होने से बचाएं, क्योंकि उम्मीद की किरण कभी बुझने न देना, मुश्किलों से कभी खुद को झुकने न देना, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह की रोशनी पर विश्वास कभी टूटने न देना।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक हटाएं, कागज के थैले अपनाएं के विषय में। बहनों, यह केवल एक विषय नहीं बल्कि हमारी धरती, हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश है। बहनों, आज पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। प्लास्टिक का उपयोग हमारी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। बाजार से सामान खरीदना हो, भोजन पैक कराना हो या किसी वस्तु को ले जाना हो, हर जगह प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग देखने को मिलता है। सुविधा के कारण हम इनका उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इनके दुष्परिणामों पर अक्सर ध्यान नहीं देते। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या है कि यह प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होती। इससे पूरी तरह गलते नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इस दौरान यह मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करती है। नालियां जाम हो जाती हैं, नदियां और समुद्र प्लास्टिक कचरे से भर जाते हैं तथा अनेक पशु पक्षी इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आज समुद्रों में रहने वाले जीवों के पेट में प्लास्टिक निकलना एक सामान्य बात बन गई है। खेतों में प्लास्टिक मिलने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है। जलाने पर प्लास्टिक जहरीली गैसें छोड़ती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे श्वसन संबंधी रोग, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है अब हमारे भोजन और पीने के पानी तक पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक सुरक्षित, सरल और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की आवश्यकता है। यही विकल्प है कागज का थैला। कागज के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये आसानी से पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं और प्राकृतिक रूप से जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। इनके उपयोग से प्लास्टिक प्रदूषण कम हो जाते हैं। इनके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। यदि हम खरीदारी के समय अपने साथ कागज का थैला या कपड़े का थैला लेकर जाएं, तो प्लास्टिक की आवश्यकता बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। बहनों, विश्व पेपर बैग दिवस हमें यह प्रेरणा देता है।

कि हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर बड़े परिवर्तन की शुरुआत करें। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक प्लास्टिक की थैली का उपयोग कम कर दे तो वर्ष भर में करोड़ों प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग रोका जा सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बहनों, केवल सरकार के नियम बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। जब तक प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। हमें स्वयं भी प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। विद्यालयों में कागज के थैले बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। दुकानदारों को प्लास्टिक के स्थान पर कागज या कपड़े के थैले देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमें अपने जन्मदिन, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में भी पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। चलिए बहनों, इस विश्व पेपर बैग दिवस पर हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। खरीदारी के समय कागज या कपड़े का थैला साथ लेकर जाएंगे। अपने आसपास के लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सादगी में जीवन का सार है के विषय में। बहनों, यह विषय केवल भाषण का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो हमें वास्तविक सुख, शांति और संतोष का मार्ग दिखाती है। बहनों, सादगी का अर्थ केवल साधारण पहनना या कम संसाधनों में जीवन बिताना नहीं। सादगी का वास्तविक अर्थ है विचारों की पवित्रता, व्यवहार में विनम्रता, जीवन में ईमानदारी और आवश्यकताओं को सीमित करना। सादगी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके पहनावे, धन या दिखावे से नहीं बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और कर्मों से होता है। बहनों, आज का युग आधुनिक और प्रतिस्पर्धा का युग है। लोग अक्सर अपनी पहचान बनाने के लिए बाहरी दिखावे, महंगी वस्तुओं और अनावश्यक खर्चों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जबकि सादगी जीवन भर सम्मान और विश्वास दिलाती है। सादगी हमारे जीवन को निखारती है। एक सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति अहंकार से दूर होता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने कार्यों से समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसे व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष और लालच कम होता है। वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है और परिस्थितियों का धैर्य पूर्वक सामना करता है। बहनों, सादगी का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं तब प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग होता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सादगी केवल एक आदत नहीं बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। विद्यार्थी जीवन में सादगी का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी अनुशासन, समय का सदुपयोग, मेहनत और सादगी को अपनाते हैं तो वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों के माध्यम से सादगी को अपना सकते हैं, जैसे अनावश्यक खर्च से बचना, भोजन की बर्बादी न करना, बिजली और पानी का सोच विचार कर उपयोग करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, विनम्र भाषा का प्रयोग करना और सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। यह छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। बहनों, सादगी कमजोरी नहीं आत्मबल और आत्मविश्वास की पहचान है। आइए हम सभी अपने जीवन में ईमानदारी, विनम्रता और संतोष को स्थान दें। हम दिखावे की संस्कृति से दूर रहकर अपने चरित्र और कर्मों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। यही सादगी दिवस की सच्ची भावना होगी और यही हमारे जीवन का वास्तविक सार भी है।

बहनों, इन दिनों बाजार में दशहरी आम काफी आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इसे खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, पाचन सुधरता है और त्वचा स्वस्थ रहती है। यह विटामिन

ए सी और फाइबर से भरपूर होता है, इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं दशहरी आम से बनने वाले मैंगो लस्सी और मैंगो फिरनी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ताज़ा दही, 1 कप दशहरी आम का गूदा, स्वादानुसार चीनी, कुछ बर्फ के टुकड़े। सभी सामग्री को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। 1 गिलास में डालकर ऊपर से कटे हुए आम के टुकड़ों से और कुछ ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करें। तैयार है मैंगो लस्सी। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप भीगा हुआ पिसा चावल, 1 लीटर दूध, 1 कप आम का गूदा, 1/2 कप चीनी, इलायची स्वादानुसार और मेवे बारीक कटे हुए जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। दूध में पिसा चावल डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं, चीनी मिलाएं और ठंडा होने दें। जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें आम का गूदा मिला लें। मेवे से सजाकर फ्रिज में ठंडा करें और सर्व करें। तैयार है टेस्टी मैंगो फिरनी। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:27 हुए हैं। समय है एक छोटे से संदेश का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे गोपाल कुमार पार्ष्णेय, मदन मोहन ब्रजवासी और माधुरी शर्मा के गाए लोकगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ, लोक संगीत का कार्यक्रम क्षमा कीजिए संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे वीरेंद्र मैथिल की गाई गजलें।

0: वीरेंद्र मैथिल की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कॉमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2 बजने को हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला नगमा किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म मोहब्बत से, इंदिवर का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आपके साथ फिल्म से, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित किया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

0: योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। राज्य सरकार द्वारा महानवंबर 2025 से इस मासिक आर्थिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए की निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। योजना की शुरुआत यानी जून 2023 से लेकर जून 2026 तक सरकार द्वारा कुल 37 किश्तों का नियमित अंतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 238,96,00,000 रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके 40 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर बीएसएफ परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सहभागिता की। यह महाअभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पौधारोपण के साथ 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापित कर वर्षा जल के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस महाअभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया।
1: एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर में 21 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। जल है तो जीवन, ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुदेव कुटुम्बकम की भावना के आधार पर है। और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाकर टिकता है। मेरी
0: ई प्रवेश अभियान में अब तक से प्रदेश में 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,02,006 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब खबर मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कुछ समाचार संक्षेप में। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ के टूटला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नर्मदापुरम जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी में आयोजित पिंक लाइसेंस ड्राइव में करीब 80 छात्राओं ने निशुल्क लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं। इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक

0: मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
1: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों

0: अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। इस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी शिखा दीदी लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों कार्यक्रम की शुरुआत कुछ लाइनों से करूंगी कि छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं, अच्छे संस्कार ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं, जो सीखते हैं हर दिन कुछ नया मुस्कुराकर वही बच्चे कल दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। बच्चों सुबह की ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों की मीठी चहचहाट और रिमझिम बारिश की बूंदे हमें यही सिखाती है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। हर सुबह हमें कुछ अच्छा करने, कुछ नया सीखने और मुस्कुराकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। आप जानते हैं बच्चों, जीवन की बड़ी सफलताएं किसी एक दिन से नहीं मिलती, वो तो छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। समय पर उठना, मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़ों का सम्मान करना सच

बोलना, अपनी किताबों और आसपास की चीज़ों को सहेज कर रखना, प्रकृति से प्यार करना और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना। यही छोटी छोटी आदतें बच्चों आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो आइए बच्चों, आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन कम से कम एक अच्छी आदत को हम ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि आज की अच्छी आदतें ही बच्चों हमारे कल के उज्जवल भविष्य की नींव होती है। तो बच्चों, आज कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, तो आपसे उनका परिचय करवाऊंगी और उन्हें मिलवाऊंगी इस गीत के बाद।

0: больно.
1: तो बच्चों, जैसा कि गाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ नए दोस्तों से, तो आइए सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं, उनका नाम जानते हैं और वो हमें क्या बता रहे हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका नन्ना दोस्त भुवेक पांडे।
1: क्या बात है भुवेक, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। बताइए भुवेक, आज आप क्या बताने वाले हैं बच्चों को?
2: आज मैं आपको एक ऐसे खास दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी धरती को हरा भरा और साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देता है। इस दिन का नाम है विश्व पेपर बैग दिवस, जिसे हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से सामान लाने के लिए जो प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं उनका बाद में क्या होता है? प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होती, तो यह मिट्टी, नदियों, समुद्र और हवा तक को प्रदूषित करती है। कई बार तो गाय, कुत्ते, पक्षी और दूसरे जानवर भी प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी जान तक जा सकती है। दीदी, इसलिए दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है।

यह दिवस लोगों को यह याद दिलाता है कि अगर हम छोटी-छोटी आदतें बदल दें तो धरती को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। इस अभियान को कई देशों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और जागरूक नागरिकों ने बढ़ावा दिया, ताकि लोग प्लास्टिक की जगह कागज और कपड़े को थैलों का उपयोग करने की आदत अपनाएं। अब सवाल यह है कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब भी मम्मी पापा के साथ बाजार जाएं, उन्हें कपड़े या पेपर बैग ले जाने की याद दिलाएं। स्कूल में पुराने अखबारों से सुंदर पेपर बैग बनाना सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। किसी भी कार्यक्रम या जन्मदिन की पार्टी में प्लास्टिक की थैली की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात है कि अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखिए, धरती मुस्कुराएगी जब आदत बदल जाएगी। प्लास्टिक

0: किसी भी कार्यक्रम या जन्मदिन की पार्टी में प्लास्टिक की थैली की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात है कि अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों याद रखिए, धरती मुस्कुराएगी जब आदत बदल जाएगी। प्लास्टिक को कहे ना, पेपर बैग को कहे हाँ। तो आइए इस विश्व पेपर बैग दिवस पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प ले कि जहाँ भी संभव होगा प्लास्टिक की थैलियों के बजाय पेपर बैग या कपड़े के थैलों का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि आज का हमारा छोटा सा कदम आने वाले कल की बड़ी मुस्कान बन सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।
1: अरे वाह भुवेक, बहुत अच्छी जानकारी आप लेकर आए हैं। और निश्चित ही ये जो पेपर बैग बनाने का आपने आइडिया दिया है ना, ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मुझे आपकी ना वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी हमारे घर के बड़े कुछ सामान लेने जाए या कहीं जाए तो हम उन्हें आग्रह करें कि वो कपड़े का या फिर जूट का थैला लेकर जाए। जब आप बच्चे इतनी समझदारी की बात करते हैं ना, तो हम बड़ों को बहुत अच्छा लगता है। भुवेक बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत जानकारी के लिए। चलिए आपको यहाँ पर सुनवाती हूँ एक बहुत अच्छा सा गाना।

0: तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। थैंक यू दीदी।
1: कितना खूबसूरत गीत है माही ये। और बच्चा, सबसे अच्छी बात कि आपने इसे गाया भी बहुत खूबसूरती और मासूमियत से है। अच्छा माही, हम सब जानना चाहते हैं कि ये गीत आपको किसने सिखाया?
0: दीदी, ये गीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया था। हमने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो वहाँ हमने ये गीत गाया था।
1: अच्छा अच्छा माही, आपने इस गीत में गाया कि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो माही, इस गीत से, इन शब्दों से, इन लाइनों से आपने क्या सीखा?
0: दीदी, ये गीत हमें शिक्षा देता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपना अच्छे से काम करते रहना चाहिए।
1: बहुत खूब माही, अब आपने इतना अच्छा और प्रेरणादायक गीत हमें सुनाया, हम आपके लिए क्या करें बच्चा?
0: दीदी, अब क्या आप हमें एक गीत सुनाएंगी?
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं एक बहुत अच्छा सा गाना यहाँ पर, और आपके लिए और आपके गीत के लिए हम सभी मिलकर बजाते हैं ढेर सारी तालियां।
0: ठीक है दीदी।

0: और जो अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं नंदिनी। तो आइए स्वागत करते हैं नंदिनी का। बताइए नंदिनी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं?
1: दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी पाटिल है। मैं शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। दोस्तों, बारिश तो हम सबको पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बारिश एक जैसी नहीं होती। आसमान से गिरने वाली बारिश का रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ बारिश के कुछ मज़ेदार नाम। सबसे पहले ड्रिजल के बारे में बताती हूँ। जब बहुत हल्की हल्की फुहार जैसी बारिश होती है तो उसे ड्रिजल कहते हैं। दोस्तों, जब थोड़ी देर के लिए अचानक तेज़ बारिश हो और फिर रुक जाए तो उसे शार कहते हैं। दोस्तों, डाउनपोर, जब बहुत तेज़ और लगातार बारिश हो उसे डाउनपोर कहते हैं। अब क्लाउड बस्ट के बारे में बताती हूँ। जब बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए, इसे क्लाउड बस्ट या बादल फटना भी कहते हैं। अब बताती हूँ बारिश के सबसे सुंदर मिस्ट के बारे में। यह बारिश नहीं बल्कि हवा में तैरती बहुत महीन पानी की बूंदें होती हैं, जिन्हें हम मिस्ट या हल्का कोहरा कहते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं फॉग के बारे में। जब कोहरा इतना घना हो जाए कि दूर की चीज़ें दिखाई ना दे, उसे फॉग कहते हैं और हम यह अक्सर सुबह सुबह देखते हैं। अब बताती हूँ स्लीट के बारे में। जब बारिश की बूंदों के साथ बर्फ के छोटे छोटे कण भी गिरे तो वह स्लिट होता है। अब स्नोफॉल के बारे में बताती हूँ, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों,

0: बारिश की जगह बर्फ गिरे तो वो होती है बर्फबारी यानी स्नोफॉल। अब सबसे सुंदर बारिश जिसे हम सनशार कहते हैं, जब धूप भी निकली हो और उसी समय बारिश भी हो रही हो तो वो होता है सनशार। और हम रेनबो भी सनशार में ही देखते हैं। इसके अलावा एक होती है मॉनसून रेन, बरसात के मौसम में होने वाली नियमित वर्षा को मॉनसून रेन कहते हैं। तो दोस्तों, अब अगर कोई पूछे कि बारिश हो रही है तो आप सिर्फ इट्स रेनिंग ही नहीं बल्कि यह भी बता सकते हैं कि ड्रिजल, डाउनपोर, क्लाउड बर्स्ट या सनशार हो रही है। बारिश के भी कितने रंग और कितने नाम होते हैं। प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है दोस्तों।
1: अरे वाह नंदिनी, आपने तो इस मौसम के हिसाब से जितनी भी बारिशें होती है उन सबके बारे में इतनी अच्छी जानकारी कलेक्ट की। और वाकई बच्चों, हमेशा इट्स रेनिंग बोलना ठीक नहीं है, तो नंदिनी ने जिन शब्दों को बताया है हमें उन शब्दों को ध्यान रखना है, उन्हें सीखना है और उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में करना है। तो नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
2: थोड़ी बारिश हो गई तो आसमां धुल गया।

0: तो बच्चों आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे नंदिनी, भुविक और माही। तो बच्चों आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। भी स्वीकार कीजिए शिखा दीदी का टाटा, बाय बाय और जय हिंद।
1: जय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया। डॉक्टर यादव ने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में वीरता और समर्पण का परिचय देने वाले सेना के जाबाज जवानों एवं अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण देने वाली पृथ्वी संस्था को सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है। भोपाल में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से एक विशेष साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 सीए स्टूडेंट्स और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:30। ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण 7:21 पर होगा, जिसमें 7:30 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा। रात 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति होगा। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 9:30 आप सुन सकेंगे और 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में कुमार मर्दुर का गायन। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम

लोक संगीत। लोक संगीत में आप सुनेंगे गोपाल कुमार वार्ष्णेय, मदन मोहन ब्रिजवासी और माधुरी शर्मा के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। सुगम संगीत में सुनिए वीरेंद्र मैथिल की गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

वीरेंद्र मैथिल की गाय इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। एक सूचना सुनिए, आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार यानी आज 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सचिव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे आज 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुनिए, 12 जुलाई 2026 यानी आज शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर हैं 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत गुलामी फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गुलजार का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अब सुनिए अलग अलग फिल्म का ये नगमा। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत राहुल देव वर्मन का।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल और इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगला गीत एतवार फिल्म से आशा भोंसले और भूपिंदर की आवाज़, हसन कमाल का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में अब सुनिए आखिर क्यों फिल्म का ये नगमा, इंदिवर का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

इस नगमे के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।

0: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। डॉक्टर यादव ने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में शामिल सेना के जाबाज जवानों एवं अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण देने वाली पृथ्वी संस्था को सम्मानित भी किया। प्रदेश में महाविद्यालयों में ई प्रवेश अभियान में अब तक 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। फीफा विश्व कप 2026 के चौथे क्वार्टर फाइनल में आज अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस के बीच और दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 4 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान।

जय झूलेलाल, सिंधियत जी सरहाण में हाजिर आया तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। कार्यक्रम जी शुरुआत अॼु नारायण श्याम जी हिननि सिटियुनि सां था कयूं। कारनि ककरनि जी छिम छिम, सोनियूं बिजलियुनि जी रिम झिम, पाणी पाणी हर कंहिं हंधि, अचे हवा मां मिठी सुगंध। मथां इंडलठ रंग कढिया, हेठि अछा राबेल टिड़िया, टांडाणा ईअं लाट कढनि, उभ में झिरमिर झुमिर विझनि। रंग अजब सारंग रचे, मोर नचे ॾिण रंग नचे। साथियो, मींहं जी हिन मुंद में तव्हां हिकु मुहिम बाबति ज़रूरु ॿुधो हूंदो। हिकु वणु माउ जे नाले। 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस जे मौक़े ते भारत जे प्रधानमंत्री जी नई दिल्लीअ जे बुद्ध जयंती पार्क में पिपल जो बूटो लॻाए इन मुहिम जी शुरूआति कई हुई। इन मुहिम जो बिटो मक़सदु आहे पर्यावरण जी संभाल ऐं माउ लाइ आदर ऐं शुक्रगुज़ारी। जहिड़ी तरह माउ ॿार जो पालन पोषण कंदी आहे, साॻे तरह वण बि असांखे ऑक्सीजन ऐं खाधे जे रूप में जीवन दान ॾींदा आहिनि। साथियो, ही मुहिम रुगो बूटो लॻाइण ताईं महदूदु कोन्हे। माउ जे नाले ते लॻायल बूटे जी तंहिं वक़्त ताईं संभाल करण जो संकल्प आहे, जेसि ताईं हू हिकु मज़बूत वण न बणिजी वञे। पंहिंजी माउ खे सत्कार ॾियण ऐं पंहिंजी धरती माउ खे बचाइण लाइ असां सभिनी खे बि इन मुहिम सां जुड़ी घटि में घटि हिकु बूटो ज़रूरु लॻाइणु घुरिजे। इन सां गॾु ई कार्यक्रम में वक़्तु थो थिए तव्हांजे मनपसंदि गीत संगीत जो, त अचो गॾिजी मज़ो माणियूं।

दोस्तों जेठ जी उमास माना सेसन जो त्योहार भी अचण वारो आहे। अगे जड़ी घर जा मर्द वापार लाए घर खां बाहर वेंदा हुआ त ज़ाइफाऊं उन्हनि जी सलामती लाए प्रार्थना कंदी हुयूं जीअं हू सुख शांति सां मोटी अचनि। अॼु बि सभिनी सिंधी कुटुंबनि में घर जे मर्दनि पुटनि ऐं पोटनि लाइ मन्नत कई वेंदी आहे ऐं उन्हनि जी पसंदि जी शइ बि ठाहिबी आहे। कुझु घरनि में उमास बदिरां चंड बि पूजबो आहे। सेसन में छोला, मिठी सयूं ऐं पीली दाल वारा चांवर ज़रूरु ठाहिबा आहिनि। अंब ऐं ॼमूं रखबा आहिनि। हथ में सेसा ऐं ड्रब रखी आमड़ो लीमड़ो खाई भरियो पेटड़ो जिन रखायो जेठड़ो जीअं मुंहिंजा पुटड़ा पोटड़ा आमड़ो लीमड़ो इहो चइबो आहे ऐं सेसा दरिया साईं माना साईं झूलेलाल खे अर्पण कबा आहिनि। त दोस्तो आसीसूं पुॼाइण वारे हिन सेसन जे त्योहार जी तव्हां सभिनी खे वाधायूं। अचो त ॿुधूं था साईं झूलेलाल जी शान में ही भॼन।

0: साथियों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अज असां नींढ ॾिनी आहे ध्यातल सुन्यातल कवि वरिष्ठ साहित्यकार ऐं गायक श्री नारी लछवानी जी खे। अचो त ॿुधो नारी लछवानी जी अॼु जी पेशकश।
1: मां अॼु तव्हांखे कुझु रचनाऊं तरन्नुम में पढ़ी थो ॿुधायां, माना तरन्नुम में ॻाए करे, जीअं लय ऐं संगीत उनमें उनजो बि तव्हां आनंद वठी सघो। त इहे पहिरीं रचना आहे, दिलि कंहिंजी धड़काइण लाइ गीत लिखां थो ॻाइण लाइ, दिलि कंहिंजी धड़काइण लाइ। हाणे हिन खे तरन्नुम में कीअं चवंदासीं ॿुधो। गीत लिखां थो ॻाइण लाइ, गीत लिखां थो ॻाइण लाइ, दिलि कंहिंजी धड़काइण लाइ, दिलि कंहिंजी धड़काइण लाइ।

जो भन के जर कायण ले दिल के हैं जी धड़कायण ले।

दिल कहे जी धड़कन ले, गीत बणन का लात पखी पखीअ जे लात वांगुरु मुंहिंजा गीत बणजी पवनि। गीत बणन का लात पखी समझे शल जज़्बात सखी।

ریشل جذبات سکی جیون آ سر چائن لے دل

दिल कहे जी धड़कन ले, दिल कहे जी हिरखाएण ले। एक ब्योब गीत कुछ अड़े नमूने जो है वो मां तरनम में पेश करण तो चाहें। दिल दिल जी धड़कन मुहिंजा गीत बणन, मुहिंजा गीत हर कंहिंजे दिल जी धड़कन बणजी पवनि, इहा ई कामना आहे। दिल दिल जी धड़कन।

दिल दिल जी धड़कन, जिया जिया साहु खड़ा

सिक जा साज वजन जीअं जीअं साहुखणा सिक जा साज वजन अंगण तके राहूं तके माना ॾिसे इंतज़ार में वाझाए पियो

शुभ शुभ पेर पवन अंगण तके राहू शुभ शुभ पेर पवन दिल दिल जी धड़कन मुहे जागी तबणन।

चपरुखसार चुमन। आखिर में एकड़ी कामना आई अब आए।

दिल दिल जी धड़कन मुहे जागी तबणन मुहे जागी तबणन दिल दिल जी धड़कन। हिकिड़ी नंढड़ी रचना आहे, तमामु नंढड़ी। मूं हुन खे ॿुधायो मूंखे चांहि ठाहिण न ईंदी आहे। मूं हुन खे ॿुधायो मूंखे चांहि ठाहिण न ईंदी आहे। अड़े कमाल आहे, चांहि ठाहिण में छा आहे? मां चुप हुन ॾे निहारणु लॻुसि। वरी चयईं, चङो भला, तेसीं गैस ॿारे वठि। मूं चयोमांसि, गैस ॿारण लाइ मूं कॾहिं माचिस या लाइटर हथ में न खंयो आहे। कावड़जी वई। वरी चयईं, कमाल आहे, कहिड़ो माण्हू आहीं, इन में छा आहे? मां चुपचाप हुन ॾे वरी निहारण लॻुसि। हुन कावड़ जी चयो त चांहि काढ़णु कोन थी अचई, गैस ॿारणु कोन थो अचई, त बाक़ी छा ईंदो अथई? बिना माचिस, बिना लाइटर, कंहिंखे बि किथे बि कॾहिं बि बाहि लॻाए सघंदो आहियां।

0: हुए शू के मुडे निहारण लगी।
1: मेहरबानी नारी लच्छवानी जी, हिन तमाम सोहणी पेशकश लाए सचपच तवांजा गीत दिल दिल के धड़काइन था। कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे जरूरी ध्यान देण जो। त अद जी पहिरी जानकारी आहे विश्व युवा कौशल दिवस बाबत। संयुक्त राष्ट्र महासभा पारा दिसंबर 2014 में 15 जुलाई के विश्व युवा कौशल दिवस करे मल्हाइण जी पधराई कई वई, जंहिंजो मकसद हो नौजवानन खे रोजगार ऐं वापार लाइ ज़रूरी हुनर प्रदान करण ऐं इन जे महत्व बाबति सुजागी आणण। बदलजंदड़ दुनिया में रुगो पारंपरिक तालीम काफ़ी न आहे, तकनीकी विकास, डिजिटल क्रांति ऐं बदलजंदड़ वैश्विक बाज़ार जे करे व्यवहारिक हुनर जी घुर्ज तेज़ीअ सां वधी आहे। नौजवाननि खे हुनरमंद बणाइण सां बेरोज़गारीअ खे घटि करणु सवलो थो थिए ऐं देश जी आर्थिक तरक़ीअ जो बि दर खुले थो। हुनर नौजवाननि में आत्मविश्वास पैदा कंदो आहे ऐं उन्हनि खे पाण भरोसो ठाहींदो आहे। भारत जहिड़े देश में जिते नौजवाननि जी विशाल आबादी आहे, ही ॾींहुं तमामु महत्व वारो आहे। हिते स्किल इंडिया ऐं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जे तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास जहिड़ियूं योजनाऊं पयूं थियूं हलनि। नौजवाननि खे उद्योगनि सां जुड़ियल ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी आहे, जंहिं सां हू बहितर रोज़ी रोटी कमाए सघनि। विश्व युवा कौशल दिवस असांखे यादि ॾियारे थो त जवाननि जे हुनर में निवेश करणु असल में असांजे महफ़ूज़ ऐं खुशहाल आईंदे में निवेश करणु आहे। हाणे अॼु जी ॿी ज़रूरी ॼाण आहे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बाबति, जेको साल 1998 खां वठी 17 जुलाई जे ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾींहुं अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते न्याय प्रणालीअ खे मज़बूत करणु ऐं पीड़ितनि जे हक़नि जी रक्षा करण लाइ समर्पित आहे। सॼी दुनिया में जेके गंभीर अपराध थियनि था, जीअं नरसंहार, जंग सां लाॻापियल अपराध, इंसानियत जे ख़िलाफ़ अपराध, इन्हनि जी रोकथाम ऐं दोषियुनि खे सज़ा ॾियारण ही हीउ ॾींहुं मल्हाइण जो मक़सदु आहे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस रुगो हिकु तारीख़ न आहे, बल्कि हिकु निष्पक्ष ऐं पुरअमन दुनिया ठाहिण जो सामूहिक संकल्प आहे, जिते हर नागरिक खे कंहिं बि भेदभाव बिना न्याय मिली सघे। हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त मज़ो था माणियूं हिन सुहिणे गीत जो।

समाप्त थो थे। उम्मीद आहे त तव्हां खे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधिया जी सरहान। यह आकाश डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 11वीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिक्र नहीं करते किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये, विनय जैन।
1: हाँ साहब, जो बहुत सारी घटनाएं हमारे और आपके बीच में घटती हैं और ऐसी घटनाओं को ही सूत्र पर पिरोकर कलाकार आप तक पहुंचा दिया करते हैं, हंसने हंसाने की बात बन जाती है। ऐसे कैसे आइटम से शुरुआत कर रहा हूँ, जो आइटम नगर पालिका विभाग के लोग, चार छः लोगों का अमला अचानक मोहल्ले में आया तो मोहल्ले के लोग उनको भी देखने लगे कि साहब ये कौन है, कहाँ से आए, तो पता लगा साहब ये नगर निगम विभाग से आए हैं और ये आवारा कुत्तों को पकड़ने का इनका जो मुहिम चल रहा है उसमें सारे आवारा कुत्ते पकड़ के ये ले जाए जा रहे हैं। तो लोगों के यहाँ और दरवाज़ों पर भी दस्तक दी गई कि साहब यहाँ कोई आवारा कुत्ता है। एक दरवाजे में पहुँचे अधिकारी महोदय, बोले हाँ साहब यहाँ कोई घर में है भाई, अंदर से आवाज़ आई।
2: हाँ जी क्या है?
1: हाँ ये कोई घर में है?
2: हाँ जी हम है ना, बोलिए ना क्या बात है।
1: ये आपके यहाँ कोई आवारा कुत्ता तो नहीं है जो आपको परेशान करता हो, काटता वगैरह हो, या आपको कोई कंप्लेंट हो?
2: अब भाई साहब क्या बताएं, कुत्ता तो है मगर आवारा नहीं है, और जो आवारा है वो कुत्ता नहीं है।
1: एक साहब पहुँचे रेस्टोरेंट।

में, और ग्राहक जैसे ही पहुंचता है तो साहब मेनू ग्राहक के सामने रख दिया जाता है। वेटर सिर झुकाकर अभिवादन में खड़ा हो जाता है। जैसे ही पहला मेनू पढ़ते हुए निगाह पड़ती है ग्राहक की वेटर पर, तो साहब फौरन वेटर से देखते हैं और पूछते हैं, वेटर को ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो तमाम जगह बार बार खुजला जा रहा है, कभी सिर में खुजला रहा है, कभी पेट में खुजला रहा है, कभी हाथ में खुजला रहा है। तो मीनू पढ़ते हुए अचानक ध्यान जाता है ग्राहक का, तो वेटर से बोलता है, क्यों भाई खुजली है क्या? नहीं साहब, मीनू में देख लो, होगी तो मिल जाएगी। एक साहब को बड़े हाई पावर का चश्मा लगा करता था, और जैसे ही किसी अचानक कार्यवश उनको जल्दी में जाना पड़ा, जिससे वो चश्मा गिर जाता है, और गिरने के बाद वो चश्मा टूट जाता है। जैसे ही चश्मा टूटता है तो श्रीमती जी को लेके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब तो उपस्थित रहते नहीं, कंपाउंडर रहता है, तो वो उन्हीं को डॉक्टर समझ बैठते हैं, और कंपाउंडर भी अपने आप को डॉक्टर समझते हुए उनसे डील कर लेता है। बोले, डॉक्टर साहब जी चश्मा बनवाना है। हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा, चश्मे में क्या है, वो तो हम बनाते ही आए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चश्मा एक काम कीजिए, इसमें हमको जो पहले वाला था गिर गया था, इसका ये फूटा हुआ कांच लेके आए। फूटे हुए कांच से कुछ नहीं होगा भैया, ये कांच वापस रखो, हम बिल्कुल नया कांच लगाएंगे। आप एक ग्लास, जिसको दिखाया गया साहब को, और ये ग्लास दिखा के बोला गया, साहब इसमें आप देखिए, सामने पढ़िए, कुछ बातें पढ़वाई गई। बोले, साहब ये क्या लिखा है? तो बोले, साहब ये तो कहानी लिखा है। बोले, हाँ आप पढ़ते ठीक है, आपको ये ग्लास फिट बैठेगा, ये ग्लास लगा देते हैं। बोले, नहीं साहब ये ग्लास बहुत ख़राब है, ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा हमको। बोले, नहीं, फिर से लगाओ, फिर से देखते हैं। बोले, साहब नहीं, इसमें तो हमको ये दिख रहा है दुकान लिखा है। बोले, साहब ये आपको दुकान लिखा ही दिखा रहे हैं। बोले, नहीं, ये गड़बड़ है। बोले, जैसे तीसरी बार उनको दिखाया गया। बोले, साहब एक काम करो कि इस अब देखो, क्लियर दिखता है, इसमें साफ दिखता है। बोले, साहब नहीं, इसमें तो लिखा है कि वर्षा। बोले, साहब इसमें वर्षा ही लिखा है, आपको ठीक दिखता है। बोले, नहीं साहब एक काम करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, आप दूसरा ग्लास हमें दो। तो उसको एक ऐसा ग्लास दिया जाता है जो ग्लास छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है। वो ग्लास जैसे ही छोटी चीज़ बड़ी दिखने वाला उनको पास होता है, बच्चे आपने देखा होगा कि वो मैग्नीफाइन शायद कहलाता है ग्लास, उसको हम उससे देखा करते हैं, जैसे ही वो ग्लास उनको दिखाया जाता है वो खुश हो जाते हैं कि साहब ये हमें बहुत अच्छा लगा, इसको आप फिट कर दीजिए। उस ग्लास को फिट कर दिया जाता है, उन्हें हर चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। और जैसे ही मार्केट पहुँचते हैं, जैसे ही अंगूर की दुकान में पहुँचते हैं, उसके पास जाके क्या बोलते हैं, भाई साहब एक फुग्गा देना फुग्गा। अंगूर वाला कुछ देर उन्हें समझाने का प्रयास करता है, उसके बाद एक दो अंगूर उठाकर उन्हें देता है। दोनों अंगूर को घुमाते हुए अपने हाथ में लेकर अपने घर में पहुंचते हैं, और पत्नी से अपने बच्चों से जाके वो अंगूर को दे देते हैं, और बच्चे वो अंगूर लेके अपने मुंह में खा लेते हैं। तो अपने श्रीमती से बोलते हैं, देखा देखा अपने राजू का मुंह दरवाजा जैसा हो गया। श्रीमती जी समझ जाती हैं कि मामला गंभीर है, डॉक्टर साहब को लेके फिर उनके पास पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब के पास, बोले साहब मामला बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, अंगूर को गुब्बारा समझ रहे हैं, थोड़ा सा मामला प्लीज़ डॉक्टर साहब समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं, चिंता मत करो। उस समय डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं, बोलते हैं, अरे ये तो कंपाउंडर था, ये तो मेरा असिस्टेंट है, तुमने इससे चेकअप करवाया? मैं दिखाता हूँ आपको, ग्लास दिखाया जाता है। बोले साहब बिल्कुल ख़राब है, अच्छा नहीं दिखता है। अरे भाई, बोले दिखने के ऊपर थोड़ी, तुमको शूट करना चाहिए। बोले नहीं साहब, दूसरा लिखाओ। तो बोले कंपाउंडर, इनको वो वाला कांच निकालो। ऊपर से एक बहुत बड़ा डब्बा झाड़ पहुँच के जूते के डिब्बे के समान उसको निकाला जाता है, उसमें एक ऐसा ग्लास रहता है जिसको लगा दो तो एक चीज़ दो दिखाई देने लगती है। जैसे ही साहब को दिखाते हैं आप उस ग्लास को लगाकर बड़े खुश होते हैं। बोले साहब ये बढ़िया है। बोले साहब यही लगा दो, इनको दफा करो, फीस अंदर करो। उसके बाद साहब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दरवाजा खटखटाया गया। श्रीमती जी जैसे ही निकली, पहला सवाल श्रीमती जी से करते हैं, अरे तुम्हारी बहन कब आई? अचानक बच्चे को दौड़ता हुआ आते देखते हैं, अपने बच्चे को देखकर, फौरन बच्चे को देखकर अपनी श्रीमती से बोलते हैं, बड़ी तुम्हारी बहन का लड़का बिल्कुल हमारे लड़के जैसा है। मामला गंभीर है, श्रीमती समझ जाती हैं। बोले इनको कोई बड़े डॉक्टर को दिखाओ भैया, बहुत तबीयत ख़राब है इनकी। डीन साहब के पास ले जाता है, बिल्कुल हॉस्पिटल के सबसे चीफ ऑफिसर डीन साहब चेयर में अपनी बैठे रहते हैं चैम्बर के बाहर। तीन चार लोगों के बाद इनका नंबर था। जैसे ही इनका नंबर आया, ये प्रवेश करते हैं, डीन साहब कुछ लिखते रहते हैं नीचे, और जैसे ही ये अंदर आते हैं, ये अपना सवाल करते हैं, बड़ी डॉक्टर साहब कितना गड़बड़ हो गया, पहले ऐसा हमको चश्मा दिया कि

देखो हमको ऐसा बिल्कुल छोटा छोटा बड़ा बड़ा दिखता था, अरे अरे अंगूर का हमको गुब्बारा दिखने लगा नहीं, अरे उसके बाद देखो साहब ये हमको ऐसा ग्लास लगा है कि उसको एक चीज़ का दो दो दिखता, हमारी बहन कब आया, हमारी बहन का लड़का कब आया हमको नहीं मालूम। अभी डॉक्टर साहब ऐसा हमको काम करो कि हमको बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए। डॉक्टर साहब फौरन जवाब देते हैं ऊपर सिर उठाकर, सबका काम हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा, एक बार में एक आदमी आना, चार चार क्यों घुसे जा रहे हो। कई बार साहब हमने सोचा कि विदेश यात्रा करें और विदेश यात्रा का लुत्फ उठाएं। हमने हमेशा कोशिश की, जब जब हमने ऐसा महसूस किया कि हम विदेश यात्रा पर जाएं तो लगातार हम सोचते रहे, और विश्व कप भी निकल गया और गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हो गया, और उसके बाद कई मेले ठेले ऐसे अवसर आए जब हमने सोचा कि हम जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाए हैं। और एक बार हमने सोचा जाएं, तो जब भी ऐसा सोचा तो कभी शहर के बाहर या देश के बाहर जाने की विदेश यात्रा के लिए बारे में, तो ऐसा समझ में आया कि प्रधानमंत्री

0: सोचते रहे और विश्व कप भी निकल गया और गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हो गया और उसके बाद कई मेले ठेले ऐसे अवसर आए जब हमने सोचा कि हम जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाए हैं। और एक बार हमने सोचा जाएं, तो जब भी ऐसा सोचा तो कभी शहर के बाहर या देश के बाहर जाने की विदेश यात्रा के लिए बारे में, तो ऐसा समझ में आया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बाहर हैं, अब देश में एकाध कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को होना जरूरी है, इसलिए हम ऐसी पोजीशन में जा नहीं पाए। और आगे फिर हमने एक बार ऐसा प्रयास आया कि फुटबॉल के दौरान हमको विदेश यात्रा का मौका लग गया और हम दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए, दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए। आपको बता दें कि हम जबलपुर आकाशवाणी से बोल रहे हैं, दक्षिण कोरिया मतलब विदेश में है, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि भेड़ाघाट के आसपास कहीं है। तो दक्षिण कोरिया हम जैसे ही पहुंचे और वहां पर पहुंचने के लिए हमें बाहर जैसे ही हम वहां पता लगा, घर से पहले लिस्ट बना के ले गए थे कि जिस सामान लेना है वो सामान लेना, श्रीमती ने भी लिस्ट, अपने सामान की भी लिस्ट, जैसे ही वहाँ पता किया तो बड़ा महंगा, 5,000 का जूता, अरे बाप रे 5,000 का जूता। हमने कहा बहुत, शाम को वहाँ डिनर पे लोगों से बातचीत हुई तो वहाँ लोगों ने बताया, बोले साहब ये बहुत तरक्की वाला देश है, अभी आपके हिंदुस्तान को तो 50 साल लगेंगे, हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे यहाँ तो 5,000 का जूता मिलता है, ये समझ लो। तो हमने कहा ठीक है साहब, ये बात सही कि 5,000 का जूता मिलता है, मगर आपके देश की जनसंख्या कितनी है? बोले 17 करोड़। बोले बस 17 करोड़ ना, जिस दिन 100 करोड़ का लेना उसके बाद 100 रुपये का जूता बेच के दिखाना। फिर विदेशी ने चालू किया, बोले साहब हमारे देश में तो एक क्लर्क की तनख्वाह भी 25,000 रुपये हुआ करती है, उसके बाद भी इतनी सुविधाएं हमारे देश में हैं कि बिल्कुल चिकनी साफ़ सुथरी सड़कें, प्रकाश व्यवस्था, बिल्कुल साफ साफ मामला है। तो हमने कहा साहब हम बिल्कुल ठीक है, हमें मालूम है कि आपके देश में सड़कों पर थूकने का भी 500 रुपये जुर्माना लग जाता है, अब उस हिसाब से अगर हमारे इंडिया की आप तुलना करो तो लोग 1.5 लाख का तो दिन भर में थूक देते हैं। और सड़कों के किनारे आजू बाजू और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसका हिसाब लगाओगे तो इंडिया तो बहुत आगे है अभी हम। बस एक बात हम मानेंगे कि आपके देश ने तरक्की की है, उसके जो मूल कारण है वो ये है कि वो हमारे देश के लिए संदेश भी है और जो आपने सीखा भी हिंदुस्तान से कि वो आप एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। जिस दिन भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग फिर से हाथ पकड़ कर एक साथ चलना सीख जाएंगे, उस दिन देश की तरक्की होगी। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश ऊंचाइयों पर होगा, बुलंदी पर होगा।
1: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
2: हुआ क्या कि हमारे एक बहुत पुराने मित्र, जिन्हें पता चला कि हम कुछ मिमिक्रीज करने लगे हैं, कॉमेडीज करने लगे हैं, बहुत दिनों बाद हमसे मिलने आए और आते ही बोले, अरे मकरंद भाई क्या बात है साहब, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात। हमने कहा हाँ भाई आइए आइए, क्या बात है, आपसे वाकई में बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अरे लेकिन यार मानना पड़ेगा साहब, आप आए दिन मैंने सुना आप आकाशवाणी में भी कॉमेडी करने लगे हैं, चुटकुले सुनाने लगे हैं और मिमिक्री तो साहब आप कमाल की करते हैं साहब, बहुत ही बढ़िया साहब। नहीं वो तो आपकी साहब दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है साहब, जैसा आप। नहीं नहीं लेकिन हमने देखा साहब आप मतलब कलाकारों की आवाज़ भी निकाल लेते साहब, और सबसे बड़ी बात साहब आप अपने पूरे देश की भाषाएं बोल लेते साहब, मतलब आप। हाँ जी बोल तो लेता हूँ साहब, भाषाएं सभी तरह की बोलता हूँ साहब, मतलब आप साहब सिंधी बोल लेते साहब, अरे बाबा यार बोल लेता है यार, सिंधी भी बोल लेता है ना यार। लेकिन भाई अब जैसे मराठी भी बोल लेते, हो बोलते ना भाई मराठी बोलते हैं, हम मराठी बन बोलते हैं। लेकिन अब पंजाबी भी बोल लेते यार, ओ जी यार पंजाबी बोलते तुझे जानते नहीं यार, पंजाबी भी बोल लेते जे, मद्रासी भी बोल लेते, अय्या मद्रासी भी बोलता जे मद्रासी। लेकिन यार एक बात बता यार मकरंद भाई, तुम कोई इंटरनेशनल भाषा जानते हो कि नहीं, कोई बाहर की भाषा? अंग्रेजी भाषा आती ना यार। नहीं वो तो सबको आती है, अंग्रेजी भाषा तो यार सबको आती नहीं, और कोई भाषा? और कोई बहुत सी भाषा नहीं, कोई तो भाषा आती होगी, आती है भाई, चीनी बोल लेते। अरे चीनी बोल लेते बहुत सही यार, मतलब चीनी बोल लेते यार बहुत सही यार। अच्छा बोल के दिखाओ। नहीं हम बोल के तो दिखा लेकिन तुम्हें समझ में आएगी? नहीं यार अब यार समझ में तो नहीं आएगी यार, पर अब कुछ बोल के दिखाओ। अच्छा बताओ क्या बोलें? अब ऐसा करो, जैसे मान लो तुम इधर खड़े हो और उधर कोई आदमी है और तुम्हें उस आदमी को बुलाना है, कैसे बुलाओगे? हमने कहा ठीक अभी बताते हैं। देखो हम इधर खड़े हैं, वो आदमी उधर खड़ा है, हमें उसको बुलाना है, कहना है भाई इधर आओ। हिंदी में कहेंगे इधर आओ, चीनी में क्या कहेंगे? पिंग पोंग। अरे गजब यार, गजब कर दिया यार, मतलब तुमने चीनी बोल लिया, बहुत अच्छी यार बहुत सही। अच्छा एक और बताओ। अब क्या बताएं यार? नहीं मान लो उसी आदमी को वापस भेजना हो तो क्या बोलोगे चीनी में?

0: क्यों भेजेंगे, हम उधर चले जाएंगे, फिर बोलेंगे पिंग पोंग।
1: राजेश मिश्रा, लगता है आपके घर के पिछवाड़े छुपकर मियां बीबी की बातें खूब सुनते हैं, इसलिए ये प्राइवेट बातें सुनाते ज्यादा हैं। देखे जरा क्या सुना रहे हैं।
2: लीजिए, अब हास्य के इस क्रम में आपको ले चल रहा हूं ऐसे व्यक्तियों की ओर जिस की लाइन में मैं खुद लग चुका हूं, यानी कि जब बाल झड़ने लगते हैं और बाल कम होने लगते हैं तो व्यक्ति के चेहरे में भी अंतर आ जाता है, उसके विचारों में भी अंतर आ जाता है और लोगों को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। कुछ लोग बाल झड़ने के बाद, चांद झड़ने के बाद उसको छुपाने के प्रयास में रहते हैं कि उनको लोग ये ना कह सकें कि भैया बाल नहीं है, इनकी चांद निकल आई है, इनकी ये गंजे हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए लोग अपने अपने प्रयोग करने लगते हैं आजकल। पहले तो महिलाएं शुरू से ही अपने लिए चिंतित होती थी, किंतु पुरुषों को भी आपने देखा होगा कि कई बार अपन संडे को किसी के घर चले जाओ तो अपन को लगता, अरे भैया क्या हो गया, गोबर में गिर गए क्या? गोबर में गिर गए? नहीं जी, सिर में क्या लगा? नहीं, मेहंदी लगाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरे लिपटे हुए चिपके हुए अपने खड़े, क्या यार आजकल यार अचानक बाल गिरने लगे यार भैया। तो वो मिसेस क्या है कि मेहंदी लगाती है, तो बोली कि आप भी संडे के संडे मेहंदी लगा लिया करो। अच्छा, तो उससे बाल नहीं गिरते क्या? नहीं, कुछ कम तो हुए, आपके पास कोई तरीका क्या? हाँ है। क्या करना पड़ेगा? अंदर से गठान लगा दूँ। बाल झड़ने की ये समस्या बड़ी कठिन हो गई, लोग बड़े अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करने लगते हैं जब से, हालांकि कुछ हीरो जिनकी चांद है और बढ़िया टाप चल रहे हैं, जब से कुछ लोग कंगी करते वक्त अपने आप को उस हीरो से तुलना करने लगे तो कुछ लोगों के चेहरे में चमक दिख जाती है कि भैया उसके भी है चांद है, अपनी भी चांद है, कोई बात नहीं। किंतु बाकी लोग आपने देखा होगा कि पूरे सामने से साफ, पीछे थोड़े से बाल और उनको बड़ी स्टाइल से ऐसा ला कर पीछे से सामने तक चिपका देते हैं, ऐसा चिपका देते हैं, और अगर उसमें डाई काले कर दिया हो तो ऐसा लगता है जैसे डामलीकरण किया गया, जैसे कहीं रोड पर अलग से थेगरा सा नहीं लगा देते हैं, थोड़ा सा गड्ढे को भरा गया डामलीकरण, वह ऐसा करके चिपका देते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मांग अपने आप बीच से निकलने लगती है। अब आप उनसे पूछो, क्यों भैया क्या हो गया? अरे यार अजीब बीमारी हो गई। क्या अजीब बीमारी? अरे यार ये मांग जो थी जी खिसक खिसक के बीच में आ गई। कई लोगों की चांद निकलती है और वो दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यहां जो साफ हुआ यहां दाढ़ी बढ़ गई। लोगों को भैया साफ तो पैसा कमा रहे हो यार, काय है बिल्कुल गजब यार, काय का पैसा भैया? अरे तो अब जी देखो चांद, अरे का चांद, वो दाढ़ी कहाँ बढ़ा ली यार आपने? दाढ़ी कहाँ बढ़ा ली, जो बीमारी अजीब सी हो गई। कहाँ बीमारी हो गई? अरे जी बाल पूरे तरह से निकल आए। एक चांद वाले भाई साहब से हमने पूछा कि भाई साहब आपकी चांद है, आपको क्या परेशानी होती? बोले कुछ नहीं भैया, जब मैं सुबह मौत होता हूँ तो ये समझ में नहीं आता चेहरा कहाँ तक है। चांद निकलने से चेहरे की क्रीम और इसके खर्चे अलग बढ़ जाते, ऊपर तक की व्यवस्थाएं अलग बढ़ जाती है। महिलाओं के तो वैसे बहुत कम चांद निकलती है, अगर निकलती हो तो आप कल्पना करो कि कितना खराब लगेगा। और अगर चांद निकलने लगे तो ये जो हिंदुस्तान की परंपरा घूंघट वाली जो परंपरा महिलाएं भूल गई हैं वो फिर से अपने आप चालू हो जाएगी।
3: बहुत बढ़िया, बहुत।
2: जब लोग कहेंगे कि देखो रामलाल की बहू कितनी होशियार है, बिल्कुल हमेशा घूंघट डाली रहती, फालतू बात नहीं करो कि बाल झड़ गए चांद निकल आई ये सब घूंघट डाल। नकली बाल लगाने की भी अब व्यवस्थाएं खूब बढ़ती जा रही हैं, आए दिन आप लोग देखते हैं कि नकली बाल लगा के। अब कई बार क्या होता है कि अपन मान लो हमेशा किसी को बिग में देखते हैं, बिग लगाए हुए देखते हैं, और उसके घर पहुंच जाए और वो मान लो बिग नहीं लगाए हुए, तो अपन अब उसी से पूछ रहे का भी हाँ भैया कहाँ गए? आओ ना राजेश भाई आओ ना। नहीं नहीं भैया कहाँ? बड़े भैया। अरे आओ यार, पहचान नहीं रहे? नहीं पहचान गए ना आप तो, मतलब श्यामू भैया के पिताजी कहलाए ना।

0: अरे नहीं यार, हम ही। अरे आप बाल, अरे बेग तारा। अरे यार भैया, आज तक समझे भी नहीं आया। अब ऐसे लोगों की अगर शादी हो जाए, तो जब लड़की देखने गए तो बढ़िया बेग लगा के गए, बेग लगा के गए, बड़े बहुत बढ़िया भैया यार, गजब के बाल हैं। अरे आज के समय में ऐसे बाल, यानी देखो लड़का जरूर अच्छा खाते पीते उसका है, जब ही तो उसके इतने बाल हैं। शादी हुई, पगड़ी लगाई, पगड़ी में भी वो अपना संभाले, लड़का कमल दब अपने कल में दबाएगी जिसमें बेग ना खिसक जाए, पगड़ी उतरती जाती रही। दूसरी विदा के टाइम पे, अब ये बात कैसे पता चली कि जब एक जिसके बाल नहीं थे उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब आपके बाल नहीं थे, आपकी शादी कैसे हुई? बोले नकली बिग बाल लगा के गया, लड़की देखने गया। अच्छा फिर क्या हुआ? लड़की पसंद आ गई। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद कह ले मैं दूसरी विदा कराने गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, जबलपुर गया भैया दूसरी विदा में, तो अब लोग बोले कि जिया जी ग्वारी घाट चलो नर्मदा किनारे नहाने के लिए। तो मैंने कहा भैया मैं नर्मदा जी चलूंगा जरूर, किंतु नहाऊंगा नहीं। कनेक्टिव आंसर क्यों बोला आपने? नहाते तो यार क्या है कि अब बाल उतारना पड़ते, तो समझ में आ जाते कि जीजा टकला है। चक्कर में अपन ने कहा कि मैं नहाऊंगा नहीं, सिर्फ दूर से प्रणाम करूं। साले लोग कहने चलो जीजा नहाना नहीं, नर्मदे हर करके चले आना। मैं गया भैया, अब जब मैं गया तो बढ़िया साले लोग ने बोला अच्छा जिया जी नहाना नहीं किंतु तेल लगा लो, मालिश बढ़िया, नर्मदा किनारे माँ के दर्शन, और कहने जबरन कहने यार डुबकी लगवा दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब वो जीजा थोड़ी देर बाद लगे चिल्लाने जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो। कहने हाँ अब हमारे बाल बहे जाए, अभी लड़का हमारे साले पीछे पीछे तैरत जाए, जीजा बहगो जीजा बहगो। फिर कहा हमने कही हम तुम्हारे जीजा, तो कहने हमें इतनो मारो यार, कहने टकला जीजा बंदा। फिर अरे फिर क्या, अब 20 दिन हो गया भाई साहब, अभी तक परेशान है, मेरी बीवी भी मानने तैयार नहीं है। वो भी कहती नहीं, वो उनके तो बहुत अच्छे बाल थे, आप तो टकला हो। तो कहने भाई साहब ऐसा है, बिग लगाने से फायदा भी है तो नुकसान भी है। हमने हाँ भाई साहब ये तो आपने अच्छा बता दिए, मेरे भी बाल अब कम हो रहे हैं, तो मैं कभी बिग नहीं लगाऊं? कहने बिल्कुल मत लगाओ, जो ईश्वर ने जैसा दिया वैसे ही रहो, उसी रूप को प्राप्त करते रहो, ज्यादा लफड़े में मत पड़ो। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बता दिया। तो ये बात हुई जिनके बाल नहीं है या जिनके बाल झड़ने वाले हैं, उनके लिए मैंने आपके बीच में हास्य व्यंग प्रस्तुत किया। लीजिए, हंसना मना है इस आकाशवाणी के कार्यक्रम में। आपको एक और व्यंग की ओर ले चल रहा हूँ कि वही चीज़ आप लोग सुनते हैं, वही चीज़ हम सुनते हैं, वही चीज़ आप देखते हैं, वही चीज़ एक व्यंग्यकार हास्य कलाकार देखता है। तो उसके नज़रिए को हम प्रस्तुत करते हैं, और फिर बात होती है कि हंसना मना है। तो कैसे अनाउंसमेंट हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 3 पर, रेलवे स्टेशन पर, वो आप कैसा सुनाई आपको दे रहा है ये मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो अनाउंसमेंट सुनाई देता है वो बड़ा साफ सुनाई देता है, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जो अनाउंसमेंट होता है वो इतनी दूरी हो जाती है कि हमको कुछ अजीब सुनाई देता है। 3 नंबर प्लेटफार्म पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है। 4थे प्लेटफार्म नंबर पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है। 5वें का अनाउंसमेंट हमें कुछ समझ में नहीं आता। प्लेटफार्म नंबर 1,
1: अटेंशन प्लीज, बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाने वाली मेलगाड़ी अपने निर्धारित समय पे, जिन यात्रियों को बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाना है अपना टिकट प्राप्त कर ले।
0: बड़ा साफ सुनाई देता है। अब याद करिए प्लेटफार्म नंबर 2,
2: अटेंशन प्लीज, बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाने वाली मेलगाड़ी अपने निर्धारित समय पे, जिन यात्रियों को बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाना है अपना टिकट प्राप्त कर ले।
0: 3 नंबर में आवाज और अजीब हो जाती है। चौथे का अनाउंसमेंट और अजीब होती। पांचवें का अनाउंसमेंट कुछ समझ में नहीं आता। जिसको जहां जाना वहां चला जाए। अनाउंसमेंट खत्म होता है, लाइन लगना शुरू हो जाती। लाइन कहीं की भी हो, चाहे टाकीज की हो, चाहे बस स्टैंड की हो, चाहे रेलवे लाइन हो, लाइन एक सी होती। इसमें अजीब अजीब आवाजें आपको सुनाई

0: देने मिलती है। प्लेटफार्म में आवाज आई, चाय चाय वाला, आलू बंडा, समोसा वाला। ए आलू बंडा, इधर आओ, इधर खिलाओ खिलाओ। कितना कड़वा है यार। अरे बाबू साहब बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसी बात कर रहे हैं, कड़वा कड़वा। अरे भैया कड़वा लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। अरे बाबू साहब बिल्कुल, आप कैसा करते हैं, आप 2 दिन पहले निकले थे, आपको खिलाया था ना। हाँ खिलाया था, उस दिन तो बड़ा अच्छा था, उसी दिन वाला तो आज है ये। लाइन लग जाती है, लाइन लगने, अरे भैया, अरे बाप रे, धक्का नहीं देना, कैसा कर रहे, ओ भाई साहब, ए धक्का मत देना, ओ भैया। एक भाई साहब खड़े थे, उनके दांत काफी बड़े थे, कहले भैया धक्का मत दो, सामने वाले की पीठ में दांत घुस जाएंगे। एक भाई साहब काफी मोटे थे, उन्होंने कहा, ओ भैया, ओ मोटे, धक्का मत दो, ओ भैया, ए मोटे जी, धक्का मत दो जी, मैं धक्का कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सांस ले रहा हूँ।
1: अरे यार, अरे बाप रे, कैसा कर रहे हैं यार, अरे भैया।
0: ये लाइन खत्म होती है, रेल ट्रेन आकर रुकती है, और हम और आप दौड़ पड़ते हैं अपनी सीट के लिए। है भाई साहब, ये पेपर मेरा रखा था, मैंने रखा था, देखिए गलत बात मत करिए आप। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये पहले से, मैं इतने दिन से इसी सीट में बैठ के आता हूँ, मैं डेली अप डाउन करता हूँ, आप बात कैसी कर रहे हैं। वो ठीक है भैया, ये मैं यहाँ बैठा था। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं डिब्बे के अंदर। एकदम से अंधेरा हुआ, अंधेरे के साथ साथ अब आप डिब्बे के अंदर जब बैठे रहते हैं तो कई बार ये होता है कि लोग भोजन करते रहते हैं और आपकी नज़र उनके तरफ पड़ती रहती है, कि भोजन कर रहा है आदमी और आपको नहीं पूछ रहा है, तो आप उसी के तरफ देखे रहते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कोई आपको पूछ लेता है कि भाई साहब एक आध पूड़ी चलेगी, तो आप मना भी कर देती हो। क्यों मना कर देते हैं, कि यार ऐसा लगता है इसमें बेहोशी वाली पूड़ी ना हो। तो अब पूछे तो प्रॉब्लम है, नहीं पूछे तो प्रॉब्लम है। अब उसके बाद सफर धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी का चलता है। अब टीटी को बोला एक आदमी ने कि भाई साहब ऐसा करना, मेरे को आप कटनी में उतार देना, और मैं बहुत तेज सोता हूँ, और जब आप मुझे नींद से उतारेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको गाली बकने लगूँ, चिल्लाने लगूँ, खींचने लगूँ, क्योंकि मैं बचपन से, मुझे कोई ने भी नींद से उठाया और मुझे इतनी जोर से चंडाली चढ़ती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर डालूँ। तो कब, जब भी अगर स्टेशन आए तो आप मुझे उतारना, अगर मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँ तो आप बुरा नहीं मानना, बस मेरा इतना निवेदन है। कहें ठीक है, मैं आपको कटनी में उतार दूंगा, आप आराम से सोइए, कोई बात नहीं। अगला आदमी कटनी स्टेशन के आगे जाकर सतना में लगा चिल्लाने टीटी को, आपको मैंने बोला था कि आप कटनी में मेरे को उतार देना, मैं सोता रह गया, आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, आप लोग समझते क्या हो। और टीटी जो खड़ा था, टिकट कलेक्टर बेचारा, चुपचाप खड़ा सुन रहा था। सुनते सुनते इतनी गालियां उसने सुन ली, और जब वो आदमी दूसरी ट्रेन पकड़ के कटनी की ओर चला गया, तो मैंने टीसी से पूछा कि भैया उस आदमी ने यार इतनी गाली आपको बकी, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आपने ये भी नहीं बोला कि साहब मैं धोखे से नहीं उठा पाया हूँ, मैं भूल गया था, कटनी की जगह आप सतना आ गए, कोई चिंता की बात नहीं, आप चुपचाप सोचते रहे, क्या बात थी। कहने भैया मैं ये सोच रहा था कि धोखे से जिसको जबरदस्ती कटनी में उतार दिया उसका क्या होगा।
2: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। Thank you.

Asana Manahe. कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 11वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में 38वीं किश्त 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वृक्ष मृत और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होने का अनुमान है और फीफा विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता 20 जुलाई को आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी श्रीवास्तव। आइए साथियों, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय। दोस्तों, आज की बात का हमारा आज का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस उपलक्ष्य में। साथ ही चर्चा करेंगे वर्ल्ड पेपर बैग डे पर। जीवन आलोक में बात करेंगे कर्मठ बने आलस्य का परित्याग करें। साथ ही क्रम वार्ता के अंतर्गत जानेंगे कुछ

महत्वपूर्ण बातें। विषय रहेगा सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें। इसकी वार्ताकार होंगी प्रज्ञा गौतम और इस सफर में सुनेंगे कुछ मधुर गीत। साथियों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कई महान विचारकों का मानना है कि आशा एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। विषम परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ना और उम्मीद बनाए रखना ही हमारे जीवन में तथा समाज में बड़े बदलाव का कारण बनता है। दोस्तों, आशा जीवन का यह शक्तिशाली प्रकाश है जो घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। हमारे जीवन में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना होता है, लेकिन आशा एक उम्मीद जो हमारे मन में जागृत होती है, उसकी डोर से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसी भावना को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में नामित किया गया है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का एक छोटा सा दीपक हमेशा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। साथियों, इसी विषय पर एक सुंदर सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। चाहे कितनी धुंध पड़ी हो, किंतु अंत में छट ही जाती। गहन कालिमा निविड़ निशा की, प्रातः को कब है रह पाती। चले आंधियां भले भयंकर, पर्वत लेकिन अविचल रहता। पथ की सब बाधाएं सहकर, जल नदियों का आगे बहता। फिर पाकर हम थोड़ा सा दुख, इस जीवन से क्यों घबराएं। तूफानों से हार न माने, आशाओं के दीप जलाएं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति निराशा या डिप्रेशन में होता है, तो आशा ही उसे जीवन जीने का नया कारण देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस का थीम आशा की शक्ति एक उज्जवल और एकजुट भविष्य का निर्माण है। साथियों, आशा हमें हर परिस्थिति में दृढ़ एवं आत्मविश्वासी रहने में मदद करती है। आशावादी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देता है, जो उसे औरों से अच्छा काम करने, अच्छा सोचने एवं आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में सहायक होता है। आशा एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है जो जीवन की गाड़ी को मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ाती है। आशा बेहतर भविष्य की कल्पना और उसे पाने का अटूट विश्वास है। बिना उम्मीद के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह एक दीपक के समान है जो जीवन के कठिन रास्तों पर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद और विश्वास पर दुनिया कायम है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व पेपर बैग दिवस पर। दोस्तों, प्लास्टिक बैग इस समय सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही ये बैग हमारे सेहत के लिए भी खतरनाक है। प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होगा। साथियों, प्लास्टिक को नष्ट होने में हजारों साल लगते हैं, जबकि पेपर बैग जैविक रूप से बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर बैग का उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पेपर बैग के उपयोग के महत्व को समझकर उसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। साथियों, पेपर बैग की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में देखी गई थी, जब फ्रांसीसी बोले द्वारा 1852 में पहली बार पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया गया। इस आविष्कार ने पेपर बैग के उत्पादन में क्रांति ला दी, जिससे
पैकेजिंग समाधान के रूप

0: में पेपर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। कागज के बैग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय विकल्प बन रहे हैं। ये बैग पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं और प्लास्टिक बैग द्वारा उत्पादित प्रदूषण की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। द वर्ल्ड काउंट्स के अनुसार हर साल अनुमानित 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यह एक समस्याग्रस्त संख्या है क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। लैंडफिल में प्लास्टिक को टूटने में सैकड़ों साल लग सकते हैं और यह वन्य जीवों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। पेपर बैग पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से विघटित होते हैं और इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। इन्हें संधारणीय स्रोतों से तैयार किया जाता है और इन्हें आसानी से रिसाइकिल या त्यागा जा सकता है। आज के इस दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि प्लास्टिक का उपयोग त्याग कर पेपर बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। साथियों, समय है एक महत्वपूर्ण वार्ता सुनने का, जिसका विषय है सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसकी वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: नमस्कार साथियों, आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों, सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों, सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों, आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीज़ें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी

घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों कई बार तो यूज़र को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है। जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक
हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा

0: सुविधा के लिए सावधानी पूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए, सोशल के हथियारों से हुई ज़रूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना, दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूँगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: साथियों, सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें, इस विषय पर अभी आपने वार्ता सुनी। इसकी वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं जीवन आलोक की, जिसमें हमारा आज का विषय है कर्मठ बने, आलस का परित्याग करें। साथियों, मनुष्य के जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार कर्मठता है। कर्मठ व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करता है। इसके विपरीत आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति अपने कार्यों को टालता रहता है, जिससे उसके जीवन में असफलता, निराशा और पछतावा पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्मठ बनने और आलस्य का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, कर्मठता व्यक्ति को अनुशासित, आत्मनिर्भर और सफल बनाती है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है और नियमित रूप से अपने कार्य करता है, वह जीवन में अवश्य प्रगति करता है। विद्यार्थी यदि कर्मठ हों तो वह पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, शिक्षक और सैनिक सभी अपनी कर्मठता के कारण समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं। आलस्य व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। आलसी व्यक्ति समय पर कार्य नहीं करता, जिससे उसके अवसर हाथ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आलस्य स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे शरीर में सुस्ती, मोटापा और अनेक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। कर्मठ बनने के लिए हमें प्रतिदिन समय पर उठना, नियमित दिनचर्या अपनाना, अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति, सकारात्मक सोच और आत्म अनुशासन भी कर्मठता को बढ़ावा देते हैं। विद्यार्थी जीवन में कर्मठता का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी नियमित अध्ययन करें, समय का सदुपयोग करें और आलस्य से दूर रहें, तो वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का परिश्रम ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है। कर्मठता सफलता की कुंजी है और आलस्य असफलता का मुख्य कारण। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना मित्र और आलस्य को अपना शत्रु बनाता है, वही जीवन में सम्मान, सफलता और सुख प्राप्त करता है। इसीलिए हमें सदैव कर्मठ बनने, समय का सम्मान करने का संकल्प लेना चाहिए। यही व्यक्तिगत उन्नति, समाज की प्रगति और राष्ट्र के विकास का सबसे सशक्त मार्ग है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं यह गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म चलते चलते से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अभिजीत और साथियों ने।

अभी आपने सुना ही एक खूबसूरत सा गीत फिल्म चलते चलते से। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए अपनी दोस्त मानवी श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: तीनों कॉलेज में,
7: डोंट वरी,
6: फीस तो देखो।
8: क्या हाल है, क्या हुआ?
7: फीस की टेंशन,
8: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
9: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
10: आरबीआई कहता है,
11: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
12: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह, बादशाह, जॉनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज़ में, फिल्म ए दिल है मुश्किल से।

0: tarde del Key Feelings.
1: प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, अरिजीत सिंह, बादशाह, जोनिता गांधी और नक्काश अजीज की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ए दिल है मुश्किल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है धूम 3।

जूलियस का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म धूम 3 से। कार्यक्रम का अगला गीत नेहा भसीन की आवाज़ में आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से।

सुहेल सेन का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल नेहा हसीन की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है बार बार देखो से, आवाज़ है अमर अर्शी, बादशाह और नेहा कक्कड़ की।

जसलीन रॉयल का संगीत, अमरीक सिंह कुमार का के लिखे बोल, अमर अर्शी बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बार बार देखो से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है डियर जिंदगी।

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा मैं।

0: कौशल मुनीर का संगीत अमित त्रिवेदी के लिखे बोल सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म डियर जिंदगी से। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज

0: और में 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। और फीफा विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता 20 जुलाई को आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू, साथ ही संजीवनी की आवाज में फिल्म करीब से।

अनुमलिक का संगीत राहत इंदौरी के लिखे बोल कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म करीब से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म बिच्छू से। आवाज़ है हरियानंद और जसपिंदर नरूला की।

आनंद राज आनंद का संगीत, समीर के लिखे बोल, जसपिंदर नरूरा और हैरी आनंद की आवाज़ में फिल्म बिच्छू से आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत की आवाज़ में, साथ है अलका याग्निक। फिल्म का नाम है बादशाह।

अनु मलिक का संगीत, समीर के लिखे बोल, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म बादशाह से। कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज़ में प्रस्तुत है गुप्त फिल्म से।

0: बिरजू शाह का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म गुप्त से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं कंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: और स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में ये अगला गीत। अलका याग्निक के साथ है कुमार सानू और फिल्म का नाम है सोल्जर।

अनु मलिक का संगीत समीर के लिखे बोल, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सोल्जर से। कार्यक्रम का अगला गीत अदनान सामी की आवाज़ में प्रस्तुत है फिल्म अजनबी से, साथ दे रही हैं सुनिधि चौहान।

अनु मलिक का संगीत, समीर के लिखे बोल, अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अजनबी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और चंदना दीक्षित की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कूड़ी नंबर 1।

आनंद मिलन का संगीत, समीर के लिखे बोल, अभिजीत और चन्ना दीक्षित की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कूली नंबर वन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसपिंदर नरूला और अनमोल मलिक।

अनुमलिका संगीत समीर के लिखे बोल अनुराधा पौटवाल सुखविंदर सिंह जसविंदर नरूला और अनमोल मलिक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बादल से। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 12 जुलाई 2026 यानी कि आज शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660901 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने, दिनांक 12 जुलाई 2026

0: शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य। फोन नंबर है 2660901 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा, तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डब्रो

0: की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मिलाडनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रसारित होगा आज रात 8 बजे। आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की सुन सकेंगे रात 8:15 पर। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10 बजे सुनिएगा कुमार मर्दुर का गायन। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है कि 12वीं कड़ी सुनिएगा कल दोपहर 12:30 पर। स्वास्थ्य दर्पण सुनवाया जाएगा दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 1:30 पर और 1:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये चारों कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में सुन सकेंगे कल रात 8 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में कल रात 10:30 पर सुनिएगा सुप्रिया मोइत्रो का ध्रुपद गायन राग भिन्न षडज। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आज रात 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां धान की उन्नत उत्पादन तकनीक और साम्यक कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में दसरू राम और साथियों द्वारा गाए हुए कोंडी लोकगीत सुनवाएंगे हम आपको। और 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम आईना। जिले की चिट्ठी सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। 10:05 पर सुने कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल सुबह 10:30 पर सुनेगा अलका देव मारुलकर का गायन राग ललित। कल रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना,
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में वृक्ष मित्र कार्यक्रम को किया संबोधित। इंदौर में मुख्यमंत्री ने 21,00,000 पौधारोपण का महाअभियान शुरू किया। और प्रदेश में तेज बारिश, 4 दिन का ब्रेक, आज 27 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 322,29,00,000 रुपए की लागत के 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली बहनों का सम्मान और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके हित में हर आवश्यक कदम उठाएगी।
1: 1,835 करोड़ की लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। लगभग हमारी 322 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली, 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी नजर आया है। चंबल अंचल के इतिहास में पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी उम्मीदवार का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। उधर कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। घनश्याम सिंह भी कल नामांकन पत्र भरेंगे। इसके अलावा दतिया से आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में हैं। आपको बता दें कि 2023 में दतिया सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक बने थे, लेकिन भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर का शुभारंभ करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को साझा कर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश, परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं भावी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य उच्च विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को गति देना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के पहले 2 संस्करणों ने प्रदेश में प्रौद्योगिकी निवेश को नई गति प्रदान की है। कॉन्क्लेव 1.0 और 20,000 कृपया से दोबारा सुन लें। कॉन्क्लेव 1.0 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 75,000 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए। कॉन्क्लेव 2.0 में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 48,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए। ई प्रवेश अभियान में अब तक प्रदेश में 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,00,000

0: 66,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,206 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि धरती का औसत तापमान वर्ष 1900 की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत है। श्री चौहान ने यहाँ अर्थ यानी पृथ्वी का अनोखे अंदाज में अर्थ समझाया।
3: ERTH, अभी आपको बताए, कमरे से निकलो, एनर्जी छोटी चीजें, बिजली का स्विच ऑफ कर दो, ये प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा ऑफ करेगा। ऐसे अवॉइड प्लास्टिक की बात, सब्जी लेने जाओ तो कपड़े का थैला ले जाओ, तो कागज की थैलियां भी बन रही है। नल टपक रहा हो तो टोंटी ठीक से बंद करो, नहीं तो सुधरवाओ। पानी की बोतल में आधा पानी मत छोड़ो, बोतल संग लेके जाओ, एक एक बूंद पियो। कई बार वो भी चलता है, पी 2 घूंट और फेंक दी। रिड्यूस वाटर वेस्टेज, ट्रैश मैनेजमेंट, गीला कचरा सूखा कचरा अलग, खाओ और कहीं भी फेंक दो, आदत बदलनी पड़ेगी। और ऐसे हेल्दी फूड, मोटा अनाज।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत BSF पहाड़ी से 21 लाख पौधारोपण के अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि जो हमें जीवन दे, सदमार्ग पर ले जाए, वह सदैव वंदनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रकृति ही परमेश्वर के स्वरूप हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार भी और वसुधा का श्रृंगार भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाया जा रहा एक पेड़ माह के नाम अभियान कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं, ये जीवन के लिए सांसों का स्थायी प्रबंध करने का अभियान है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, जिनसे हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र तैयार होता है, ये अभियान इनकी सुरक्षा का मिशन है। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सहभागिता की। शिवपुरी जिले में PM पोषण योजना के तहत कुल 2,500 स्कूलों के 1,593,524 विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी 2,149 स्वसहायता समूह के पास है। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज और भारी बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होगी। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने की अनुमान जताया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में लाडली बहना योजना के तहत 38वीं किश्त से 2,26,846 महिलाओं के खातों में राशि जमा हुई। राजगढ़ के चारपुरा गांव में कल आयोजित हरियाली महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत नर्मदापुरम जिले को मार्च 2027 तक पूर्ण

साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ 15 जुलाई तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा जिले में खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आगरमालवा जिले के कानड़ में आयुष मेडिकल ऑफिसर ने माँ और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए सही समय चुनना और 2 बच्चों के बीच सही अंतर रखने के बारे में जानकारी दी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में सतर्कता विभाग की 2 दिवसीय कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा मौत मामले में एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें ये आकाशवाणी भोपाल है शाम के 7:21 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनबे बारे हमारे सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम। भैयारों, ग्राम सभा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और विशेष रूप से आप सभी जन आज इंतजार करते हुए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा को। बिल्कुल भैयारों, जैसे ही 7:30 बजे हैं, हम जो है आपके टेलीफोन कॉल्स ले लग जाए हैं। मनोहा, इसे पहल जो है हम आपको बता दें कि आज को विषय हम कर रखे हैं। तो भैयारों देखो, विषय नोट कर ले, धान की उन्नत उत्पादन तकनीक जो हमारा आज को विषय है ना। और ये विषय से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके सवाल है, वे आप जो है हमारे जो आज के विशेषज्ञ हुई है डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा बिन से आप सीधे टेलीफोन लगा के पूछ सकते हो। और टेलीफोन नंबर जरूर आज आप ध्यान रखें, भोपाल को एसटीडी कोड 0755 और टेलीफोन नंबर है 2660 0 2660 0 9 1 जो हमारा आज का नंबर है, और जो नंबर पे जो है आप टेलीफोन जरूर लगाएं। और तब तक अपन जो है आगे की ओर चर्चा कर लें, बातचीत कर लें। कैसे कि भैया देखो, ई वक्त सभी दूर जो है बारिश हो रही है ना, और बारिश के मौसम में जो है आप हरों को का है कि ध्यान रखना जो है कि जो बोनी बरोनी में अगर कहूँ पिछेती रह गई है आपकी बोनी, तो फिर जो है आप विशेषज्ञ जो आपको अनुशंसा करें उन वो बीजों को लेके जो है आप बोनी करें। और फिर भैया देखो, एक बात और भी है, अब आजकल जो है टेम का है कृषि वानिकी को है, तो अब अपन कृषि वानिकी में क्या करें। सबसे पहली बात तो जो है कि अपने पास जितनी जोत है उमी जो है अपन जैसे सोयाबीन, मूंगफली, उड़द या जो दूसरी फसलें ले हैं उनके संगे संगे अपन दूसरे व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसे चाहे तो पशुपालन इके लाने जो है, जहाँ अपने पास जो है जमीन खेती पड़ी हुई है, जैसे ऊसर भूमि है, या जहाँ कोनो बीज अपन नहीं ले रहे वहाँ पर जो है चारे वगैरह भी आप उगा सकते हो। और हाँ, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। कैसे कि जोन भूमि में कछु नहीं पैदा होते वहाँ आप पेड़ पौधे लगा दो, तो ये भी एक तरह से जो है कृषि वानिकी को रूप हमारे सामने है ना। तो यानी कि छोटी जोत कम खेती में अपन ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करें, तो जो कहते हैं कृषि वानिकी। तो आप कृषि वानिकी को ध्यान रखें उनके तहत जो है। और फिर आप देखो, कोई भी है तो वो बरसात के टाइम में ज़रूर पेड़ पौधे लगा लेते, चाहे भले गर्मी में ना लगाए या दूसरे मौसम में ना लगाए, लेकिन जो सबसे अच्छो टाइम हो थे पेड़ पौधे लगाओ को, तो ई वक्त आप जो है पेड़ पौधे लगा लो। और फिर बारिश के मौसम में तो बिना लगाए भी पेड़ पौधे हुआ थे, तो आप बस इतो करो कि अगर कहूँ पेड़ पौधे अच्छे दिख रहे हैं तो उन्हें जो है सही सलामत व्यवस्थित रखें, ताकि जो है

0: पौधे बड़े हो जाएं। अब जैसे खेतन की मेड़ पे आपने कोनो बीज डाल दें तो फिर वे पौधे जो है बड़े काम के हो जाते हैं ना, तो ऐसा ध्यान रखें भैया रो। और देखो अब टेम हो रहा है बुंदेली समाचारन को, तो अपन सुना थे बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं महेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिनन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। 3 देशन की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बुलावे पे इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया को दौरा करो। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया भी गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के संगे 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लिया। इते फोरम में उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करो। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड को दौरा करो। न्यूजीलैंड की यह यात्रा कोनो भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 सालों में पहली यात्रा हती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिला के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1,25,15,000 से ज़्यादा महिलाओं के खातों में 38वीं किस्त के 1,835 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जारी करी। राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर 2025 से मासिक आर्थिक सहायता राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी करे जावे के बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं के प्रति माह 1,500 रुपये की निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। योजना की शुरुआत यानी जून 2023 से लेकर जून 2026 तक सरकार द्वारा कुल 37 किस्तन को नियमित अंतरण सफलतापूर्वक कर दो है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 238,96,00,000 रुपये की लागत से पूरे हो चुके 40 अलग-अलग विकास कार्यों को लोकार्पण भी करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर में आज एक बड़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत भई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुड़ानिया गांव स्थित बीएसएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महाअभियान को शुभारंभ करो। ये अभियान के तहत 21 लाख पौधे लगावे और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करवे को लक्ष्य रखा गया है। इको उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन को रूप देना सुई है। कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और सभी जन मौजूद रहे। इस मौका पर सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी पौधारोपण अभियान में भाग लिया। राज्य सरकार ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लाने ऐसे अभियानों से जुड़वे की अपील करी है। मुख्यमंत्री ने कही है कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और जल संचयन के लाने व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। इन प्रयासों से परिणाम स्वरूप आज प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। ई प्रवेश अभियान में अब तक प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लाने कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराओ है, जबकि 5,65,576 आवेदनों को सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करो जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन और प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,206 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लो है। अब खबर मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहे और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहे। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी

0: और कहूँ कहूँ आंधी के संगे हल्की बारिश होवे को अनुमान जताओ गए। इते भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, खरगोन, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में हल्की बारिश और आंधी की संभावना बताई है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न है।
1: बुंदेली समाचार।
0: किसान भाइयों, अब समय हो चला है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का, और हमारे साथ में उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी, जो कि विषय विशेषज्ञ आज के। आज का विषय है धान के उन्नत उत्पादन तकनीक। इस विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप सीधे टेलीफोन लगाकर हमसे कर सकते हैं। और डॉक्टर संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: चूँकि ये मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो गया और हमें धान पर चर्चा इसलिए भी करना है कि जो किसान भाइयों की रोपणी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर चुकी है, वो रोपाई का कार्य कर रहे हैं। जिनकी रोपणी की तैयारी नहीं हो पाई या पानी की वजह से समस्या आई है, तो उनके लिए भी हम आगे के कार्यक्रम में आपको चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनको अपना ये मैनेजमेंट खेती का करना है।
0: बिल्कुल।
2: तो
0: मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, मैं टेलीफोन नंबर बता दूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा टेलीफोन नंबर हमारा जो है परिवर्तित है। किसान भाई ध्यान दें, हमारा आज का टेलीफोन नंबर है 2660901। इस नंबर पर आप टेलीफोन लगाएं। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। और विषय हमने आपको बता ही दिया है, एक बार पुनः आपको बता देते हैं आज का विषय धान की उन्नत उत्पादन तकनीक। इस विषय से संबंधित आप अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं हम तक पहुंचाएं। हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित है, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ डॉक्टर साहब,
2: बहुत अच्छी शुरुआत करी सोनी जी आपने। किसान भाइयों से मैं भी अनुरोध करूँगा कि अपनी जो भी खाली जगह पड़ी है, इस समय वृक्षारोपण अवश्य करें। सबसे उपयुक्त समय है ये वृक्षारोपण का, चूँकि हम देख रहे हैं पर्यावरण में कितना परिवर्तन आ रहा है इस वजह से, और तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है, मौसम में बदलाव आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी खाली खेतों के आसपास जहां भी जगह वृक्षारोपण करें। तो
0: हम वृक्षारोपण करें, और हमें संकेत मिल रहा है किसान भाई लाइन पर है, उनका टेलीफोन लेते हैं।
2: जी
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: हेलो
0: जी, आप शुभ नाम बताएं, स्थान भी बताएं।
3: हाँ जी,
0: आप अपना शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें हमें।
3: नेत्राम खोजा बोल रहा जी, कोठिया।
0: नेत्राम जी, आपका सवाल क्या है?
3: सवाल जो है जी, मैं सोविन बोल रहा हूँ।
2: हाँ
0: हाँ,
3: तो वो मैं पीले पत्ता हो रहा है।
2: अच्छा, तो नेत्राम जी एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि चित्तीदार पीले पत्ते हो रहे हैं तो वो येलो विंग मोजेक यानी पत्त चितपर्णी रोग है, पीली पत्ती रोग है। और इससे बचाव का सबसे प्रथम उपाय है, जो ग्रसित पौधे हैं हमारे, उनको तत्काल आप खेत से उखाड़ करके नष्ट कर दें, बाहर कर दें। इसके बाद रसचूसक कीटों से बचाव हेतु इमिडाक्लोरोपिड या थायोमिथाग्जाम नामक दोनों में से कोई एक दवा ले लेंगे। यदि आप थायोमिथाग्जाम लेंगे तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी 15 लीटर का पंप है तो 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इस दवाई का छिड़काव अवश्य कर दें। क्योंकि ये जो पीतवर्णक रोग है सोयाबीन में, ये रसचूसक कीटों की वजह से आता है। वाइट फ्लाई होती, सफ़ेद मक्खी जो होती है उसकी वजह से आता है। हमारे किसान भाई ग्रामीण भाषा में मच्छर बोलते हैं, तो उसकी वजह से आता है, और हमें उसके नियंत्रण का करना अति आवश्यक है। पहले आप ग्रसित पौधों को बाहर कर दें, इसके बाद आप अपना जो दवाई बताई गई है इसका छिड़काव अवश्य करें। और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का उपयोग करना है आपको छिड़काव के समय, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
0: तो नेत्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और आपकी जिज्ञासा का समाधान डॉक्टर संजीव वर्मा जी ने कर दिया है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे किसान भाई जो भी समस्या इस वक्त उनकी है वो हम तक पहुंचाएं। देखिए, हमें फिर संकेत मिला है, एक किसान भाई लाइन पर है, चलिए टेलीफोन लेते हैं उनका। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका
4: हेलो ग्राम सभा।
0: बिल्कुल, हेलो ग्राम सभा में आपका टेलीफोन लग चुका है, आप अपना शुभ नाम बता दें, स्थान भी बताएं।
4: सतपाल लोधी जिला सागर ग्राम खिरिया।

0: बोलना था सर।
1: सत्यपाल लोधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें।
0: सर जी, बारिश तो कम हो रही है।
1: अच्छा,
0: धान की रोपाई कर रही तो सर को कैसे ध्यान रखे?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चूंकि आपने रोपाई कार्य पूर्ण हो गया आपका धान का
0: जी,
2: और पानी की समस्या आ रही है कई जगह, हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं, तो मैं यहाँ उनको बताना चाहूँगा कि लाइफ सेविंग इरिगेशन देना अति आवश्यक है। अर्थात अब ऐसी स्थिति में जहाँ आपने रोपाई कर चुके हैं, चूँकि आज की हमारी धान पर ही चर्चा है, तो वहाँ स्प्रिंकलर पद्धति से आप सिंचाई का कार्य करें। मतलब कि जैसे धान में पानी भर के ना रखने की जगह आप स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति से अपने खेतों की सिंचाई करें, क्योंकि मान लो लंबा खिंच गया मानसून में, बारिश कम हुई, तो हम अपनी धान की को बचा पाएंगे और आने वाले समय में उत्पादन भी प्राप्त कर पाएंगे, है ना। फवारा पद्धति से सिंचाई करें, पानी की बचत करना शुरू करें, क्योंकि आगे तक अभी चूँकि रोपाई कार्य ही हुआ है, अभी लंबा समय है धान में, 120 दिन रहते हैं।
1: तो सत्यपाल लोधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और चूँकि इस समय जो है हमने जो आज का विषय रखा है धान की रोपाई, जो धान की उन्नत तकनीक है उससे संबंधित है, और इस समय धान में काफ़ी कुछ सामूहिक कार्य भी हो रहे हैं। खैर, हम एक सवाल लेते हैं, हमारे किसान भाई लाइन पर है। हाँ जी जी, नमस्कार।
3: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में आपका टेलीफोन लग चुका है, आप शुभ नाम बताएं अपना।
3: जयराम साहब
1: जी, आप शुभ नाम बताएं अपना।
3: जवाहर सिंह चरवार, ग्राम कलियाबादा, तहसील बिकौन, जिला रायसेन
1: जी। अब आप सवाल करें।
3: क्या सर?
1: आप सवाल करें, आप क्या,
2: आपका क्या प्रश्न है? बहुत
1: पूछिए करें आप।
3: सर ये बोल रहा, वो नंबर नहीं है चालू, दो वाला, तीन वाला?
1: नहीं नहीं, अब आपका फोन तो लग गया ना, आप तो बात
2: करिए ना। प्रश्न हो तो पूछिए आप,
1: आपके पास कोई सवाल है
3: जी?
1: हाँ तो पूछिए, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए
3: हैं। सोयाबीन और उड़दा की पत्ता खाला झरझरा रहे हैं।
1: अच्छा,
2: झुलस रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं क्या?
3: नहीं, ये इल्ली ने खा लिए।
2: अच्छा अच्छा, इल्ली ने खा लिए हैं। तो आपको मैं जैविक उपाय बता दे रहा हूँ, सोयाबीन में और उड़द में जो भी इस तरह की इल्ली का प्रकोप कहीं देखने को मिल रहा है, तो बेबेरिया बेसियाना नामक जैविक कीटनाशक आता है, और सब जगह ये बाज़ारों में भी उपलब्ध है, लिक्विड भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो बेबेरिया बेसियाना का छिड़काव अपने खेतों में अवश्य करें किसान भाई, जहाँ भी इस तरह की समस्या आ रही है। और अपनी निगरानी करें खेतों की, जहाँ क्योंकि जो इस समय सोयाबीन में जो इल्ली आती हैं, तीन तरह की आती हैं, टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू की इल्ली, इसके बाद सेमी लूपर, ग्रीन सेमी लूपर और गर्डल बीटल, तो कुछ बाद की अवस्था में आएंगे, कुछ शुरुआती अवस्था में आएंगे। तो उससे बचाव के लिए जो मैंने बताया है, बेबेरिया बेसियाना नामक जो पाउडर है, या तो पाउडर फॉर्म में मिलेगा या लिक्विड में, उसका छिड़काव करें।
1: तो
2: हम जो चर्चा आज कर रहे थे वो है धान पर प्रमुख रूप से। तो धान में हमारी जो बिजाई की पद्धतियाँ हैं, तो धान में तीन तरह से हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं धान की, जिसमें सबसे पहली जो पद्धति है वो परंपरागत पद्धति है हमारे किसान भाई, जिससे क्योंकि रोपाई का कार्य परंपरागत पद्धति में सबसे अधिक क्षेत्राच्छादन में होता है। और दूसरी पद्धति है वो SRI पद्धति, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको हम किसान भाई धान सगरीकरण भी हिंदी में बोल कह सकते हैं। इस पद्धति में कुछ विशेष परिस्थितियों में धान की खेती करी जाती है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरी पद्धति है DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। यहाँ मैं किसान भाइयों को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा, जो किसान भाई धान की रोपणी नहीं तैयार कर पाए पानी की समस्या के चलते, या जिन पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो और बुवाई का कार्य अभी नहीं हुआ है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो इस परिस्थिति में अभी जो जैसी मौसम की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए DSR डायरेक्ट सीडेड राइस पद्धति का ही से चुनाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो चर्चा करेंगे। एक लाइन पर किसान भाई है, पहले हम उनका फोन ले लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपके कार्यक्रम में। जी बोलने जगह, आप सवाल करें।
2: कट गया फोन, तो हम बात कर रहे थे कि
1: जी।
2: किस तरह से हमें

0: तो जो परंपरागत पद्धति में है, मैं सबसे पहले बात करूंगा बीज मात्रा की
1: जी।
0: और
1: चलिए एक सवाल लेते हैं किसान भाई का
0: जी।
1: हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: आप शुभ नाम बताएं अपना।
2: जी जी बिल्कुल सर, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
1: मनोज जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सवाल करें।
2: जी धन्यवाद सर जी। सर जी मेरा ये सवाल था कि एक खेत में मैंने धान की रोपाई कर दी
0: जी।
2: लेकिन सर क्या हो रहा है, अभी दो चार दिन से देख रहा हूँ मैं, पूरे खेत में नहीं, मेड़ के बगल में कहीं कहीं धान पीली पड़ रही है
0: जी।
2: तो अभी मैंने उसमें कोई भी दवाई नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपसे परामर्श लेना चाहता हूँ।
0: हाँ देखो क्या होता है, कई बार किसान भाइयों से मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो रोपनी लगाई है कितने दिन पहले लगाई है?
2: बिल्कुल
0: कितने दिन हो गए आपने को धान लगाए हुए, अभी जो लगाई है?
2: सर जी धान को लगाए लगभग मेरे को हो चुके हैं 20 दिन।
0: 20 दिन हो गए हैं, तो मेड़ों मेड़ों के किनारे दिक्कत आ

0: नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपसे परामर्श लेना चाहता हूँ।
1: हाँ देखो क्या होता है, कई बार किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो रोपनी लगाई है कितने दिन पहले लगाई है?
0: बिल्कुल,
1: कितने दिन हो गए आपने को धान लगाए हुए? अभी जो लगाई है
0: सर जी, धान को लगाए लगभग मेरे को हो चुके हैं 20 दिन।
1: 20 दिन हो गए हैं, तो मेड़ों मेड़ों के किनारे दिक्कत आ रही है सिर्फ आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बीच में तो एकदम सही है।
1: हाँ तो आप पहले अपना जो सैंपल है नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में ले जा करके पौधे दिखा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखने पे ही स्थिति का पता लगेगा। और आपने यूरिया का एक डोज दे दिया, उसमें छिड़काव कर दिया?
0: बिल्कुल अभी दिया था सर मैंने, 4-5 दिन पहले।
1: हाँ तो 4-5 दिन बाद उसकी रिजल्ट समझ में आएगी, लगभग एक सप्ताह के बाद जो है नीम कोटेड यूरिया आता है, एक सप्ताह के ऊपर उसकी रिजल्ट। हल्की सी सिंचाई उसमें, यदि पानी आपको नहीं हो वहाँ पर उपलब्ध तो हल्की सिंचाई का कार्य अवश्य करें वहाँ पर, है ना?
0: बहुत
2: जी। तो मनोज नामदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिवपुरी से टेलीफोन लगाया, और इसी तरह की अन्य किसान भाइयों की भी समस्या हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती
1: तो
2: है।
1: हम जो बात कर रहे थे,
2: एक टेलीफोन और ले लेते हैं। जी हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं अपना।
3: हेलो सर, सवाल रहेगा तुम्हारो।
1: जी
3: जबुल्ला सर, नमी नन्या खेत में दवाई काम कर है कचरा की किने का?
2: अच्छा
1: बिल्कुल एकदम सूख गया है, कैसी स्थिति है खेत में? बिल्कुल नमी नहीं है बिल्कुल भी?
3: नहीं बिल्कुल तो है कि थोड़ी।
1: कौन सी फसल में दवाई डाल रहे हैं आप?
3: यही सोयाबीन है, जैसे मक्का है।
1: हल्की भी नमी है तो काम कर जाएगी, है ना? आप पपड़ी तोड़ के देख लें, मामूली नमी है तो दवाई काम कर जाएगी। और पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना, 200-250 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव अवश्य करना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा मक्का में भी और सोयाबीन में भी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में 500 लीटर से ऊपर ही पानी जाना चाहिए, है ना? तो पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, पानी जितना ज़्यादा आप उपयोग करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया। और चूँकि हाँ डॉक्टर साहब,
1: तो हम चर्चा कर रहे थे परंपरागत पद्धति में जो बीज मात्रा है वो लगभग 10 से 12 किलो लगती है, और जो दूसरी पद्धति है उनमें बीज मात्रा भी कम लगती है।
2: अच्छा,
1: जिसको श्री पद्धति हम बोलते हैं, और जो तीसरी पद्धति हमारी जो है उसमें 14 किलो बीज मात्रा प्रति एकड़ लगती है।
2: अच्छा,
1: जिसको हम DSR बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पर किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि तीनों पद्धतियों में ये अंतर है। तो सबसे पहली बात आती परंपरागत पद्धति में, तो हमारे रोपनी तैयार किसान भाई कर चुके होंगे और बुआई का कार्य कर रहे हैं, रोपाई का कार्य कर रहे हैं। श्री पद्धति में विशेष तरह से नर्सरी तैयार करी जाती है, किसान भाइयों को यहाँ मैं बताना चाहूँगा। ज़मीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई नर्सरी तैयार की जाती है, और इस नर्सरी में बर्मी कम्पोस्ट, पकी हुई गोबर की खाद डाल करके उसको तैयार किया जाता है। और जो किसान भाई की रोपनी बेकार हो गई हो या वो लगा नहीं पाए हों, और श्री पद्धति में, या ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पानी की मात्रा है प्रति एकड़, जिस परंपरागत पद्धति में लगभग 5 से 7 हज़ार लीटर पानी लगती है, तो वहीं हमारी श्री पद्धति में जो पानी की मात्रा है प्रति एकड़ लगभग 1500 से 2000 लीटर पानी में काम हो जाता है हमारे किसान भाइयों को। यहाँ विशेष बात इसकी, क्योंकि इस बार पानी की समस्या है, और उसी प्रकार से DSR पद्धति में वही पानी की मात्रा 1500 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब में भी हमारे किसान भाइयों को काम हो जाएगा।
2: हो जाता है बिल्कुल। एक किसान भाई लाइन पर है तो टेलीफोन लेते होंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: हेलो,
2: हाँ जी स्वागत है आपका, शुभ नाम बताएं।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम बसंत कुमार है।
2: जी बसंत जी, कहाँ से?
4: नरसिंहपुर जिला, ग्राम कोट प्यासी।
2: आप जी बोले, अपना सवाल करें।
4: जी सर, ये जो अपना गन्ना है
1: जी,
4: गन्ने में अपनी इंडोली तो आ रही है बराबर, पर गन्ना मोटाई नहीं ले रहा।
1: कितने दिन का हो गया आपका
4: गन्ना? अपना हो गया करीब करीब 2-3 महीने का हो गया।
1: अच्छा अच्छा, तो आपने उर्वरक की कितनी मात्रा अभी दे चुके हैं?
4: सर 2 बार खाद दी है।
1: तो आप एक काम करें, लिक्विड मात्रा, लिक्विड रूप से PSB, KSB और ZSB तीनों आ रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, है ना? इनका कॉम्बिनेशन PSB, KSB, ZSB और एजिटोबैक्टर, चारों एक एक लीटर चारों ले लें। ये

0: चार लीटर हो जाएंगे आपके, और इनको घोल बना के 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर दें एक, तो इसको अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं वो वहाँ क्या होता, कई बार आपका उर्वरक मिट्टी में पड़ा रहता है और वो उपयोग में नहीं आता, एक्टिवेट नहीं होता, एक्टिवेट फॉर्म में नहीं आता। तो जब ये आप उपयोग करेंगे तो वो एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा, आपका जो खाद वहाँ पे पड़ा हुआ है मिट्टी में
1: जी,
0: तो वो अच्छी रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करेगा।
1: धन्यवाद
0: है ना
1: सर। और ये सोयाबीन में अपने पत्ते कमते जा रहे हैं,
0: क्या हो रहे हैं पत्ते,
1: सोयाबीन का पत्ता
0: हाँ
1: कीड़े खा जा रहे हैं,
0: कीड़े खा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा निगरानी करें। दो तरह के कीड़े, कितने दिन का हुआ आपका सोयाबीन अभी?
1: हमारा सोयाबीन हो गया 20 दिन जैसा होने वाला,
0: 30 दिन का,
1: 20 दिन का।
0: तो शुरू में तो ब्लू बीटल करके एक कीड़ा आता है, तो आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का कीटनाशक का छिड़काव कर दें। और यदि इल्ली कहीं निगरानी करें, यदि इल्ली कहीं देखने को मिल रही है सेमिल ऊपर, यदि पत्तियां भी ऐसी चिर जैसी जा रही हो, तो वो सेमिल ऊपर की वजह से होता है। सेमिल ऊपर इल्ली हरे रंग की होती, कुंडलक इल्ली बोलते हैं इसको। तो इसके लिए आपको बेवेरिया बेसियाना नामक जो जैविक कीटनाशक है उसका उपयोग करें और उसको छिड़काव करें। तो इससे क्या होता है, उसकी त्वचा पर फंगस आ जाती, जो इल्लियाँ हैं उसकी त्वचा पर फंगस आ जाएगी और ये वहाँ एक्टिवेट हो जाएगी। ये दवाई आप जब स्प्रे करेंगे तो आगे भी इन कीटों का, इल्लियों का प्रकोप कम होता जाएगा उस जगह पे।
1: धन्यवाद सर। और ये सोयाबीन में अभी कचरे की कौन सी मारी जाए?
0: कचरे की अभी आप कोई भी पोस्ट इमरजेंस ढेर सारी बाजार में आ रही
1: है, और ये
0: अभी आपने कोई सा भी नहीं स्प्रे किया?
1: नहीं।
0: डाइक्लोसेलम तो प्री इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस में जो अधिकतर हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं, जो विभिन्न नामों से मिलती है अपने वहाँ पर, जो बीडी साइड है उसका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं पोस्ट इमरजेंस के लिए। प्री इमरजेंस में डाइक्लोसेलम होता है जो अंकुरण के पूर्व उपयोग होता है, और पोस्ट इमरजेंस में हमारे किसान भाई जो लोकल में कई नामों से ओडीसी और कई नामों से मिलती है
1: जी,
0: उसका
1: जी,
0: उपयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें चौड़ी और सकड़ी दोनों पत्ती के जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण मिलेगा आपको।
2: तो बसंत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, नरसिंहपुर से आपने टेलीफोन लगाया और इतने विस्तार से हमारे डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी, दूसरे किसान भाइयों ने भी इसका लाभ उठाया। और लगातार हमारे पास टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, फिर भी हम दोहरा देते हैं, हमारा आज का विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक, इस विषय पर आप सवाल करें और हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी स्वागत है आपका हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर नमस्कार, मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ जिला सीहोर से।
2: नरेंद्र दांगी जी सवाल करें आप।
3: सर हमने T10 सोयाबीन बोई, धान बोई सर 20 दिनों की हो गई सर, उसमें खरपतवार है, तो उसके लिए कौन सी दवाई डालें?
0: देखो धान का सबसे बढ़िया खरपतवार नाशी है बिस्पायरेवेक सोडियम, है ना, जो उसका कंटेंट है, विभिन्न नामों से नॉमिनी गोल्ड और अन्य नामों से बाजार में उपलब्ध है ये, और इसको हम 25 दिन के पहले इसको उपयोग कर लेना है। आपने कौन सी पद्धति से धान लगाई, सीडी से लगाई, कैसे लगाई?
3: सर T10 है
0: जी,
2: नहीं उसका तरीका क्या है, सीडी
0: से बुवाई करी है कि आपने रुपाई करी है?
3: सर सीडी मशीन से बुवाई।
0: हाँ तो ये सबसे उपयुक्त समय है 20 दिन की, यदि आपकी हो गई है 25 दिन के पहले जो बिस्पायरेवेक सोडियम नामक जो मैंने दवाई बताई है उसका उपयोग कर लें तो उपयुक्त होगा, है ना। 200 ml प्रति हेक्टेयर, 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है 200 लीटर पानी में।
2: तो नरेंद्र दांगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीहोर से टेलीफोन लगाया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ली। डॉक्टर साहब अभी
0: तो हम बात कर रहे थे कि जो तीनों पद्धतियां जो हैं इस समय जो हमारे किसान भाइयों को
2: टेलीफोन ले लें क्योंकि किसान भाई का टेलीफोन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: जी नमस्ते सर।
2: जी आप अपना शुभ नाम बता दें, स्थान बता दें, फिर सवाल करें।
4: जी सर उमरिया मध्य प्रदेश से।
2: जी एक बार नाम पुनः दोहराएंगे।
4: जी सर संतोष कुमार राव बात कर रहा था उमरिया मध्य प्रदेश से।
2: संतोष कुमार राव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें।
4: जी सर जैसे कि हम लोग सर इस समय धान की फसलें लिए हुए हैं
0: जी,
4: जी सर तो ये जो धान की रोपाई की जाती है
0: जी
4: ये लगभग कितने दिनों में की जाए सर?
0: देखिए धान में वही बता रहा हूँ कि दो पद्धति हैं धान की, श्री पद्धति में लगभग 14 दिन का रोपा हम रोपाई करते हैं, परंपरागत पद्धति

0: में एक महा का रोपारोपाई करते हैं। तो आप यदि परंपरागत पद्धति से कर रहे हैं, आपके पास भरपूर पानी उपलब्ध है, तो उस पद्धति से कर सकते हैं। श्री पद्धति में 14 दिन का रोपाई करते हैं। यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो रोपणी जब वहाँ से खेत से उखाड़ते हैं तो उसमें बीज तंतु लगा होना चाहिए। 12 से 14 दिन का रोपा उपयोग करते हैं, बीज तंतु के साथ मतलब जड़ें उसकी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, तभी श्री पद्धति कहलाएगी वो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो उसको वहाँ, और जो रोपा है ज़्यादा खेत से दूर नहीं होना चाहिए। श्री पद्धति में मैंने रोपणी बता रहा था, जैसा कि रोपणी तैयार करना है तो वो खेत के जिस खेत में आप रोपणी लगाने वाले हैं श्री पद्धति में, उसी खेत में आपको रोपणी तैयार करनी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ एक बात, तो आप जो है लगभग यदि परंपरागत से करें तो एक माह का रोपा लगता है, और श्री पद्धति से करेंगे 8 से 14 दिन का रोपा लगेगा। तो आप कम दिन का रोपा लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, 25x25 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी है ना, उसके लिए रस्सी से लाइनें खींच के और लाइन रस्सी बांध के रोपाई कार करें
1: जी। तो संतोष कुमार राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, उमरिया मध्य प्रदेश से आपने टेलीफोन लगाया, और चूँकि हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन हमारे किसान भाई लगाएं, हमारे विशेषज्ञ भी जो है उन सभी किसान भाइयों के सवालों का जवाब दें। चूँकि किसान भाइयों अभी कुछ समय है, आप चाहें तो टेलीफोन लगा सकते हैं, वरना हम डॉक्टर साहब से समय का सदुपयोग करते हैं।
0: तो हम कहना चाहेंगे किसान भाइयों की इस समय कौन सी बात का विशेष ध्यान रखें, जिन किसान भाइयों की धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया, जिनकी पौध अधिक एक माह से अधिक की हो गई, डेढ़ माह की हो गई, तो वो रोपाई कार्य से बाधित हो गए हैं, तो वो यदि उनके पास बीज उपलब्ध है तो वो सीधी बुवाई पद्धति का उपयोग करें जिसमें कम पानी लगेगा। इसमें खेत को मचाने की आवश्यकता नहीं है, सीड ड्रिल से सीधी बुवाई का कार्य करना है और सिंचाई का कार्य कर देना है, या तो पानी गिर जाएगा, बारिश हो जाएगी तो अंकुरण आ ही जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो सीधी बुवाई के लिए लगभग 12 से 14 किलो बीज प्रति एकड़ मान से लगेगा, और अपनी जो गेहूँ की सीड ड्रिल है उससे भी बुवाई कर सकते हैं। बाकी ध्यान के प्लांटर भी आते हैं, और उसमें प्राइमिंग करा जाता है, बीजों को अंकुरित करके भी बिजाई का, यदि आप धान का प्लांटर उपयोग कर रहे हैं तो बीजों को अंकुरित करके फिर बुजाई का कार्य करते हैं, तो उससे अंकुरण जल्दी आता है धान में, और आने वाले समय में आपको पौध संख्या अच्छी मिलती है। तो TSR पद्धति बोलते हैं इसको, हमारे किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा, इस बात में विशेष ध्यान रखना है कि जब TSR पद्धति से आप कर रहे हैं धान की खेती, तो आपको 13 से 25 दिन के बीच में बिस्पायरेबिक सोडियम नामक जो कहना चाहिए कि खरपतवार नाशी है, उसका उपयोग अवश्य कर लेना है, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। और एक और चीज़ है इसमें, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन पर ताउची गुरमा, जिसको हम बोलते हैं कोनो बीडर, अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम उसका ताउची गुरमा है, तो इसका निंदाई कार्य अवश्य करना है 10 दिन 20 दिन और 30 दिन पे। तो इस जो दोनों पद्धतियों से मैंने बताया है, श्री पद्धति और परंपरा DSR पद्धति, दोनों में खेत में पानी भर के रखने की आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल, हमें संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर हैं तो उनका टेलीफोन हम लेते हैं। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, शुभ नाम बताएं अपना।
2: हाँ सर, मेरा नाम संतोष सोनी है।
1: संतोष सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप स्थान का नाम बताएंगे हमें।
2: हाँ, मैं राजा बिलहरा सागर से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए, बताइए आपका प्रश्न क्या।
2: हमारे यहाँ पर धान की बुवाई हो गई है
0: जी,
2: और अभी मौसम का इंतजार कर रहे हैं
0: जी। तो बुवाई आपने सीड ड्रिल से करी बोनी?
2: पहले 2 दिन पहले बोनी हुई है।
0: सीड ड्रिल से बोनी करी है?
2: हाँ, सीड ड्रिल से ही बोनी।
0: बहुत बढ़िया। अब आपको विशेष ध्यान रखना कि जो प्लाटिंग आपने 2 दिन पहले बोनी करी है, तो जो प्लाटिंग अवश्य कर दें अपने खेत में, मतलब 15 सेंटीमीटर अबंड फार्मर हो आपके पास या डिचर हो जिससे मिट्टी उठ जाए, है ना।
2: हाँ।
0: 15 सेंटीमीटर ऊंची पाल एक एक बीघा के प्लॉट कर दें, और छोटे हों तो और अच्छा है, है ना।
2: ठीक है सर, और सावधानी रखना पड़ेगा, थोड़ा बताएं।
0: यही पहली सावधानी यही है कि आप सबसे पहले तो प्लॉटिंग कर दें खेत में, ताकि पानी जब भी गिरेगा तो रुक करके चलेगा आपके खेत में, बह के नहीं निकलेगा। तो पानी रोकने के लिए छोटे प्लॉट साइज होने चाहिए DSR पद्धति में। दूसरा, 13 से 25 दिन के बीच में आपको खरपतवार नाशी का उपयोग अवश्य कर लेना DSR। आपने DSR किया है चूँकि
2: 25 दिन,
0: 13 से 25 दिन में, और जैसे
2: खरपतवार
0: बिस्पायरेबिक सोडियम नॉमनी गोल्ड और कई नामों से बाजार में आता है, बिस्पायरेबिक सोडियम रहता है।
2: गोल्ड हमारे यहाँ बहुत चल रहा है मैडम।
0: हाँ, तो 10 SL जो आता है बिस्पायरेबिक सोडियम, तो उसका छिड़काव आपको करना है 80 ml प्रति।

0: एकड़ के हिसाब से लगभग
1: 80 ml
0: प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में है ना, लगभग 200 लीटर पानी में। तो आपको इसका छिड़काव अवश्य करना है, इससे 13 से 25 दिन का ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है, इस पद्धति में क्या होता है कि यदि आपने समय पर छिड़काव नहीं कर पाए खरपतवार नाशी का, तो बीड पैडी कंपटीशन हो जाता, मतलब खरपतवार और धान में कंपटीशन हो जाता घास में, तो वो तेज़ी से घास ऊपर चली जाती है और धान नीचे रह जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। और पालें जरूर बना दें अपने खेत में, छोटे छोटे प्लॉट बना दें, अभी मौका है आपके पास, है ना। दो तीन चार दिन में पानी गिर जाएगा तो फिर आपको अंकुरण मिल ही जाएगा, नमी होगी तो अंकुरण तो होना शुरू हो जाएगा, अंकुरण तो आ जाएगा, नमी होगी काफ़ी खेत में आपके, कोई दिक्कत नहीं है।
2: तो संतोष सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सागर मध्य प्रदेश से टेलीफोन लगाया और इतने विस्तार से आपने जानकारी ली। और चूँकि अब जो है हमारे पास समय नहीं है कि हम अगले किसान भाई का टेलीफोन लें, लेकिन चलते चलते डॉक्टर साहब हम आपसे इतना ज़रूर जानना चाहेंगे कि सामयिक तौर पर संक्षिप्त में बताएं कि हमारे किसान भाई जो है अब धान की फसल में क्या करें।
0: देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, धान की चर्चा अपन ने करी, कई प्रश्न भी आए। यहाँ मैं किसान भाइयों से अवश्य बताना चाहूँगा, कैच क्रॉप अवश्य कर लें। जो किसान भाई अपनी परंपरागत फसल नहीं लगा पाए, सोयाबीन नहीं बो पाए पानी की कमी के चलते, या धान नहीं लगा पाए हैं, तो वो मूंग उड़द या तिल की बुवाई कर सकते हैं। ये कम अवधि की फसल है, अभी हालांकि समय है, 15 जुलाई तक बोनी उनकी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो लेट होते जा रहे हैं, उनको बुवाई में समय लग रहा, जुलाई माह में भी नहीं हो पा रही है बोनी, तो उनको फिर कैच क्रॉप लेनी पड़ेंगी। और उसके लिए तिल उड़द या मूंग की फसलें बहुत अच्छी हैं आने वाले समय के लिए, कम अवधि की भी हैं, लगभग 80 दिन में आपकी उड़द की फसल आ जाती है, 60 से 65 दिन में मूंग की फसल आ जाती है, और लगभग 80-85 दिन में तिल की फसल आ जाती है। तो ये तीनों में से जो भी उपलब्ध हो जाए, यदि इस माह हमारे किसान भाई नहीं कर पाए हैं बोनी किसी वजह से पानी की समस्या के चलते, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ें और ये कैच क्रॉप अवश्य ले लें।
2: बिल्कुल, तो ये तो आपने सलाह दी कि पानी की वजह से हमारे किसान भाई बोनी नहीं कर पाए, और कई कई जगह ज़्यादा पानी गिर गया है डॉक्टर साहब वहाँ?
0: देखिए, जहाँ पानी गिर गया है वहाँ तो कोई समस्या है नहीं, जल निकास की व्यवस्था करें, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, यदि सोयाबीन है तो जल निकास की व्यवस्था करें, धान है तो कोई समस्या नहीं है, धान के अलावा दूसरी फसलें हैं तो उपयुक्त जल निकास, उड़द मूंग भी हमारे कई किसान भाई बोनी कर चुके हैं जैसा कि अभी किसानों ने प्रश्न किया, तो वहाँ जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था करें, जैसे ही बतर मिलती है खेतों में समुचित जल निकास की व्यवस्था करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अपने जो बगीचे हैं उनमें यदि बतर आ गई हो तो एक बार कल्टीवेटर अवश्य चला दें, ताकि वहाँ पर खरपतवार ना उगें, इस बात का विशेष ध्यान हमारे किसान भाई रखें। और चूहा नियंत्रण के उपाय पर भी हमारे किसान भाई को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि खेतों में जैसे ही बारिश होती है तो उनके बिलों में, चूहों के बिलों में पानी भर जाता है, और वो किसान भाइयों के गोदाम और अन्य जगहों पे आने लगते हैं चूहे, तो चूहा बाहर आ जाते हैं बिलों से और वो इस तरह अपने गोदामों पर और अन्य जगहों पे अटैक करते हैं, तो वहाँ पर चूहा नियंत्रण के उपाय अवश्य करें अपने गोदामों में, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
2: तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। आज का विषय हमने रखा था धान की उन्नत उत्पादन तकनीक। हमारे आज के विशेष विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान भाइयों।
2: और आज के कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, उद्घोषिका रक्षा तंवर, प्रसारण सहयोगी फरनाज हसन। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रवीण कुमार सिंह और राजू बासे ने। और अब महेश सोनी को दिया गया नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
1: आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी इन 3 देशों में गए जहां भारत का तीनों देशों के साथ संबंध है उनको गहरा किया, डिफेंस पर बातचीत हुई, पार्टनरशिप्स पे बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स पर भी बात हुई है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की विजिट को देखते हैं जो जुलाई 6-8 में हुई और इस विजिट में लगभग 14 की एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ये जो 3 देश का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है और जो शुरुआत हुई इंडोनेशिया में, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं।
2: देखिए सिमरन जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था 3 देशों का, इंडोनेशिया से शुरू हुआ जैसा कि आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर जाकर खत्म हुआ। ये तीनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और भारत के महासागर विजन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों ही देशों में भारत और इन मित्र देशों के बीच में रक्षा, सुरक्षा से लेकर के आर्थिक मुद्दों पर, सेमीकंडक्टर और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, स्पेस सेक्टर को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर, के साथ ही साथ जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं उन पर भी तमाम समझौते हुए हैं, तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को एक पूरा साकार रूप दे रहा है, बल्कि ये जो इंडो पैसिफिक के देश हैं ये भी चाहते हैं, ये भी उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान 20 समझौते हुए, 14 MOUs हुए और 6 पर समझौता हुआ और उसका एक अनाउंसमेंट हुआ। अगर हम 14 समझौतों की बात करें तो मिसाइल डिफेंस को लेकर के इंडोनेशिया ने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा है कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। और इसके साथ वो दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है जो भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर के व्यापार करना चाहता है। इसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें हमारी अस्त्रा मिसाइल है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उसको लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। जहां तक मेरी समझ है इस क्षेत्र को लेकर के, सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच बात हो रही है। लेकिन समझौतों में सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के संबंध ही नहीं, मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक स्टील सप्लाई चेन बनाने की बात हुई है, क्योंकि इंडोनेशिया निकल मिनरल होता है, उसके उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस लिहाज से भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्षेत्र है और तमाम जो आधुनिक जो IT टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र है, उसमें इंडोनेशिया की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों में समझौते हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके बाद हेल्थ वर्क फोर्स को लेकर के कोविड जैसी महामारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि इंडोनेशिया भारत से बहुत कुछ सीखता है, प्रबोवो ने भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में या इन जनता की जो कल्याण के लिए जो नीतियां बनी है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। और ये इस बात से परिलक्षित होता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन और KPU, जनरल इलेक्शन कमीशन जो इंडोनेशिया का है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि चुनावों को कैसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही साथ नॉन फेरस मिनरल्स पे भी बात हुई है, मेटल आइटम्स पर बात हुई है। IFC-IOR इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो एक फ्यूजन सेंटर बना है गुड़गांव में, वहां पर एक इंडोनेशियन लायसन ऑफिसर की नियुक्ति होगी। और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी ब्रांच इंडोनेशिया में खोलेगा सिंघासरी में। और प्रम्बानान मंदिर, जिसकी यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की, उसके रिस्टोरेशन का काम भी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशियन अपने काउंटर पार्ट से मिलकर, जो जकार्ता में जो ये मंदिर है उसके जीर्णोद्धार और पुनरोद्धार का काम भी करेंगे। तो इंडोनेशिया की यात्रा मुझे लगता है इन 20 MOUs और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे परिलक्षित हुई है कि कितनी सफल ये यात्रा रही और कितनी प्रोडक्टिव ये यात्रा रही।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि आपने काफी डिटेल में हमारे सुनने वालों को बताया कि जो इंडोनेशिया की यात्रा है उसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए और कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में एक फर्दर स्टेप है, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर, तो इस यात्रा से जो भारत की

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में

0: एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो महासागर विजन है उनको एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है और उनको एक बढ़ावा मिला है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो महासागर विजन है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेकर इसमें कैसे ये एक हम मानते हैं कि ये यात्रा एक फर्दर पॉजिटिव स्टेप की तरह सामने आया है।
1: एक्ट ईस्ट नीति को जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ही ये बात कही गई थी कि एक्ट ईस्ट नीति एक प्रोएक्टिव नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए। और उस समय ये बात कही गई कि हमारे 3 C's कल्चर कॉमर्स और कनेक्टिविटी हमारे तमाम मित्र देशों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज एक्ट ईस्ट नीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज हम कल्चर कनेक्टिविटी कॉमर्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो ये 4 जो डीज इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहले से एक परिकल्पना रही है कि भारत की सीमाएं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उससे निर्धारित नहीं होती, भारत की विदेश नीति अपने जो ईस्टर्न फ्लैंक है जो पूर्वी तरफ के देश हैं जिनके साथ हमारे सदियों से संबंध रहे उनके साथ भी भारत के उतने ही अच्छे संबंध होने चाहिए। जब म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस एक्ट ईस्ट नीति में अब 40 वर्षों बाद जब एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा और ये यात्रा पिछली साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की विजिट के बाद हुई, मार्च 2025 की यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई और हमने देखा कि सिर्फ 2 मुलाकातों में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एग्रीमेंट साइन किया। दोनों देशों के बीच में अप्रैल 2026 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है जिसको रेटिफाई इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा और ये रिकॉर्ड 9 महीनों के समय में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है एक्ट ईस्ट की नीति में अब वो परिवर्तन आ रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, वो परिवर्तन आ रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों और हमारे रक्षा संबंधों और व्यापार के हितों से जुड़े हुए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट और डिफेंस के जो तमाम एग्रीमेंट्स इन तीनों देशों की यात्रा में साइन हुए उससे पता चलता है। आपने सवाल पूछा महासागर नीति का, तीनों ही देशों के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद से निपटने, नेचुरल डिजास्टर से निपटने, इन तमाम क्षेत्रों में जो महासागर विजन का जो कोर कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका मतलब यह है कि जो इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनकी प्रगति और उनके विकास साथ साथ भारत का भी विकास हो और भारत की सुरक्षा है उसके साथ ही इन देशों की सुरक्षा भी जुड़ी हो। तो महासागर विजन में देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी भी आता है और आतंकवाद से लड़ना भी आता है, नेचुरल डिजास्टर सुनामी जैसी डिजास्टर से लड़ना भी आता है और जो मैरिटाइम पायरेसी है, गन रनिंग है, नार्कोटिक्स है, उनसे जूझना भी आता है। सीधे तौर पर महासागर विजन से ही ऐसा लगता है कि जो हमारे लिस्ट ऑफ MOUs इन तीनों आए हैं वो उसी से एक तरह से प्रेरित है और ये दिखाता है कि कैसे महासागर विजन को अब धीरे धीरे उस संकल्पना को धीरे धीरे जमीनी तार्किक परिणत में लाया जा रहा है।
0: प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें जो जुलाई 8 से 11 तक हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की और जैसा आपने भी बताया अभी कि मैरिटाइम डिफेंस कोलैबोरेशन पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी पर बातचीत हुई और जो एक मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को कमर्शियल यूरेनियम का सप्लाई दे सकता है। तो ये जो एक यूरेनियम सप्लाई का जो एक एग्रीमेंट है ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत 2008 में शुरू हुई, तब से लेकर के अगले 6 सालों में 2014 में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया गया और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी संसद में रेटिफिकेशन के प्रोसेस और तमाम उन दस्तावेजों की बार बार जांच परख के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी था जैसा आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ट्रस्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में। आज जब ऑस्ट्रेलिया मलाबार एक्सरसाइज में भारत के साथ है जिसमें जापान और अमेरिका भी हैं, आज जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड का एक सदस्य है 2017 के बाद, हमें याद है कि 2007 में जब क्वाड बन रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को यही भरोसा नहीं था भारत पे, उसे लग रहा था कि क्वाड बनेगा तो पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा और वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये इच्छा व्यक्त की कि वो क्वाड में रहे और भारत के साथ मिलकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग करें। तो ये जो विश्वास की बात है वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये समय की

0: जरूरत है। और इतने वर्षों में 1998 से लेकर 2026 तक भारत ने कभी भी अपने किसी परमाणु कार्यक्रम को न किसी देश के साथ साझा किया है, न उसका किसी गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। तो एनपीटी का सिग्नेटरी न होने के बावजूद भारत ने अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित किया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के आगे बढ़ते हुए, सुधरते हुए और मजबूत होते हुए संबंधों के साथ साथ भारत की अपनी विश्वसनीयता भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के स्थापित हुई है। और इस वजह से ये ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब 2026 में साइन हुआ और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आपने न्यूजीलैंड के बारे में भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताया, जो भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, इंडोनेशिया की बात की है, महासागर की, और आपने मेंशन भी किया कि क्वाड का भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और अमेरिका के साथ। तो ये जब हम सब फैक्टर्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का रिश्ता इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीन देश की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हमारे जो रिश्ते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीचे अगर हम रख के इन रिश्तों को देखें, तो इनको कितना फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है, इस यात्रा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
0: इन तीनों देशों की यात्रा से हमारे संबंधों में, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे। एक छोटा पीरियड था 1960 के दशक में जिसमें भारत और इंडोनेशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट मोटे तौर पर एक नीतियों का को फॉलो करते रहे हैं, और इसलिए दोनों के संबंधों में जो अभी नया परिवर्तन आ रहा है वो एक तार्किक परिणति है उनकी अपनी विदेश नीतियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्वांटम जंप है भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये क्वांटम लीप है। इन तीनों ही देशों के साथ हम जिस पायदान पर खड़े थे हम उससे कई पायदान ऊपर जा चुके हैं, और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध भी एक जैसे नहीं थे। इंडोनेशिया हमारे बड़े नजदीकी था लेकिन आज वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हम कई मिनी लैटरल फोरम्स पर काम कर रहे थे वो आज हमारे साथ यूरेनियम भी साझा करना चाहता, और मैरिटाइम सिक्योरिटी में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना चाहता। न्यूजीलैंड जिसने बहुत ही कम देश हैं जिनके साथ उसने रक्षा और सैन्य मामलों पर दोस्ताना संबंध रखे हैं, वो भारत के साथ आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में क्वालिटेटिव जंप हुआ है। अगर हम एफटीए की बात जोड़ें तो वो एक दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनल क्वालिटेटिव जंप इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में दिख रहा है साफ तौर पर। आगे आने वाले समय में जब इन समझौतों को जमीनी हकीकत में उतारा जाएगा तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना परिवर्तन इनसे एक आम भारतीय, एक आम इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसमें रक्षा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हो रही है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में ये परिवर्तन दिखेंगे, और भारतीय बाजारों में जब इन न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स दिखने शुरू होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि एक्ट ईस्ट की नीति ने कितने व्यापक परिवर्तन भारत की विदेश नीति में, भारत की इकोनॉमी में और भारत के डोमेस्टिक मार्केट में दिखाए।
1: और हमने आज बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा को लेकर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर, और इन यात्राओं के अंत में हमको जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और भारत का जो रिश्ता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा है, और भारत की जो नीति है चाहे वो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, उनको कितना फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है, आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे प्रस्तुत है आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: श्रोताओं नमस्कार, डगर विकास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस अंक में हम जानेंगे केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो हमारे छोटे और सीमांत किसान भाइयों से संबंधित है। जी हां साथियों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूर्ण होने पर छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना पर विस्तार से जानकारी देते हुए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर श्री भवानी शंकर गुप्ता।
1: भारत सरकार द्वारा निरंतर किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं और इसमें जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसका अपना बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो किसानों की वृद्धावस्था के लिए चिंता करने वाली योजना है
0: जी,
1: और इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था और उसी दिन से हमारे किसान भाइयों के उसमें पंजीयन प्रारंभ हो गए थे। और ये किसानों के लिए, चूंकि किसान 60 साल की उम्र में जब आ जाता है तो उस समय उसके शारीरिक अंगों में शिथिलता के कारण वो खेती किसानी का कार्य नहीं कर पाता है, तो वृद्धावस्था में उसको आर्थिक सहारे के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी।
0: जी, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपने इस योजना के प्रारंभ होने के बारे में बता दिया है। गुप्ता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना से जुड़ने के लिए किस आयु वर्ग के किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं?
1: हाँ, ये किसान भाइयों को अगर इस योजना में जुड़ना है तो इसके लिए जो उनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए
0: जी,
1: और 18 वर्ष का कोई कृषक है वो भी जुड़ सकता है और अधिकतम उम्र 40 रखी गई, 40 वर्ष का किसान इसमें जुड़ सकता है। और उसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जैसे 18 वर्ष का किसान है तो उसको 55 रुपए प्रीमियम देना और पड़ेगा प्रति माह, और यदि वो 25 वर्ष का है तो उसको 100 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा प्रति माह, यदि वो 30 साल का है तो लगभग उसको 155 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, 40 वर्ष का है तो 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम देना पड़ेगा। ये एक उदाहरण के लिए बताया है, वो जिस उम्र का है उसी से उसके प्रीमियम की गणना हो जाएगी और वो देगा। और कुल मिलाकर के इसमें ये है कि 100 रुपए अगर किसान दे रहा है तो 100 रुपए उसमें सरकार मिलाती है। ये जो योजना है, ये योजना इसलिए प्रारंभ की गई है कि एक तो ये बुढ़ापे में पेंशन किसानों को मिलने लगी, क्योंकि जैसे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से हमारे किसानों को भी एक पेंशन मिलने के लिए ये योजना है। दूसरा, स्वैच्छिक एवं अंशदायी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर किसान को जुड़ना ही है कि उसको इसके लिए इसमें भाग लेना है, उसकी इच्छा है तो उसमें वो अपना अंश दे सकता है। 100 रुपए अगर वो दे रहा है तो 100 रुपए सरकार उसमें मिलाएगी। और दूसरी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वो उनके लिए मतलब अच्छी है कि बुढ़ापे में उनके लिए, क्योंकि बीमारियां भी हो जाती हैं, उसकी जो आमदनी है वो भी कम हो जाती है किसान भाइयों की, तो एक छोटा सा सहारा उनके लिए इस योजना से हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि किसान भाइयों को अच्छे जल्दी से इसमें मतलब जुड़ना चाहिए और प्रीमियम भी नाम मात्र का है उसमें।

0: ज्यादा मतलब प्रीमियम नहीं है।
1: गुप्ता जी, ये बात आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो कृषक वर्ग है वो बहुत विशाल है, इसकी जो पात्रता क्या है, क्या सारे कृषक वर्ग इससे जुड़ सकते हैं या किस वर्ग के किसान बंधु इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: इसके लिए मतलब सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि उसके पास में 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन होना चाहिए,
1: जी
0: और उसके ऊपर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर जमीन, मतलब 5 एकड़ जमीन उसके पास है तो वो अपना इसमें पंजीयन करा सकता है,
1: जी
0: और उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से अगर वो है तो वो उसका लाभ ले सकता है इसमें।
1: बिल्कुल, आपने इसकी पात्रता के बारे में बता दिया है और आयु के बारे में भी बता दिया है। गुप्ता जी, अगर हमारे किसान बंधु, कुछ कृषक भाई इस पात्रता में आते हैं, कहाँ से वो पंजीयन करा सकते हैं, किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, इस योजना को पंजीयन कराने के लिए एक तो अपने कॉमन सर्विस सेंटर है,
1: जी
0: वहां पर जाके किसान भाई अपना आवेदन कर सकते हैं और उससे जुड़ जाएंगे। दूसरा, इसमें 2 बैंक भी है, हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब नेशनल बैंक है, वहां भी जाकर के हमारे किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को जो किसान पीएम किसान के अंदर जो धनराशि मिल रही है, जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत, तो उनको वहां जाकर के बस बताना है, तो उसमें से उनका प्रीमियम को माला आवेदन दे देंगे, तो उनको जो आता है ना पीएम किसान योजना के अंदर जो राशि आती है 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की,
1: सम्मान
0: तो
1: निधि,
0: उसमें सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि योजना,
1: जी
0: तो वो वहां भी अपना आवेदन अगर बैंक में देते हैं उसमें से कर सकते हैं।
1: जी
0: इसी योजना को LIC द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इस जो संचालन इसमें ऐसा है कि यदि किसी कारण से कोई किसान भाई के साथ में ऐसा ना हो और 60 वर्ष का होने के पहले ही उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो किसान द्वारा जमा की गई राशि है, सरकार द्वारा मिलाई गई राशि है, और उस पे जो बना हुआ ब्याज है, वो सब का भुगतान उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा।
1: जी
0: मतलब ये इसकी और खासियत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमियम चला गया तो पता नहीं क्या होगा। तो मतलब अगर 60 साल के पहले खुदा न खास्ता किसी किसान भाई के साथ में अनहोनी हो जाती है, तो वो किसान भाई को उसका जो जमा किया गया पैसा, मतलब सरकार द्वारा मिला गया पैसा, इसके बाद उसपे जो बैंक के द्वारा जो भी ब्याज बना है, उस पैसे को मिला करके उसके नॉमिनी को लौटा दिया जाता है।
1: जी।
0: और दूसरी एक और खासियत इसकी है कि जैसे किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी इसमें पेंशन का प्रोविजन है।
1: जी
0: मतलब अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो जैसे 3,000 रुपए महीने किसान को मिलना है पेंशन, तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। तो ये योजना बहुत अच्छी है। तो अशोकनगर जिले में 2019-20 से लेके और अभी 2026-27 तक 955 किसानों ने इसमें मतलब अपना पंजीयन कराया।
1: जी,
0: तो मतलब मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी योजना है, 18 से 40 वर्ष के किसान इसमें भाग ले सकते हैं, छोटे से प्रीमियम की राशि है, सरकार द्वारा उस प्रीमियम में कुछ प्रतिपूर्ति भी की जा रही है, मतलब कुछ अपना मिलाया जा रहा है, तो ये करने की जरूरत है।
1: जी।
0: दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा,
1: हाँ जी,
0: मतलब नॉमिनी जरूर करना चाहिए उसमें, मतलब जब आवेदन कर रहे हैं उस समय जो भी पत्नी या पुत्र वगैरह उसका नॉमिनेशन, नहीं तो क्या होता है कि कभी जैसे 60 साल की उम्र के बाद में किसान की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किसको दी जानी है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, 60 साल के पहले यदि किसी अनहोनी के कारण कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसकी जो प्रीमियम की राशि है, जो जमा की गई राशि प्लस सरकार द्वारा जमा की गई राशि प्लस ब्याज की राशि, किसको लौटाई जाए, तो इसलिए नॉमिनेशन करना जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही अच्छी सुविधाजनक योजना है और आपने काफी सारी इसके लाभ बेनिफिट्स बता भी दिए हैं। अब एक प्रश्न ये मन में उठ रहा है कि इस योजना से जुड़ने के लिए हमारे किसान भाइयों के पास कौन कौन से कागजात जरूरी होना चाहिए?
0: ये अपन ने बहुत सारी चर्चा तो कर ली,
1: जी।
0: लेकिन क्या है कि किसान भाई कहेंगे करना क्या है।
1: जी।
0: तो देखिए क्या बोलते हैं, इसके लिए एक तो किसान का खसरा खतौनी की नकल होना चाहिए, और इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, और जो भी उसका जनधन खाता है या किसान का जो भी बैंक का खाता है वो खाता नंबर है, तो ये चीजें उसके लिए मतलब आवश्यक है इन चीजों को लेकर के, और वो आवेदन करता है तो उसका कचरा खतौनी की नकल हो गई, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया उसकी बैंक पासबुक, जो भी उसका जनधन खाता है या सामान्य खाता है, बचत

0: और इसके अलावा मोबाइल नंबर, ये बस इतने चीजों की आवश्यकता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी प्रकार से सरल शब्दों में आपने किसान भाइयों के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं और प्रीमियम्स पर बहुत विस्तार से आपने बातचीत की है कि किस एज में आप जुड़ेंगे तो क्या प्रीमियम रहेगा।
0: एक चीज और किसान भाइयों को मैं सलाह बताऊंगा, मतलब देना चाहूंगा कि जो प्रीमियम है उसको बीच में स्टॉप ना करें, नहीं तो क्या होता है कि वो प्रीमियम जमा कर देंगे तो जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो 1 साल तक उसको चलाते हैं, उसके बाद में अगर प्रीमियम जमा करते हो तो उस पे जो भी मतलब पेनल्टीज है तो उसको जमा कर दोगे तो पुनः चालू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे किसान भाई इसको प्रारंभ करें तो इसको पूर्ण करें, और अगर वो उसके माध्यम से चलते हैं आपका क्या बोलते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो जो किसान सम्मान निधि है तो उसमें से तो अपने आप ही क्या बोलते हैं स्वतः उसमें से राशि कट जाया करेगी, वो भी कर सकते हैं। और
1: जी
0: एक चीज की सुविधा और दी है इसमें सरकार ने, मतलब किसान को अपना वो देखना है स्टेटस, तो स्टेटस देखने के लिए मानधन.in करके
1: जी
0: वो उस पे अपना वो भी देख सकता है कि मेरी कितनी राशि जमा हो गई क्या हो गया, तो अपनी उसकी पॉलिसी का स्टेटस भी देख सकता है। तो
1: जी
0: मतलब ये भी उन्होंने शासन ने इसमें भारत सरकार ने किया है, तो किसान भाई इसको मतलब अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सरकारी योजना है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है वे इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं आज के इस अंक में बस इतना ही। डगर विकास की कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अब दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: आलेख और वाचन स्वरता हरिशंकर शिभरे का, प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गुना केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
2: वो थी, वो थी, हम थी।

पड़ के उसने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह जैसे कहती हो सुन रहे ओ लड़के मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आहा।

0: जाने प्यार हो गया।
1: एस डी बर्मन का संगीत मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आशा।

सी रामचंद्र का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल आशा भोसले की आवाज़ में गीत सुना फिल्म आशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पड़ोसन। साथ दे रहे हैं मन्ना डे और महमूद।

आरडी बर्मन का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल महमूद मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने पड़ोसन फिल्म से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश

0: एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम

0: पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
1: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने

अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमेरिका ने कहा है कि अब नाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमेरिकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिनमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई।

0: दी थी, उनके जस्ते खाकी को हो ची मिन्ह सिटी लाया गया है। अब उन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के येनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरतेहाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। भारत ने इस मदद पर ओमान के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जारी वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उसने एक बार फिर कहा है कि सिफारती हल के लिए जारी मुजाकिरात जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीका ने यह ऐलान ईरान के पासदारान इनकलाब IRGC की तरफ से आबनाए हुरमुज को मजीद कोई नोटिस जारी किए जाने तक बंद करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहे जाने के बाद दिया गया है कि आबनाए हुरमुज कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि समंदर में जहाजों की आमदोरफ्त आबनाए हुरमुज के रास्ते जारी है और अमरीकी फौजें बकौल उसके ईरानी जारहियत हिरासानी धमकियों और मनमाने ऐलानात के बावजूद आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। उसने जोर देकर कहा कि ईरान आबनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करता और महफूज राहदारी वाले रास्ते खुले हैं। वियतनाम के फूकोक जजीरे के करीब तेज रफ्तार कश्ती पलटने के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों का जज्द खाकी आज हो ची मिन्ह सिटी पहुंच गया है। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद महलूकीन के जज्द खाकी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। सिफारतखाने ने कहा कि वो कौंसिल खाना और वियतनाम के हुक्काम के साथ राबते में हैं ताकि जस्ते खाकी की वतन वापसी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। सिफारतखाने ने बताया कि महफूज निकाले गए 17 भारतीय सयाहों में से 16 सयाहों को भारत लाया जा रहा है, जबकि एक सयाह जिसकी हालत संगीन बनी हुई है फूकोक के एक अस्पताल में जेर इलाज है। इस दौरान वियतनाम के सदर ली मिन होंग ने हादसे की जांच का हुक्म जारी किया है और हुक्काम को हिदायत दी है कि कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का अहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक मुबारक त्रिवेणी यानी 3 दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ मां के नाम के उन्वान से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27,89,000 ज्यादा पौधे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जनभवन के अहाते में संदल का पौधा लगाया। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में संदल के 29 पौधे लगाए गए। जनभवन के अफसरान और मुलाजमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शजरकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से वजरा और अवामी नुमाइंदों ने NGO अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। यह मुहिम रियासत के सभी

0: 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर गांधीनगर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान आज उनके लोकसभा हलके में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र प्रोग्राम और पर्यावरण संरक्षण संकल्प तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ्फुज़ के लिए इंतहाई अहम है और इससे एक पायदार मुस्तकबिल की यकीन दहानी होती है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21 लाख पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुसलहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधा कृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुसले और मुजाहिद आज़ादी मन्नथू पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथू पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ मसावात तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वज़ीर आज़म को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए रابطہ कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरिये के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफद की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी अख्तरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी अमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्सर निगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के सालिसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं। 14 ममालिक की तरफ से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो मुतनाज़ा आबी हदूद में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इकदाम को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। दूसरी जानिब 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए इस फैसले को तनाज़ियात के पुरअमन हल के लिए एक तारीखी फैसला करार दिया है। ये बयानात 12 जुलाई 2016 को दहेग में कायम करदा ट्रिब्यूनल के सालिसी के फैसले के जिम्न में आए हैं, जिसमें कहा गया था कि यह तारीखी फैसला फरीकैन को हतमी और कानूनी तौर पर पाबंद बनाता है। ताहम चीन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसकी पाबंदी लाजिम नहीं है। चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए। बहुत सी जानें जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जाया हुई हैं और बखिया ज्यादातर अमवात पानी में डूबने या सैलाब में बह जाने और दरियाओं की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं रक्षा तंवर आपके साथ। यहाँ पर हम आपके भेजे गए पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म जिद्दी से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। इसके अलावा बनियादपारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और उनका पूरा परिवार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने लिखा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

एस डी बर्मन का संगीत हसरत जयपुरी के लिखे बोल लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जिद्दी से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पाकीज़ा और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है जिन श्रोता से, उन्होंने हमें लिखा है शिवाजी चौक राजम छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव की ओर से, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव की तरफ से भी हमें पत्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

गुलाम मोहम्मद का संगीत कमाल अमरोही के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पाकीज़ा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दुलारी और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना की ओर से। इसके अलावा एक पत्र हमें मिला है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली की ओर से। फजिलका पंजाब से हमें लिखा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, देवानसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा और अरबी खेड़ा, साथ ही लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और उनके पूरे परिवार ने, साथ ही वानी खेड़ा ने भी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

फिल्म दुलारी से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने। संगीत था नौशाद का, बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ है मोहम्मद रफ़ी, फिल्म का नाम है इज्जत। और आपकी फरमाइश में इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावीद खान, सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। इसके अलावा स्कीन नंबर 71, माफ़ कीजिएगा, बहुत माफ़ कीजिएगा, गुमास्ता नगर स्कीम नंबर 71 से अनिल कपचाले, नेहा फरसे, सीमा सबिहा, फलक, पूजा, सुषमा और समीर की तरफ से भी इस गीत की फरमाइश हुई है। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत साहिर लुधियानवी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म इज्जत से। कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी फरमाइश का, और अगली फरमाइश हमें मिली है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की तरफ से। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो है हेमलता की आवाज़ में फिल्म आँखियों के झरोखे से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है कवर कॉलोनी बड़वाहा प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की तरफ से भी। ज़िला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। इसके अलावा मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइस बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, स्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर, परी और प्रणेता गवाड़कर की ओर से भी। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं के लिखे बोल, हेमलता की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अखियों के झरोखों से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपनी फरमाइशें हमें ज़रूर भेजते रहें अपने पत्रों के द्वारा। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। पिन कोड है 4620002। अपने पत्र और अपनी फरमाइशें इसी तरह भेजते रहें। अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कन्नड दास साहित्य, कन्नड वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर, अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मरडूर stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डोर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डोर will now present राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी धारवाड एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने

के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।